0: 8. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself, free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
1: कभी-कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री हॉरोस्कोप रीडिंग वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं प्रेम धन आरोग्य कोर्ट के मामले और बुरी नजर हर समस्या का समाधान यहां मिलता है साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 2 3 4 6 4 6 1 1 और विजिट masterjoshiram.com अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए
2: astrology readings have guidance only and results may vary
3: tune sunte hi brand click kar gaya na just like that when it comes to taxes only one name pops up AG Fintax this tax season for a stress free tax filing file smart file easy with Grandhi Tax Pros an associate of AG Fintax sath hi sath aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna that's our commitment so is baar delay kyun call 972-618-8555 or visit agfintax.com Grandhi Tax Pros powered by AG Fintax plan today profit tomorrow
4: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
0: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
5: If you're ever involved in a car accident, remember these important 3 tips. First, stay calm. Second, check for injuries and move to a safe place if possible. Third, gather information by taking pictures, exchanging contact information, and insurance details. Always, always file a police report. Remember, never ever admit fault at the scene. Even minor injuries can turn serious, so seek medical attention right away. The law offices of Omar Khwaja specializes in personal injury law, and we are here to help you navigate through the legal process. Call us for a free consultation at 1-833-GET-OMAR or visit our website at attorneyomar.com for your free consultation. We can't wait to hear from you.
6: मैं इजहार करूं तो ना भी हो सकती है. तुम करो तो हां की जिम्मेदारी मेरी.

Chak de India se liya gaya ye wala gana bahut din baad sunai diya and I hope you enjoyed this one on Fanisha Radio. वैसे पता है झेलूराम कहते हैं एक डांस करने का बहुत ही अमेजिंग उपाय बता रहे हैं वे दैट यू कैन लर्न डांस कहते हैं जिसको डांस नहीं आता ना वो दोपहर को बिना चप्पल के छत पर चले जाए अपने आप ही डांस सीख लेगा आई मीन रियली यू हैव टू गो विदाउट चप्पल वैसे डैलस में अभी वैसा मौसम नहीं है अभी भी औसम मौसम है अभी 64 डिग्रीज है इससे बेटर क्या हो सकता है क्लाउडी अर्ली विथ सम क्लियरिंग एक्सपेक्टेड लेट 64 डिग्री फारेनहाइट एंड इट हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल डे कल है शनिवार वैसे 87 हाई है तो बिना चप्पल डांस हो सकता है बट 87 इज़ नॉट बैड यार भरी दोपहर में ऐसा होगा बट 67 इज़ लो पार्टली क्लाउडी टुमारो इट्स ब्यूटिफुल सैटरडे पिकनिक का टोटल वेदर संडे को भी ऐसा ही कुछ है इनफैक्ट 75 हाई है 57 लो है बट स्कैटर थंडरस्टॉर्म से इधर उधर बारिश हो सकती है सो वो एक थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड बट अदरवाइज इट्स अ ब्यूटिफुल डे मंडे शुरुआत ऑफ द वीक मंडे 80 हाई 56 लो दिस इज द वेदर वी लव एंड डैलस इज ऑलवेज अवेटिंग पार्टली क्लाउडी अगेन टेरिफिक ट्यूजडे 83 हाई 60 लो इट इज सनी दैट्स अ परफेक्ट डे 10 माइल्स पर आवर पे हवाएं हैं और 60 लो है 83 हाई है वाओ ट्यूजडे लुक्स अमेजिंग मजेदार ऑफ द वीक वेडनेसडे 89 हाई 65 लो मोस्टली सनी रहने वाला है और टेरिफिक थर्सडे थ्रोबैक थर्सडे 87 हाई 67 लो विच इज पार्टली क्लाउडी फ्राइडे को फिर मैं आ जाऊंगी अपना शो लेके Thank God it's Friday and thank God ek hafta nikal jayega phir se hum Friday mein aa jayenge 87 high 69 low still the weather would look good partly cloudy rahega 16 miles per hour pe hawaye bhi chalegi to thodi hawadar din bhi rahega but it will be gorgeous beautiful as today to hum ise kahin nahi jane de rahe hum is you know weather ko rok ke rakhe hain for one more week let's see how much we can stop it but yes enjoy it till this weather lasts वैसे डैलस तो गर्मियों के लिए बदनाम बोलूंगी कि मशहूर बोल देती हूँ बेटर है बट दिस वेदर वाओ आके देखो भाई

0: ब्यूटीफुल है ना, गंगूबाई काठियावाड़ी से लिया गया, संजय लीला बंसाली की मूवी, नीति मोहन की आवाज, ब्यूटीफुल। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पेज 3 अब यहाँ हमारे डैलस में आ चुका है, एंड वी हैव गॉट अ न्यू फ्लेवर एट हब 121। पेज 3-3 वे बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर, कबाब्स है, चाट है, फ्यूजन बाइट्स है और मॉकटेल्स भी, वाइब्रेंट वाइब्स फॉर ब्रंच, लंच या फिर डिनर, जहाँ भी जाना चाहे, परफेक्ट है फॉर फूडीज, डेट्स एंड फ्लेवर चेजर्स। आप विजिट कर सकते हैं page3eatery.com फॉर फर्दर डिटेल्स। और अब यहाँ शुरू हो रहा है ये
1: कल हिंदी हिंदी बोल,
0: झुमुरे क्या बोलेगा, बोलेगा तो बस हिंदी, उर्दू इज अलाउड बट नॉट अलाउड इज अंग्रेजी। पता नहीं कहाँ से घुसी चली जा रही है हमारी हिंदी और उर्दू में, हाँ है ना। तो फोन उठाइए, नंबर दबाइए, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर, जुड़िए मेरे साथ, चलिए हो जाए ये वाली क्लास।

0: बढ़िया ना. गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: कैसे हो आप?
0: एकदम फर्स्ट क्लास. आप कैसे हो?
1: फ्राइडे इवनिंग है तो कैसे खराब हो सकता है, वो नहीं
0: ना,
1: अच्छा है.
0: थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. बिल्कुल वंडरफुल. क्या है नाम आपका?
1: मेरा नाम है संजय.
0: संजय जी, आप क्या गर्ल हिंदी में जुड़ना चाहते हैं?
1: कोशिश करूंगा. देखो मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, वी आर नॉट लाइव ऑन एयर, राइट?
0: वी आर लाइव ऑन एयर.
1: ओके, सो द थिंग इज आई हैव वॉन दिस कपल ऑफ टाइम्स बैक होम, बट व्हेनेवर आई ट्राइड विद यू आई हैव ऑलवेज फेल्ड.
0: ओह रियली? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू ट्राइड विद मी?
1: Twice.
0: All right. चलिए आज तीसरी बार हैट्रिक ना करें, कुछ डिफरेंस अगर ले.
1: मतलब this is not for the purpose of winning. This is for the purpose of trying that I'm doing.
0: Super.
1: And honestly, I don't like that. हाँ, नहीं. I don't like to talk that way. So that is my problem.
0: That's sporting spirit. चलिए आपका वर्क शुरू करते हैं. वर्क शुरू करके हम बातें कर लेते हैं. Because that's how we have to play, right? क्योंकि हमको true होना है अपने आप से, right? Your time has started now. Wonderful. तो हैट्रिक तो हम नहीं करेंगे. तो कहाँ जा रहे हैं आप संजय जी?
1: अभी जा रहे हैं बाजार, सामान लेने, सब्जियां लेने, तरकारी और घर की जो होती है जरूरतें वो पूरी करने जा रहे हैं.
0: My God. So it is you और जा रहे हैं, कोई आपके साथ भी है?
1: हाँ, बीवी है साथ में. वो गई है अंदर और मैं बाहर हूँ.
0: Oh, so you're parked. So that is a good thing, है ना?
1: हाँ जी बिल्कुल.
0: सो वेरी नाइस. तो क्यों ये ऐसा किया आपने? आप क्यों उनको हेल्प नहीं कर रहे? थोड़ा सा कार्ट ही हेल्प कर देते.
1: हाँ नहीं, वो सारा हेल्प अभी आपने बोला इसलिए मैंने बोला मैं वो सारा करूंगा. मैं क्या करूंगा?
0: आपने हेल्प बोला, मुझे पता था कि आप हेल्प बोलने वाले हो. बट आई एम सो सॉरी संजय जी, यू आर सो गुड. कोई बात नहीं, हैट्रिक है. बट यू डू डिड सो वेल. कितनी बातें की आपने. हूँ हाँ नहीं किया. Thank you.
1: You have a lovely evening.
0: You Thank too. You have a wonderful evening. Oh my God. Help बेचारे के मुंह में आ ही गया. क्या करूं मैं? I can't help myself. Now I have to do the googly वाला ball. You know जो कहते हैं ना spin.

0: beautiful Savalu from the film Lutera. Lutera. Le rahi hu apne next caller ko on Faneja Radio. Good evening. Aapka swagat hai Faneja. Gal Hindi Hindi bol par. What's your name?
1: मेरा नाम शिवानी है.
0: Hey शिवानी, तू लगती है रानी. You have heard
1: that? बिल्कुल
0: वही वाली शिवानी है. अच्छा वही वाली शिवानी है.
1: Awesome.
0: So आप गल हिंदी हिंदी में जुड़ना चाहती हैं?
1: जी.
0: आप गल हिंदी हिंदी में जुड़ना चाहती हैं?
1: हाँ, yes. मैं बहुत टाइम से ये वाला आपका गेम सुन रही हूँ. It's not started yet, right?
0: Not yet.
1: Okay. Yeah, ये मैं बहुत टाइम से सुनती हूँ. मुझे हर बार लगता है ये बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. और मैं कभी भी अटेम्प्ट नहीं किया. मैं आज पहली बार अटेम्प्ट करना चाहती हूँ. सो आई एम नॉट वरीड अबाउट द रिजल्ट. हो पाया नहीं हो पाया?
0: हाँ, नो नो वरीज यार. वी आर जस्ट ऑन द रेडियो एंड हैविंग फन, राइट?
1: यस.
0: सो शिवानी, आपका वक्त शुरू किया जाए?
1: यस, बिल्कुल जी.
0: ऑलराइट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो नाउ नो मोर नोवो इंग्लिश. असम, वेयर आर यू फ्रॉम?
1: यस, मैं
0: यस क्यों बोला आपने? शुरुआत ही. यस, आई एम फ्रॉम नागपुर. मैं नागपुर से हूँ. ये तो हमारे ना भाषा में घुस गया है. यस, नो, ओके. मैंने बहुत सारी कोशिश की. मैं आपकी पूरी बात सुन लूँ उसके बाद शुरू करती हूँ. बट हाँ, यस, फिर से होगा नेक्स्ट टाइम. ओके,
1: नानी ही बन गई मैं.
0: ऑलराइट, सुपर 104.9 एफएम फनीशर रेडियो सुन रहे हैं. और यहाँ पर ये यस नो का सिलसिला तो जारी ही रहता है. हम क्या करें, इंग्लिश में इंग्लिश ऐसे घुस गई है ना, जकड़ लिया है हमें. वैसे जकड़ा नहीं है. और बहुत खूबसूरती से अगर कोई आपके जिंदगी में है तो यू कैन शाइन ब्राइट विद डायमंड्स फ्रॉम मालाबार गोल्डन डायमंड्स. और ये है डैलस ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, योर गो टू डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, नेकलेसेस एंड मोर दैट स्पार्कल फॉर एवरी स्पेशल मोमेंट. कहते हैं ना, जकड़े हो तो आप सॉलिटेयर को अच्छे से बनावट में जो गोल्ड बहुत खूबसूरती से उसे पकड़ के रखे. फ्रॉम क्लासिक सॉलिटेयर्स टू कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स, इनकी जो डायमंड कलेक्शन है आर ब्लेंड्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी विद टाइमलेस डिजाइन. Perfect for engagements, anniversaries or just celebrating love. आप उनका डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल ऐप आज ही और ये बन जाएंगे आपके हिस्सेदार घर के with your amazing golden diamond purchases.

0: from the film Two States, Arijit Singh ki awaaz, Arjun Kapoor, Alia Bhatt in this Mast Magan song. 104.9 FM, Fun Asia Radio sun rahe hain aap mere saath. Thank you, tune in karne ke liye, jude rehne ke liye. Aur pata hai, agar aapko financial guidance chahiye, My Time Equity, led by CPA Sudhir Pai, offers portfolio management, real estate and alternative investments. क्या करना है आपको विजिट करना है mytimeequity.com और कॉल 4697021272 चलिए लेती हूँ मैं अपने अगले कॉलर को गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो आपका स्वागत है गल हिंदी हिंदी बोल पर आपका नाम क्या है
1: मेरा नाम शशांक है
0: शशांक जी चलिए गल हिंदी शुरू करें
1: बिल्कुल
0: ऑसम वेरी नाइस अब तो ये तो चटपट हो गया बिकॉज वी आर गेटिंग इनटू अ शॉर्ट ब्रेक बट हमारा वक्त शुरू हो चुका है कहाँ चलिए सवारी आपकी
1: हम लोग अभी खाना लेके आ रहे हैं
0: वेरी नाइस तो अभी कहाँ पर बैठ के खाने वाले हैं
1: घर पर
0: अच्छा तो सब कितने लोग लेके आ रहे हैं
1: तीन लोग
0: तीन लोग लेके आ रहे हैं व्हाट इज द मेन्यू
1: खाने में है
0: ऑलराइट
1: खाने में है परांठे और मोहन थाल
0: वाओ ये तो गजब कॉम्बिनेशन है नो सब्जी
1: सब्जी घर पे है
0: तो पराठे ही लेके आ गए कि यार घर पे सब्जी बनाया मोहन थाल वेरी वेरी गुड आइडिया तो फिर क्या प्लान है आज का
1: बस खाएंगे और
0: बेटे
1: के साथ खेलेंगे
0: अच्छा नो खेलेंगे कितने बड़े हैं आपके बेटे
1: डेढ़ साल का
0: ओह माय गॉड सो क्यूट उनके साथ तो क्या ही मूवी देखेंगे आप
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बट इट्स अ गुड एज हाँ अब टेरिबल टू शुरू नहीं हुए
1: नहीं अभी नहीं
0: ओके और सब एक ब्रेक पे चले ही गए बट वाओ कांग्रेचुलेशन
2: अरे सुनना आज ऑफिस से आते हुए मैंने फ्रिस्को में एक नया स्टोर देखा
3: कौन सा
2: कैरेट लेन
3: वेट व्हाट कैरेट लेन इंडिया वाला
2: हाँ वही
3: थैंक गॉड यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली
2: देखा ढूंढ के दिया ना
4: इंडियाज मोस्ट लव्ड एवरीडे ज्वेलरी ब्रांड नाउ इन फ्रिस्को Lightweight, real diamonds, made for everyday. Carrot Lane, a Tata product.
5: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
6: Excuse me, it's called being loyal.
5: It's called being predictable.
6: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
5: And what's so special at Neon Cactus?
6: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
5: Not bad.
6: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
5: Okay, this I didn't expect from you.
6: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
4: That magic removal हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड solutions विद 100% privacy.
7: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
10: ड्यूड लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं
11: फ्रंट पेज का तो पता नहीं बट तेरा पेज थ्री में होना मेरी गारंटी है
10: कैसे
11: पेज थ्री ईटरी
10: नो नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन
11: ड्यूड इट्स पेज थ्री स्टार्ट विद द बार सिग्नेचर कॉकटेल्स Classic pole and the food crafted to suit every craving, every appetite.
10: Matlab great food, great drinks and great company. Yani ki main.
12: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
14: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
15: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.

0: 888-9914.
1: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
2: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: Bawarchi Biryani is in Plano, bigger, better and the best now serving everyday lunch specials. Thalis, biryani combos and refreshing Irani chai with delicious Indian snacks. Freshly made sweets and bakery items. Please walk into Bawarchi Plano or visit bawarchiplano.com.
4: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
5: Ye awaaz sirf meri nahi thi, ye aapki aadat thi. थोड़ी सी कहानियाँ रह गई थी, थोड़ी सी बातें अधूरी थी, जो इस बार पूरी होंगी. इस बार थोड़ी ज्यादा मैं, थोड़े ज्यादा आप. आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, बैक ऑन फनेशर रेडियो.
6: ट्यून इन टू दिल से एवरी सैटरडे फ्रॉम 3:30 टू 6 पीएम एंड ऑन संडेज फ्रॉम 3 टू 6 पीएम राइट हियर ऑन 104.9 एफएम.
3: वेलकम बैक दोस्तों, 104.9 एफएम फनेशर रेडियो सुन रहे हैं. शशांक साहब अभी तक हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी अभी जीत लिया है रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से गिव अवे. चलिए उनको ऑन एयर लेके गुड बाय बोलते थे. शशांक जी, आप तो बहुत अच्छा खेले हिंदी में. आप फर्स्ट टाइम यू गॉट ऑन एयर ऑन हिंदी. गल हिंदी हिंदी बोल.
7: यस यस,
3: वॉसम, वेरी नाइस. और आपकी गाड़ी में ही 1.5 साल का आपका बेटा है. वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, यू आर अमेजिंग.
7: बारह के बात कर रहा हूँ.
3: इसलिए बारह के बात कर रहा हूँ. ऑलराइट, सो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव वन द बेस्ट बेस्ट बेस्ट चिली मक्खन वाला फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर. एंजॉय इट.
7: थैंक यू,
3: वेरी नाइस. यू एंड यू विल बी गोइंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दैट्स एक्साइटिंग एज वेल.
7: थैंक यू सो मच मैम, मैं आपसे बात करके भी मजा आ गया. थैंक यू.
3: शुक्रिया. थैंक यू सो मच. सुनते रहिए फनेशर रेडियो सुबह शाम दिन रात रोजाना हफ्ते. ओके,
7: बाय
3: बाय. वंडरफुल, कंग्रेचुलेशंस टू शशांक. कह रहे थे पहली बार सुनते हैं, लेकिन मजा आता है सुनने में भी. सो आई लव इट कि आपको मजा आता है सुनने में भी और खेलने में भी. इसी को तो कहते हैं कि एक तीर से दो निशाने, सुनने के लिए भी और खेलने के लिए भी. अतरंगी यारा हो यार. एक और बात कहनी थी गाना बजाने के पहले. यार क्या करे, लाइफ इज नॉट इजी यार. ज्यादा बात करो तो कहते हैं लोग यार बहुत चीप है, बहुत ज्यादा बोलता है. कम बात करो तो कहते हैं यार बहुत एटीट्यूड है उसका, बहुत एटीट्यूड है. और बस काम की बात करो तो लोग बस मतलब ही बना देते हैं. लोगों का नहीं सोचने का, बस यारी निभाने.

0: Wazir film ka beautiful two voices, Amitabh Bachchan himself, Farhan Akhtar himself, in this and Tarangi Yara, one of my very, very favorite songs, and I really feel they did such a wonderful job. Lete hain main hum apne agle listener ko on Girl Hindi Hindi Bol. Good evening, Faisha Radio, par aapka swagat hai. Kya hai aapka naam?
1: Mera naam Sunil hai.
0: Sunil ji, welcome to Girl Hindi Hindi Bol.
1: धन्यवाद नवनीता जी, कैसे हैं आप?
0: एकदम फर्स्ट क्लास. तो फिर आपका
1: ये कितना अच्छा संयोग है, आज मेरा जन्मदिवस भी है और आपसे बात भी हो रही है.
0: ऑसम, वंडरफुल, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. आपके लिए तो बर्थडे सॉन्ग बजने वाला है इसके बाद पूरे डायस की तरफ से.
1: आशा करते हैं हम आज इस खेल में जीतेंगे.
0: ओके,
1: और
0: अब तो पूरे किरदार में आशा करते हैं हम इस खेल में जीतेंगे. ऑल राइट, हम भी यही आशा करते
1: हैं. अभ्यास कर रहे हैं
0: और हम भी यही चाहेंगे कि आप जीत जाए, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू दिस बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम फनीशा रेडियो, है ना
1: जी? जी,
0: कि आप जीत जाए. तो योर टाइम स्टार्ट करी?
1: हाँ जी बिल्कुल.
0: Your time has started now. Happy birthday boy. How have you been?
1: धन्यवाद नमिता जी, हम बहुत अच्छे हैं.
0: So what happened? सुबह से कितने विशेस आए हैं आपको, अपने गिना?
1: देखिए, उम्र के साथ साथ ना कम होते जा रहे हैं.
0: क्यों? बढ़ने चाहिए.
1: पांच या छह ही आए हैं.
0: Very sad. ये क्या हो गया लोगों को? थोड़ा सा
1: पहले
0: अपनी दोस्ती को.
1: पहले बहुत आया करते थे, आज सुबह से तो काफी कम आए हैं, पांच या छह आप लगाइए.
0: कोई वजह? निगलेक्ट कर रहे हैं लोग आपको आज?
1: हाँ, कुछ भी हो सकता है. बढ़ती उम्र के साथ लोगों के अलग अलग नजरिए और न जाने क्या क्या. छोड़िए,
0: बस दुखती दर्द पे मैं नहीं नमक छिड़कना चाह रही हूँ, बट दे विल रियलाइज अ लिटिल लेटर और फिर उनको याद आएगा, ओह नो सुनील, भूल गया मैं, ऐसे यू नो, ऐसा ही होने वाला है.
1: आपके जरिए से मैं ये उनको एहसास कराना चाह रहा हूँ, जो भी सुन रहे हैं
0: और उसमें से दोस्त है
1: आपके, मालूम चलेगी उन्हें करना है.
0: हाँ, करना है, विश करना है. विश मैं बोल देती हूँ, मैं आपको हराना बिल्कुल नहीं चाहती. पर यस गाइस, सुनील जी का बर्थडे है और वो सुबह से आपके फोन्स का इंतजार कर रहे हैं. मैं दरख्वास्त करती हूँ, बट यू नो यू आर ऑन एयर सुनील जी, ऊपर वाला सुन लेता है बात और आपके दुख को दुख में नहीं बदलने देता है. ही सेड ओके, कम ऑन एयर एंड प्ले गर्ल हिंदी हिंदी बोल. आप कितने साल से डालस में?
1: 17 साल.
0: वाओ, सुपर मैन, लेजेंड, लेजेंडरी 17 साल के आप यहाँ पर लेजेंड है. और आपके ये मजाल की सब पांच ही कॉल आए. मतलब आई एम जस्ट सेइंग, बट वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशन.
1: बीच बीच में कुछ नगरों में आना जाना हुआ.
0: अच्छा.
1: जैसे कि पश्चिम की तरफ या पूर्व की तरफ.
0: पूरा पश्चिम तो
1: मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में ही.
0: समझ गई, कितना अच्छी हिंदी बोल रहे हो आप. वेरी नाइस, वेरी गुड. संयुक्त राज्य अमेरिका में, गुड जॉब. तो आपको ये हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भेंट किया जाए. यू हैव बीन वेरी वेरी गुड एंड गिफ्ट नहीं है अभी और मेरे पास देने के लिए, पर हैव अ वेरी वेरी वंडरफुल बर्थडे.
1: अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं. आपने पहले भी उपहार दिए थे, लेकिन वो इतनी दूर हुआ करते थे अरविंद की तरफ कि हम कभी उपयोग ही नहीं कर पाए उनका. और आज तो अब आपके पास खत्म ही हो गए.
0: नहीं, आप रेड हॉट चिली पेपर का उपहार ले सकेंगे, उनके यहाँ जा सकें, आप रहते
1: कहाँ? जी बिल्कुल, वो क्योंकि हमारा निवास स्थान यही प्रॉस्पर में है और वो फ्रिस्को में है, तो बिल्कुल.
0: तो चलिए, आपको रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से गिव अवे दिया जाता है आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर. तो आप कहीं मत जाएगा, आपके लिए ये बर्थडे सॉन्ग मैं लगा रही हूँ फॉर यू सुनील जी, एंड कंग्रेचुलेशंस. आपके बहुत दोस्त हैं, पूरे डैलस सुन रहा है आपको और विश कर रहा है, और हम सारे आरजेस आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं.
1: धन्यवाद नवनीता जी. सारे शब्द हिंदी में हैं उस गीत के, जो आप सुनाने वाले हैं
0: नहीं, वो वाले बार वो वाले अंग्रेजी वाला सुना रही
1: अंग्रेजी
0: हूँ। ओ तेरा हैप्पी बर्थडे। आप जितनी हिंदी में बोले हैं ना, अब लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश चाहिए फॉर अ चेंज ऑफ एनवायरमेंट। ओके
1: और
0: वंडरफुल।
1: जितने भी
0: सो
1: हमारे सखा सखी सुन रहे हैं उनको ये एक अब तो अंग्रेजी में बोल सकते हैं ना।
0: हाँ
1: हाँ,
0: हाँ काफी, थोड़ा सा बीच में बोल
1: अ
0: दिए थे।
1: रिमाइंडर टू विश मी।
0: हाँ रिमाइंडर टू विश यू। ऑलराइट, मतलब ये
1: बिल्कुल।
0: तो धमकी के साथ आ रहा है, डेयर यू गाइस। हाँ
1: अभी
0: या अब तो याद कर लो
1: 8 बजने
0: मुझे।
1: वाले हैं और रात को 12 बजे से चल रहा है, अभी तक नहीं आएगा तो
0: सरप्राइज
1: धमकी
0: सरप्राइज का वेट कीजिए।
1: चलेगी।
0: सो

பிஜாமா பகருக்கப்பட்டே That one from the film ABCD2 और ये सुनील जी का ही जन्मदिन था और सुनील जी ने ही जीत लिया हिंदी में इतनी अच्छे से गुफ्तगू करके वो तो उर्दू वर्ड हो गया बट यस ही डिड सो वेल विथ गर्ल हिंदी हिंदी बोल थैंक यू दोस्तों ट्यून इन करने के लिए थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए थैंक यू सुनील जी जीतने के लिए And thank you for this amazing, amazing evening. क्योंकि तभी तो हम कहते हैं, thank God it's Friday.

मूड ही बदल जाता है ना, इवनिंग ही ऐसी होती है जो कमाल की होती है। फ्राइडे थोड़ा सा जैसे स्ट्रेस कहीं हटा ही दिया गया है, मूड जब स्ट्रेस हट जाए ना तो मूड में ऑटोमेटिकली एक परिवर्तन आ जाता है, एंड देन यू स्टार्ट इंजॉयिंग इट सो मच एवरीथिंग। सुनील जी को 5 लोगों ने ही गाली विश किया सो सैड, बट फिर भी खुश हैं क्योंकि फ्राइडे है, बर्थडे है यार। प्लीज कॉल कर लो दोस्तों जो सुन रहे हो, बिकॉज इट फील्स सो सैड व्हेन यू नो द एक्सपेक्टेशंस होते हैं हमारे फ्रेंड्स की तरफ की के लिए और वो मसरूफ होते हैं, बट आई फील एवरीबडी इज़ बिजी ऑन दिस फ्राइडे। अब जब थोड़ा खाली होंगे काम काज से तब याद आएगा ओ कॉल करना है, एंड देन बहुत सारी बरसात होगी और फिर फनीजा में तो छा ही गए हो आप, एंड एवरीबडी नोज दैट आज सुनील को फ़ोन करना है। तो प्लीज़ जो लोग फनीजा रेडियो सुन रहे हैं, सुनील दंगवार ये है इनका नाम, ज़रूर फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए और शुक्रिया मेरे साथ ये 4 कदम साथ चलने के लिए। मेरे 2 कदम आपके 2 कदम मिलके 4 हो जाते हैं, बट इतने अनगिनत कदम साथ देने के लिए। थैंक यू दोस्तों।

Beautiful Gana Achar Kadam from the film PK. Shushant Singh Rajput. Miss you, Shushant Singh Rajput. और उसमें अनुष्का शर्मा भी थी, बहुत ही कमाल. श्रेया घोषाल की आवाज़ और शान की आवाज़ सुन रहे थे, मेलोडी इन इट्स बेस्ट. और पता है हमारे जो झीलू राम है ना, वो बस में कॉलेज की लड़कियां चढ़ने से ना बस भर गई और झीलू राम नीचे रह गए. तो कॉलेज की लड़कियों का एक्चुअली उस समय छुट्टी हुई थी और सब तट तट तट चढ़ गई एक साथ, बिकॉज देयर वर सो मेनी, एक सब साथ छुट्टी हुई तो हमारे झीलू राम नीचे रह गए. कंडक्टर ने कहा नो मोर नो मोर. तो झीलू राम कहते अच्छा, मोरनी मोरनी चढ़ा ली और अब एक ही मैं हूँ तो नो मोर नो मोर. भगवान नो मोर मतलब इंग्लिश में था वो नो मोर, मोर और मोरनी यही सोच रहे. झीलू राम कितने क्यूट हो आप, सीरियसली.

0: Beautifully sung by Diljit Dosanjh and Alia Bhatt, Udta Punjab se liya gaya, Amit Trivedi ki music, very very nice song. Dosto, isi gaane ke saath mera aaj ka show khatam hai, 5 se 8, straight from the heart has come to an end for this day. Milungi agle hafte, but ab aa rahi hai 8 se 10, Swati apna beautiful sa show lekar, aapko entertain karne ke liye, because the entertainment should never stop. It is Fun Asia Radio. जाते जाते मेरा ये ख्याल है, you know, if there's a slightest chance at getting something that will make you happy, risk it. Trust me, risk it. Life is too short and happiness is too rare. और आपको पता है ये चीज़ आपको बहुत खुशी देगी, तो आप क्यों बिना खुशी के समय में हैं? Do not stay there. Just risk it. Trust me, ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी. Like मैं चुटकी बजा रही हूँ. And that is how it is. We just hold on to things we don't love, we don't like for too long. But if there is something that is going to give you happiness, risk it. With that thought, good night, sleep, kind of happy, fresh and bright. Wishing you a fluffy morning, a colorful noon, a joyful evening and a peaceful night. And I know it's going to be a fabulous day for you tomorrow. Started with a cup of positivity. Phir dekhiye din kaisa jata hai. Bilkul positive. Kyunki aap attract hi karenge positivity. दीजिए मुझे इजाजत, आज के लिए मिलूंगी अगले हफ्ते यही रेडियो पर, 5 से 8, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट अपना शो. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे लेकर, एंड थैंक गॉड इट्स फ्राइडे अभी आपके लिए तो जारी है. बाय बाय फॉर नाउ.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. Luxury Brilliance Celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
5: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
6: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
5: K2 ड्राइव मतलब?
6: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
5: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
6: 100%
3: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0400. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
7: घर की याद नहीं आई तुझे जैसे?
8: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
9: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
8: सच में? बिल्कुल घर जैसा.
9: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर. लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट. चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम.
10: Immigration attorneys in the DFW area. If you're looking to grow your client base and reduce your overheads, join Fun Asia Media Group for an exclusive short seminar designed only for you. Discover how Fun Asia can deliver a steady stream of qualified clients while helping you cut costs on paralegal work and routine filings. Plus, enjoy a complimentary lunch on us. Seats are limited. Please email your interest to immigration@funasia.net to reserve your spot.
11: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಡ್ಯಾಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಅಂತ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ 9th May and 10th May. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ, ಫ್ರಿಸ್ಕೋ, ಡ್ಯಾಲಸ್. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8 PM. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
12: ಅಭಿ ಬಜಾಯೇಗಾ ನಾ ಬಿಡು.
13: ಪುನ್ ಬೋಲೆ ದೋ ಫುಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಧಮಾಕಾ ಫನ್ ಏಷಿಯಾ.

जैसे एक जिंदगी काफी नहीं होती ना, डैलस ऐसे मुझे लगता है कि वीकेंड के दो दिन भी काफी नहीं होते। ऐसा लगता है कि 5 दिन वीकेंड होना चाहिए था और ओनली 2 दिन वीकडे। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है डैलस? आपको नहीं लगता कि यार हमें 5 दिन आराम करना चाहिए और केवल 2 दिन काम करना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी नन्ही सी जान है यार, थक जाया करते हैं। और जिस लिहाज से हम ज्यादा दिन के वीकेंड मनाते, मेरे आपके साथ शो भी ज्यादा दिनों के होते और मैं आपके साथ ज्यादा बार कनेक्ट होती, और जब मैं ज्यादा बार कनेक्ट होती तो ज्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड करती और ज्यादा गपशप होता और म्यूजिक का एंटरटेनमेंट भी ज्यादा होता। सुन रहे हैं आप मुझे यानी आरजे स्वाति को नमस्कार करना चाहती हूँ, आप सभी सुनने वालों को कहना चाहती हूँ तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो। मैं हूँ हस्ती मुस्कुराती स्वाति, लेकर आ गई हूँ फ्राइडे वाइब्स। तो डैलस रखिए फन की फ्रीक्वेंसी राइट एंड एंजॉय कीजिए फ्राइडे वाइब ओनली विद मी आरजे स्वाति। एक बड़ा ही खूबसूरत सा गाना मुझे याद आ रहा है, यू नो व्हाट, जब वाइब की बात आती है ना तो गाने में भी वो फीलिंग आनी चाहिए बस। तो अगर आपको भी फ्राइडे वाइब एंजॉय करना है नो फिल्टर के साथ, तो ट्यून इन कीजिए और ट्यून इन करके रखिए।

वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल सॉन्ग डैलस. आपको पता है कि बॉलीवुड के ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो इस पर बेस्ड हैं कि कैसी जिंदगी, कैसी है पहेली, हाय यू नो पहेली के ऊपर काफ़ी सारे गाने हैं और ज़िंदगी को एक बहुत बड़ी पहेली कहा जाता है जिसमें ये समझ में नहीं आता है कि ज़िंदगी का असली मकसद क्या है और हर कोई इसका जवाब ढूंढ रहा होता है. इस गाने में भी ऐसा ही है. और अगर किसी को ज़िंदगी के मायने मिल जाते हैं और इस सवाल का जवाब मिल जाता है, वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सॉर्टेड है. पर ऐसे पता नहीं कितने परसेंट लोग होते हैं जो ये कह पाते हैं. तो कभी लगता है प्यार है, कभी एक ख्वाब है, और कभी एक ऐसी पहेली जिसका जवाब दिल खुद भी नहीं समझ पाता है. सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में आप ये मैजिकल वॉइस में सुन रहे थे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग. एंड नेक्स्ट बहुत बहुत ही प्यारा गाना है जिसमें अगेन आपको दोनों की आवाज़ सुनने को मिलेगी. लेकिन क्या फिल्म है यार, मैं सुन रही हूँ कि 3 इडियट्स कम पड़ रहा था जो 4 इडियट्स आने वाले हैं. आपको पता है कि चौथा इडियट कौन होने वाला है? अगर पता है 9722355555. अगर आपको पता है कि इसका सीक्वल बनने वाला है नॉट 3 इडियट्स 4 इडियट्स, कौन है वो चौथा इडियट?

हाय, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मन जैसे खूबसूरत चीज को, दिल जैसे प्यारी से नाजुक सी चीज को कोई स्टूपिड कह देता है। बिल्कुल गलत बात है यार, ये तो होना ही नहीं चाहिए। वैसे पता है, आप सबने कॉल नहीं किया, बट एक इंसान का कॉल आया जिसने मेरी तरह वो इन्फॉर्मेशन कहीं पढ़ी थी जहाँ पर बात हुई है चौथे इडियट की। एंड दैट इडियट नेम इज विकी कौशल, जो कि इडियट नहीं है भाई, बहुत समझदार है। एंड ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा कि एज ऑफ नाउ देयर इज नो ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द मेकर्स दैट द फोर्थ इडियट इज फाइनलाइज और नॉट, बट ऑलमोस्ट सारे जो बॉलीवुड के रिपोर्ट्स हैं ना, वो स्ट्रांगली पॉइंट आउट कर रहे हैं विकी कौशल की तरफ। और वो ऐसा कहा जा रहा है कि ही इज ज्वाइनिंग द सीक्वल फॉर द फोर्थ इडियट अलॉन्ग साइड विद आमिर खान, आर माधवन एंड शर्मन जोशी। सीक्वल जो है उसको फोर इडियट कहा जाएगा, ऐसा नाम फिल्म का नाम रखा जाएगा, ऐसा भी कहीं से कोई कॉन्फर्मेशन आया नहीं है, बट ऐसा लोग बता रहे हैं। राजकुमार हिरानी ने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया है। ऐसा भी सामने आया है कि स्टोरी 10 साल आगे की बताई जाएगी। एंड विकी के साथ काफ़ी सारी मीटिंग्स हो रही हैं अब, और मुझे लगता है कि यही जो है वो र्यूमर का कारण बन रहा है। सो बेसिकली हम किस नतीजे पे पहुंचे हैं कि देयर इज स्ट्रांग र्यूमर्स, विक्की कौशल का कोई भी ऑफिशियल कास्ट अनाउंसमेंट नहीं आया है एंड कन्फर्मेशन स्टिल पेंडिंग है। और फैंस तो ये भी जोक कर रहे हैं कि यार क्या पहले थ्री इडियट में फोर्थ इडियट नहीं था? था ना, ओमी वैद्य, हर कोई उन्हीं को फोर्थ इडियट कह रहे हैं, और कह रहे हैं ऐसा क्या नया होने वाला है यार, पहले भी तो चौथा इडियट मौजूद था।

एब्सोल्यूट मास्टरपीस यार, क्या सूदिंग गाना था। एंड मुरारी ठाकुर, एक्चुअली मैं मिस करती हूँ उनके गाने को। उन्होंने अचानक से संन्यास ले लिया संगीत से। आजकल मतलब हमारे जो पुराने आर्टिस्ट थे, उन्होंने कितने कितने सालों तक गाना गाया है यार, मतलब 50-60 साल का भी उनका करियर रहा है। और जैसे लता मंगेशकर जी, आशा मंगेशकर जी अभी तक भी गा रहे थे। लेकिन आप खुद सोचिए कि इतनी जल्दी, इतने यंग एज में संन्यास लेने का ये कौन सा नया ट्रेंड आ चुका है। इतने अच्छे सिंगर है यार, गाते रहना चाहिए, हमको तो अच्छी सिंगिंग सुनने में अच्छा लगता है। तो पता नहीं कैसे गायब हो गई मोनाली ठाकुर, एंड वी रियली मिस हर वॉइस। आपको एक चीज़ बता दूँ कि भाई, हम कभी नहीं चाहते कि आपके साथ कोई भी अनहोनी हो, पर अगर आप कभी भी किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इफ़ यू इन्वॉल्व और स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, तो अटर्नी उमर ख्वाजा आपके लिए आपका केस फाइट करेंगे एंड आपको कॉम्पनसेशन दिलाने में मदद करेंगे। इफ़ यू आर डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज, यू नो आई नो एंड वी ऑल नो दैट देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रेस। कितना स्ट्रेस होता है, तो अगर आपको ऐसा कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बना है, तो अभी भी आप प्लीज़ अटर्नी उमर ख्वाजा को कॉल करें 4693005046, या फिर आप विजिट ज़रूर करें attorneyumar.com। यू डोंट पे अंटिल यू विन, एंड आप फ्री कंसल्टेशन के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर attorneyumar.com पर विजिट भी कर सकते हैं। तो ज़रूर ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था और तब मुझे ये नाम बिल्कुल याद नहीं आया था। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये गुजारिश करती हूँ कि आप नाम ज़रूर याद रखिए।

डैलस, ये तो रिमिक्स वर्जन है, गजब का है, दिन का 2.0 वर्जन। लेकिन जो इसका पुराना वर्जन है, जो 90s का अपना नॉस्टैल्जिक वर्जन है, आपको पता है वो गाना जब मैं सुनती हूँ तो मुझे क्या लगता है कि दो बहुत अपने लोग जिनको एक दूसरे का साथ पसंद है, जो एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता पाते और उन्हें बड़ी मुश्किल से एक वक्त मिल गया है, दोनों हाथ पकड़े किसी समुंदर के किनारे या किसी ब्रिज के ऊपर चल के जा रहे हैं, गाना चल रहा है, और चलना क्या चाहिए, गजब का है दिन, सोचो जरा। आहा, कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई कुछ सुन नहीं रहा, बस एक दूसरे के साथ वो ऐसा लम्हा बिता रहे हैं जो लम्हा फिर शायद कभी ना मिले, पर उस लम्हे के एक एक लम्हे को जो जीने का मजा होता है ना, वो उस गाने के अंदर मुझे लगता है। मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैंने इसका 2.0 वर्जन क्यों चलाया, क्यों नहीं मैंने उसका वो वर्जन चलाया जो कि बेसिक वर्जन है। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मैं चला देती हूँ, क्योंकि क्या होगा ना कि आपको जब मैंने एक सिचुएशन दी है और वो मैं आपको जीने का मौका ना दूँ, तो फिर क्या मतलब। तो लीजिए इसका बेस वर्जन सुनिए और फिर एंजॉय कीजिए। हाथों में हाथ डाले दो लोग चल रहे हैं किसी ब्रिज के ऊपर, आजू बाजू पानी है और कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं सुन रहा, बस माहौल है।

0: you turned down that job to become a diving instructor?
1: Yeah, I thought Ma would say no.
0: And?
1: She said, build your life the way you dream it.
2: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 2809 Preston Road, suite number 1200 Frisco. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
3: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर
4: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस
3: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर
4: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल
5: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
6: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
7: Chicken banana.
8: Chicken banana?
9: Bro, banana nahi. Banana. Matlab, make the chicken right.
10: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
11: Sab kuch saaf rakh sakte ho.
12: Par mujh pe kisi ki nazar nahi jaati. Koi nahi sochta mere bare mein.
13: Kyunki, ye kaun bola?
12: Ye hum bol rahe hain, aapke ghar ka duct. जिसमें है डस्ट पॉलन एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है मेरा तो साफ ही होगा तो आप सही नहीं सोच रहे हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें मुझे भी साफ करना होता है मेरा काम था बताना अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा आपको क्या चाहिए
14: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है कॉल जीतू पटेल 972-877-2500
15: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता
16: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स
15: कितने एप्स ट्राई किए यार बट
16: देन डोंट ट्राई अलोन एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट
17: मे 14th टू मे 17th अ 3-day इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स रजिस्टर नाउ एट oshoyuniversal.org पॉज द नॉइज meet yourself.

मैं दे रही हूँ आपका साथ फ्राइडे वाइब्स के साथ। आपको बता दूं कि ये जो गाने हैं ना, ऐसे गाने आपको किसी ना किसी अलग दुनिया में ले जाते हैं। एक्चुअली आई वॉज रीडिंग ऑल द कॉमेंट्स एंड उसमें एक बंदे ने लिखा है कि ये गाना सुनते ही मुझे अपने एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ गई और मैं यादों में चला गया, मुझे पता नहीं वो कहाँ है, कैसे उसको ढूंढूं, क्या करूं, ऐसी खलबली सी मच जाती है ना। आपको बताऊं डैलस की ना, जो रियल रियल लव जो होता है ना, वो बिल्कुल रेयर होता है, क्योंकि वो ना टेस्ट किया जाता है बाय डिस्टेंस, बाय मिसकम्युनिकेशन एंड बाय टाइमिंग, और साथ ही साथ लाइफ में जो कुछ भी उतार चढ़ाव होते हैं उसके साथ। लेकिन उसके बाद भी अगर दो लोग एक दूसरे को चूज़ करना चाहें अगेन एंड अगेन, सारे रोलर कोस्टर राइड के बाद भी अगर दे चूज टू बी टुगेदर, सो दैट्स नॉट जस्ट लव, दैट्स अनब्रेकेबल बॉन्ड। एंड डू यू नो व्हाई रियल लव इज़ रेयर? बिकॉज दैट्स अनब्रेकेबल। एंड ऐसे रिश्ते बहुत कम बनते हैं, यदि बने हैं तो संजो के रखिए। जो एक बार खो जाते हैं ना, वो वापस नहीं मिलते हैं डैलस। तो अगर आपके पास कोई ऐसा है जो बार बार रोलर कोस्टर राइड पे आपके रिश्तों की टेस्टिंग होने के बाद भी, और यू नो लाइफ के इतने उतार चढ़ाव के बाद भी, इफ ही और शी स्टिल चूजेस यू, देन दैट्स योर बड़ी और दैट्स योर पार्टनर।

डैलस, मुझे तो पता है कि आप ये गाना जब सुन रहे हैं तो क्या आपको पता है कि मैं इस गाने को सुनते वक्त क्या महसूस कर रही हूँ? नहीं, आपको कैसे पता होगा? मुझे आपकी बातें पता होती है, लेकिन आपकी बातें मतलब आप मेरी बातें नहीं समझ सकते। अगर आपको पता है कि मैं माधुरी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये गाना आप सुन रहे थे तो मैं केवल और केवल माधुरी को देख रही थी, क्योंकि क्या मूव्स है यार, क्या AR रहमान का म्यूज़िक बिल्कुल मैजिकल, साथ में प्रभु देवा दे रहे थे साथ, जो कि डांस के सुपर किंग हैं। एंड उसके अलावा माधुरी जैसे मूव से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। एक बार किसी इंटरव्यू में प्रभु देवा से पूछा गया था कि बेस्ट फीमेल डांसर अब तक जो उनके साथ कास्ट हो चुकी हैं कौन लगी थी, तब उन्होंने माधुरी के बारे में कहा था। फिर किसी ने पूछा कि अच्छा तो माधुरी जी ने डांस अच्छा किया, कहते हैं नहीं, माधुरी जी के डांस को कौन देख रहा था, हम तो केवल माधुरी को देख रहे थे। माधुरी दीक्षित है ही ऐसी। अच्छा, प्रभु देवा की बात चली तो एक गाने से जीनी भरेगा, तो फिर मैंने वो गाना उठा के लगा दिया जिस गाने से हर कोई उठता नहीं, उठ जाता है, मतलब अपनी सीट से यार।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids' wear.
6: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
5: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit indianattirefrisco.com.
7: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
8: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
10: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
10: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो.
11: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
17: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
18: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
19: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
20: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
19: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
21: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Delhi. Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
1: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
12: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनेशिया पे

0: देखिए कोई भी नई जगह बना लीजिए या पूरा जहां भूल जाइए, लेकिन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पे ट्यून होना एवरी फ्राइडे मत भूलिएगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट है बेशुमार। लेकर आई हूँ ढेर सारा प्यार और फ्राइडे वाइब्स का तड़का, तो जरूर सुनते रहिए 104.9 एफएम। मैं हूँ आरजे स्वाति, हंसते मुस्कुराते हुए आपके ड्राइव टाइम पर आपका दे रही हूँ साथ। एंड आपको बता दूं डैलस की विद कनेक्टिंग अमेरिका यू कैन टर्न योर बिजनेस एक्सपेंसेस इनटू अ पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू अ यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी designed to boost your bottom line. And it doesn't stop there. They also help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less. So don't wait to call James today at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com. Bhool mat jaiyega connectingamericafinancials.com and start turning your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn cost into cash. तो डायलस आपकी हो कोई स्पेशल फरमाइश तो 9722355555 है स्टूडियो का नंबर, भूलिएगा मत, बताइएगा जरूर। एंड कभी कभी ना ये कहना पड़ता है कि यू नो व्हाट, नॉर्मल बातचीत के दौरान किसी की आवाज़ शायद इतनी समझ में नहीं आती, लेकिन माइक पर, स्पेशली फोन पर, आहा क्या आवाज़ आती है। ऐसा कॉम्प्लीमेंट कभी मिला है? मुझे मिला है और मुझे एक और कॉम्प्लीमेंट मिला है कि जब तुम टेलीफोन में हंसती हो तो बड़ी अच्छी आवाज़ आती है।
1: Official.
0: तो आप बता दो कि आपको गाना पता चल गया होगा मैं कौन सा बजाने वाली हूँ। डायरेक्ट में सच में रिलेट कर पा रही हूँ 90s के उस दौर में जब हमारे घर में होता था टेलीफोन और रिंग बजती। कई बार वो इतना मतलब कोई कुछ बोलता ही नहीं, ऐसा लगता कि किसी ने केवल आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन किया है। वो क्या दिन थे ना।

डैलस मंडे से थर्सडे तक हम क्लॉक देखते रहते हैं और फिर फ्राइडे को हम दिल से प्लेलिस्ट सुनते हैं जो गाने हमें भाते हैं। कुछ लोग वीकेंड का वेट करते हैं और कुछ लोग फ्राइडे नाइट का वाइब एंजॉय करते हैं क्योंकि यहीं से तो उनके वीक का पूरा रीसेट बटन ऑन हो जाता है। तो फ्राइडे का लॉजिक बड़ा ही सिंपल है कि भाई प्रेशर लेना ही नहीं है, जो पूरा हफ्ते लिया है बस उसे रिलीज करना है। एंड जिंदगी अगर बफरिंग पे चल रही हो तो फ्राइडे एक हाई स्पीड कनेक्शन जैसा होता है और उसमें 104.9 FM का साथ सोने पे सुहागा जैसा होता है। तो फ्राइडे नाइट का साइंस भी कमाल है ना कि मूड ऑटोमेटिकली हैप्पी मूड में शिफ्ट हो जाता है बिना किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के। ओनली क्या करना है, फन की फ्रिक्वेंसी राइट सेट करनी है ताकि हफ्ते भर का दर्द डिस्को के रूप में बाहर हो जाए।

0: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
1: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू अपने खाने का टेस्ट तो दिल कहता है दिस इज होम वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर जहां हर देसी एक रूफ के नीचे नॉर्थ से साउथ स्ट्रीट से फेस्टिव हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह प्योर देसी फुल मंडी एक्सपीरियंस अनमैच्ड वैरायटी अनबिलीवेबल डील्स ओनली एट देसी मंडी Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: कभी-कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री हॉरोस्कोप रीडिंग वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं प्रेम धन आरोग्य कोर्ट के मामले और बुरी नजर हर समस्या का समाधान यहां मिलता है साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 2 3 4 6 4 6 1 1 और विजिट masterjoshigram.com अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई
5: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी
6: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में मिलिए मुंबई पुणे दिल्ली एनसीआर बेंगलुरु चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से सब एक ही छत के नीचे 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो
7: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
8: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
9: Wow, Dallas, welcome back to 104.9 FM Phoenicia Radio. A radio par aapka hardik swagat hai. Aapka weekend bangal mein bajane wali RJ Swati aapka saath de rahi hai Friday. Vibe no filter Friday mein. And aapko to pata hai, Dallas, ki jab पूरे हफ्ते आप घर में कैद रहते हैं तो आज का दिन होता है बाहर जाने का दोस्तों से मिलने का मूड अपलिफ्ट करने का एंड उसके साथ साथ अगर आप में से कोई अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है अगर उसे लग रहा है कि उनके सारे दोस्त बिजी हैं उनके सारे दोस्तों के कोई प्लान्स हैं पर आपके पास कोई प्लान नहीं ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है कि एक तो मुझे कहीं ज़्यादा जाना पसंद भी नहीं आता और अगर मैं चली भी जाऊँ तो मैं वहाँ बिना अपने अच्छे मूड के इन्वॉल्व नहीं हो पाती तो मैं

घुमाती हूँ, सारे लोग बिजी होते हैं, कोई कहीं कुछ कर रहा होता है, सबके अपने कुछ प्लान्स होते हैं। मैं सोचती हूँ मेरे कोई प्लान्स क्यों नहीं होते, और अगर कोई प्लान्स होते हैं तो मैं उन प्लान से इरीटेट हो जाती हूँ, तो समझ में नहीं आता कि एक्चुअली मैं चाहती क्या हूँ। तो ऐसे में एक ही सहारा होता है, वो होता है म्यूज़िक का। और अगर म्यूज़िक बहुत मन को भाने वाले या मूड को जगाने वाले बज रहे हो तो फिर क्या बात है। यू नो व्हाट, मूड को अपलिफ्ट करने का एक और तरीका होता है। जी हाँ, जो आपको मिलने वाला है दिस में 14th to May 17th, स्टेप इनटू अ 3-day इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रिकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस्ड फैसिलिटेटर्स। एंड बिकॉज समटाइम्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज जस्ट स्लो डाउन एंड enjoy the vibe. register now at oshouniversal.org. कभी कभी लाइफ में ऐसा वाला टर्न लेना चाहिए जहां पर आप सब कुछ को पॉज करके अपने लिए वक्त निकालते हो।

यार ये गाना 2 वीक पहले ही रिलीज हुआ है और इसमें गजब का वाइब है यार. फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना ही है, इसे लेकर यहाँ तक का सफर, वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, मज़ा ही आ गया. डैलस, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं और उस सवाल का अगर आप जवाब दें और उस जवाब के बदले आपको मिले कुछ जीतने का मौका, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब जीतना तो चाहेंगे ना. तो चलिए, मैं एक गाना प्ले कर रही हूँ, आपको बताना है फीमेल सिंगर का नाम. जी हाँ, फीमेल सिंगर का जब आप नाम बताएंगे तो मैं आपको कुछ जीतने का मौका दे सकती हूँ. लेकिन मुझे ज़रा फाइंड आउट करने दीजिए कि क्या जीतेंगे आप. ओके, सो हियर इज़ योर चांस टू विन द कड़ाही पनीर और कड़ाही चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स, विच इज़ लोकेटेड इन एलन. एंड आप इनकी स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे भी इंजॉय कर सकते हैं विद एक्साइटिंग न्यू डिशेस रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली, लोकेटेड ऑफ मैकडरमॉट ड्राइव इन एलन. आप ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए chandigarhbites.com. और आपके लिए सवाल ये है कि आप ये गाना सुनिए और गाना सुनकर बताइए कि इसकी फीमेल सिंगर कौन है, और आप जीत जाएंगे चंडीगढ़ बाइट से कड़ाही पनीर या कड़ाही चिकन. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर क्लेम कीजिएगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन क्लेम कीजिएगा. बट एक बात याद रखिए,

आपने ये गिव अवे किसी भी शो में पिछले एक महीने के अंदर नहीं जीता होगा. आपका नाम ड्यूप्लीकेट होने पर ये गिव अवे वॉइड कर दिया जाएगा. तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आपने एक महीने तक के अंदर ये गिव अवे नहीं जीता है. बताइए फीमेल सिंगर का नाम और ले जाइए ये कराही पनीर और कराही चिकन का स्पेशल ऑफर फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स विच इज लोकेटेड इन एलन. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. जवाब दीजिए डालिस.

वाह वाह वाह, क्या बात है. पता है मैंने जानबूझ के ये गाना प्ले किया था डैलस, क्योंकि मुझे पता था कि आपको कन्फ्यूजन होगा ही होगा. एंड बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हुआ पूर्णिमा से. एंड सबको लग रहा था कि ये गाना पूर्णिमा ने गाया है. एंड उस समय के ऐसे गाने अक्सर पूर्णिमा के नाम हुआ करते थे. लेकिन आप भूल रहे हैं कि एक और उनके टक्कर की थी. किसी को लगा कि ये थोड़ा बोल्ड आवाज़ में गाया गया है, तो कहीं ये जसविंदर नरोला तो नहीं है. वो भी नहीं है. एंड द करेक्ट आंसर इज हेमा सरदेसाई. एक आध आंसर गलत आने के बाद फाइनली एक आंसर आया है जो कि करेक्ट है. एंड वो स्वप्निल ने आंसर किया है. तो स्वप्निल आपको बहुत ढेर सारी बधाई, क्योंकि आप जीतते हैं चंडीगढ़ बाइट्स का ये गिव अवे. एंड द रियल सिंगर इज हेमा सरदेसाई, जिनकी आवाज़ बहुत रेयरली हमको किसी फिल्मों में सुनाई दी है, लेकिन जब भी आई है तो बड़ा मज़ा आया है. एंड जोर फिल्म 1998 में आई थी. नेक्स्ट गाना है ये. ठीक 15 मिनट बचे हैं डैलस.

देखे भूल के भी आप किसी की गली जाएं या नहीं जाएं, लेकिन डायल अगर आपने गलती से चेंज किया है तो भूल के भी चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि अब जो गाना बजेगा ना उसके लिए वॉल्यूम थोड़ा और अप कर लीजिए, क्योंकि अब जो ट्रैक बजने वाला है वो पड़ोसियों को भी यानी कि आपके आजू बाजू आस पास बैठे हुए लोगों को भी नचा देगा। तैयार हो जाइए क्योंकि आपके सामने आ रहा है गाना ये। नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये गाना क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी दुनिया में अच्छे गाने हैं उसका रीमेक वर्जन बन गया है धुरंधर में।

All right, Dallas, मेरा हो गया है आज आपसे विदा लेने का वक्त. तो मैं यही कहना चाहूँगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पार्टी करते रहिए और मुझे मिस कीजिएगा. नेक्स्ट वीक फ्राइडे को एक बार फिर से आपके साथ जुड़ जाऊँगी एंड हम सब एन्जॉय करेंगे फ्राइडे वाइब्स विद नो फिल्टर. 104.9 FM फनिशर रेडियो सुन रहे थे आप, मुझे यानी आरजे स्वाति को. लेती हूँ आज के लिए इजाज़त.

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: Get your body moving and your heart pumping with the hottest dance tracks on your airwaves.
3: Turn it up.

0: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
1: Bawarchi Biryani is in Plano, bigger, better and the best now, serving everyday lunch specials, thalis, biryani combos and refreshing Irani chai with delicious Indian snacks, freshly made sweets and bakery items. Please walk into Bawarchi Plano or visit bawarchiplano.com.
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apne kalam से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओगी. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया.
3: अभी मजा आएगा ना भिड़ो.
4: पुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका. Funny shopping!
5: And let the good times roll!

0: सिर्फ हवा में नहीं स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस। मेंशन फन एशिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस। Call Amreen at 214-909-6601
1: or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
0: Amreen Salon. Style that moves with you.
2: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hope

solution and let the good times roll.

0: Asia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये, ये, ये, ये।
3: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
4: Official tax and finance partner, AG Fintax.
3: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
5: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना जस्ट लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ओनली वन नेम पॉप्स अप एजी फिनटैक्स दिस टैक्स सीजन फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग फाइल स्मार्ट फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस एंड एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना दैट्स आवर कमिटमेंट तो इस बार डिले क्यों कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com ग्रंथी टैक्स प्रोस पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स प्लान टुडे प्रॉफिट टुमारो
6: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact Desi.
1: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर. एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर.
2: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस.
1: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर.
2: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल.
3: अभी मजा आएगा ना भिड़ो.
4: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे.
5: हाय, दिस इज कोंकणा सेन शर्मा एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
4: अभी मजा आएगा ना भिड़ो.
5: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनी.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

Bringing South Asia closer, more closer. Phoenicia 104.9 FM.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाएं।
3: आज जी रीडिंग्स ऑफ गाइडेंस ओनली ऑन रिसर्च में वेरी।
4: या दिस इज शक्ति कपूर एंड यू गाइस आर लिसनिंग टू मी ऑन द फन एशिया रेडियो।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो

की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

0: Tírate.
1: FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Facts they see.
2: फिर नजरें मिलाती हूँ. फेरे होते हैं. और मैं फूल फेंक रहा हूँ. जाने लगती हो और मजाक कर रहा था ना बिल्ली.

0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: कभी सोचा है हमेशा जैक के साथ जिल ही क्यों जाती है हिल पे? जैक के साथ जॉनी भी तो जा सकता है।
1: इट्स अ यूनिसेक्स सॉन्ग।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 6823464611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
1: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली ऑन रिसर्च में वेरी।
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
4: हाय, दिस इज शर्वरी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

0: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
1: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
0: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
2: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit myfamilyhomeloan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. Myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
3: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर
4: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस
3: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर
4: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल
5: इमिग्रेशन पेपर वर्क से परेशान अब टेंशन छोड़िए easypetition.com के साथ USCIS पेटिशन फाइल करना हुआ इजी आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं पेटिशंस लाइक F1 या B1 चेंज ऑफ स्टेटस F1 OPT H4 विद EAD I-485 और I-485J N400 नेचुरलाइजेशन और 200 से भी ज्यादा पेटिशन टाइप्स और प्राइसिंग सिर्फ $30 तो आज ही जाइए easypetition.com पर easypetition.com
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
8: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो. 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में मिलिए मुंबई पुणे दिल्ली एनसीआर बेंगलुरु चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से सब एक ही छत के नीचे 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो
14: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
15: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनी

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

सुप्रभातो सोसु स्वागतम आप ही के कार्यक्रम म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूँ आपके संग संगीता। आपका और मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक, और हमारे साथ रहेंगे मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये वीकेंड सुखद जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, और अब आप जुड़े हैं मेरे साथ ऑन दिस म्यूजिकल जर्नी, जहाँ मैं ले चलूंगी आपको कुछ खास प्रस्तुति की ओर, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हैप्पी मदर्स डे, और सेलिब्रेट कर रहे हैं मदरहुड का वो नया एहसास, वो बहुत ही प्यारा रिश्ता, और सेलिब्रेटिंग सम बॉलीवुड मदर्स हु हैव रिसेंटली बिकम मॉम्स एंड आर एंजॉयिंग दिस जर्नी। रिसेंटली बिकेम मॉम्स यानी कि इन द लास्ट कपल ईयर्स और सो, तो स्पॉटलाइट है उन सेलिब्रिटीज का जो अब तक मैनेज कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं जगल करना बिटवीन मदरहुड एंड बॉलीवुड। With that said, any new moms who are in Bollywood coming to your mind, let me know. उन पर फिल्माए गए कोई गाने सुनना चाह रहे हैं खास तौर पे, तो वो भी बताएंगे आप मुझे 972-235-5555 पे। वैसे ये जो पहला गाना है इसे सुनिए और याद कीजिए कौन थी हीरोइन इस गाने में, और बताएंगे who is this I'm talking about to begin the show. 972-235-5555 is the number to the studio. Give us a call, keeping the show interactive. Lines are open for your calls.

0: और इस गाने को सुनकर अगर आपने जवाब दिया कि भाई ये तो आपने गाना सुनवाया कियारा आडवाणी पर फिल्माया, तो यू आर सो करेक्ट. कियारा आडवाणी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा गॉट मैरिड इन फेब्रुअरी ऑफ 2023 एंड देन दे हैड देयर बेबी. बेबी का नाम है सराया एंड शी इज नाउ 10 months ओल्ड. अब कियारा के फैन सोच रहे हैं भाई कियारा को हम फिर बड़े पर्दे पर देखेंगे. हाँ जी देखेंगे एंड लॉट ऑफ अस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हर कमिंग बैक विथ अ फिल्म. द फिल्म कॉल्ड टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स एंड इट इज गोइंग टू बी रिलीज सून एंड देयर इज लॉट ऑफ बज़ अराउंड दिस फिल्म ऑलरेडी. और अब चाहने वाले वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कियारा आडवाणी के कम बैक का और सेलिब्रेट कर रहे हैं टू सी हर इन द पोस्ट baby glow in this film. Again, it's called Toxic, a fairy tale for grown-ups.
1: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Fun Asia Radio.
0: We're talking about and celebrating motherhood aur is segment mein we are celebrating the new moms in Bollywood. New yani ki jinki babies you know hue hain in the last couple of years or so. Aur ek aur naam hai wo hai Radhika Apte ka. Radhika Apte jinko aap pehchante hain inki performances ke zariye in Hindi films and Marathi films as well as international films. Filmon ke naam agar puche to they are Badlapur, Parched, Padman, अंधाधुन और उसके अलावा द वेडिंग गेस्ट जो 2018 में रिलीज हुई थी. एंड शी इज रियली वेल नोन फॉर हर बोल्ड परफॉर्मेंस ड्रिवन रोल्स. शी केम बैक टू वर्क एंड आई विल टेल यू अबाउट दैट आफ्टर दिस सॉन्ग.

0: इस गाने में दिखाई दिए थे तुषार कपूर उनके साथ राधिका आप्टे हु इज अ न्यू मॉम वेल 1.5 साल की बेबी है इनकी. राधिका आप्टे रिटर्न टू वर्क राइट आफ्टर हर मैटरनिटी लीव एंड हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन हर प्रोफेशनल लाइफ सिंस गिविंग बर्थ टू हर डॉटर इन दिसंबर 2024. इन फैक्ट इनका क्या था सिचुएशन दैट शी एक्चुअली मेड हेडलाइंस इन अर्ली 2025 for returning to work just 1 week after delivery, well, for attending Zoom meetings. And you know what, this is mainly because this was her commitment to her ongoing work on her film Sister Midnight, which premiered at Cannes in 2023. Amazing, amazing commitment and dedication to work is what I would say for Radhika Apte, who is a new mom and the baby is only under 1.5 years or matlab 1.5 saal ki baby hai but she's back to work. Amazing, amazing job Radhika Apte. Take it easy is what I'd say.
1: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Phoenicia Radio
0: 104.9 FM. Celebrating Mother's Day aur is segment mein aise geet hai जिनमें शामिल हैं वो वाली बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जो बहुत ही कामयाब रही हैं इन हर इन देयर वर्क इन द इंडस्ट्री और फिर दे बिकेम मॉम्स एंड वी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर दे अप टू नाउ. सो हियर्स द नेक्स्ट वन. आप मुझे बताएं इस गाने को सुनकर कि इसमें जो हीरोइन है वो कौन है. वो अभी हाल ही में रिसेंटली मॉम बनी है. आई वॉन्ट से अबाउट 6 months अगो शी हैड हर बेबी बॉय. लेट मी नो हु वी टॉकिंग अबाउट. 972-235-5555 is the number.

0: सही जवाब दिया आपने, उसके लिए शुक्रिया। कॉल करने के लिए शुक्रिया, सुनने के लिए बहुत ही शुक्रिया। तो आप सभी का सही था जवाब कि ये गाना फिल्माया गया कटरीना कैफ पे, एंड कटरीना कैफ मैरिड टू विक्की कौशल एंड देन दे हैव अ बेबी बॉय नेम्ड विहान हु वाज बोर्न 6 months अगो। एंड उसके बाद व्हाट हैज कटरीना बीन अप टू? वेल, शी इज करंटली इन अ स्लो private return phase, balancing new motherhood with gradually re-entering visibility and not rushing back into full-time work. With that said, abhi pichle hafte hi pehli baar dikhai diye the Vicky Kaushal aur Katrina Kaif and bahar nikle the, and the paps definitely surrounded them and they've been very very excited ki भाई दिखाई तो दिए बंबई में।
1: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
0: और अब बारी आई है किसकी? वेल, दीपिका पादुकोण की। We'll hear, if you know what Deepika is up to these days, call me and let me know at 972-235-5555. नहीं तो मैं लौट कर आपको बताती हूँ what is Deepika up to? Is she back in the industry? Or is she keeping it quiet and cozy with her baby?

एंड वार्म वेलकम बैक टू म्यूजिक मंत्र दोस्तों, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता, आपका और मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ है मीठे तराने और खूबसूरत संगीत, जो कि आज सजे हुए हैं मदर्स डे के सौजन से। तो पिछले सेगमेंट में बातें हो रही थी अबाउट न्यू मॉम्स इन बॉलीवुड, और अब आपको ले चलती हूँ कुछ एक ही अलग मोड़ पे, क्योंकि अब बातें सिर्फ मदर्स की नहीं, अब बात है उन बॉलीवुड मॉम्स की जिन्होंने वक्त के साथ एक और खूबसूरत रोल अपनाया है, एंड दैट इज अबाउट ग्रैंड मदरहुड। ग्रैंड मदर्स, यस आई नो इट्स मेकिंग यू थिंक, राइट? ग्रैंड मदर्स ऑफ बॉलीवुड। सो इस सेगमेंट में सुनेंगे हम कुछ मीठे तराने फ्रॉम यस्टर ईयर्स, कुछ यादें ताज़ा होंगी अबाउट दीज वंडरफुल सेलिब्रिटीज हु हैव प्लेड फैंटास्टिक रोल्स ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन, और अब बन चुकी हैं ये ग्रैंडमास, नानी हो या दादी। शामिल करेंगे हम आज इनको म्यूजिक मंत्र में ऑल द वे अंटिल 10 AM, और बातें करेंगे इनके परिवार वालों के बारे में भी। शुरुआत करते हैं पटौदी और कपूर फैमिलीज के साथ। तो जब ये मैं कहती हूँ पटौदी एंड कपूर फैमिली, यू नो कि ये जुड़े हुए हैं शर्मिला टैगोर के साथ, तो बताइए मुझे इन शर्मिला टैगोर के ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम याद हैं आपको? बताइए

फैमिलीज के साथ। तो जब ये मैं कहती हूँ पर टॉडी एंड कपूर फैमिली यू नो कि ये जुड़े हुए हैं शर्मिला टैगोर के साथ, तो बताइए मुझे इन शर्मिला टैगोर के ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम याद हैं आपको? बताइएगा 9722355555 पे। वांट टू टेल यू देयर मोर देन टू ग्रैंड चिल्ड्रन, देयर आर फोर। इफ यू रिमेंबर देम ऑल लेट मी नो, अदरवाइज मैं आके बताती हूँ आपको गाने की उस ओर पे।

बहुत ही प्यारा गीत। आई नो बहुत सारी यादें आ गई। शर्मिला टैगोर की बातें करेंगे उनकी फैमिली की, पर पहले ये बताती चलूं कि स्प्रिंग जैसा वेदर है डैलस में और आज हाई के लिए हो गए 89 एंड इट्स अ सनी डे, इट्स अ ब्यूटिफुल सनी मॉर्निंग। और कल थोड़ी बारिश है, एक्चुअली काफ़ी बारिश है, 80% बारिश होने की संभावना है। Well, Mother's Day hai, you planned to be indoors, I'm guessing, I'm hoping, because it's going to rain, it's 80% chance of rain, with a high of 83, low of 66. Monday ko bhi bata raha hai ki it's barish hogi, 62 is the low, 78 high, and then we're going to see the sunshine again.

तो बात हो गई शर्मिला टैगोर की के रिलेशनशिप विद सैरा, बट जो इनका भाई है इब्राहिम अली खान, उनकी और दादी शर्मिला टैगोर के साथ भी एक बहुत ही वार्म, बहुत ही प्यार भरा, बहुत ही इज्जत वाला, इज्जत आई गेस रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है, जहां वो उनकी ग्रेस और विजडम को बहुत ही मायने देते हैं. ब्यूटिफुल. With that, then I guess it's time to play another song for Sharmila Tagore's older grandchildren, and that brings us to Sarah's song, Aankh Mare. Sharmila Tagore ki do aur grandchildren hai, unki baare mein aake baat karte hain hum. One more remix.

बातें कर रहे हैं हम पटौदी और कपूर फैमिली की रिलेशनशिप के बारे में, और ये ताल्लुक रखते हैं दादी और नानी की दोनों के जरिए, यानी कि शर्मिला टैगोर जो की हैं दादी ऑफ सैरा अली खान एंड इब्राहिम अली खान एंड ऑफ तैमूर एंड जे अली खान, एंड दी टू नेम्स तैमूर अली खान और जे अली खान जो हैं, ये जो हैं बहुत ही प्यारे छोटे छोटे बॉयज़ हैं, एंड दे आर द किड्स ऑफ करीना कपूर एंड सैफ अली खान, और उससे भाई ये नाता है पपीता कपूर का भी. सो बिलोंगिंग टू द कपूर फैमिली, करीना कपूर एंड डॉटर ऑफ रणधीर कपूर एंड बबीता कपूर. So, taking you to the next track after I've told you a little bit about Dream Home Mortgage, though. Dream Home Mortgage, दोस्तों नाम है ये आपको जो याद रहता है already, I think now by now, अगर नहीं तो ये बताना चाहूंगी आपको कि ये help करते हैं परिवारों को अपना होम ओनरशिप का सपना पूरा करने के लिए, और ये करते आ रहे हैं 1998 से. इनकी खासियत है कि इनकी एक्सपर्ट टीम डिलीवर करती है स्ट्रेस फ्री टेलर्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस, एंड दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स. नाउ दैट यू नो ऑल ऑफ दैट, आप याद रखेंगे नाम ड्रीम होम मॉर्गेज का. अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com या इन्हें कॉल कर सकते हैं 972-245-5626 पर, और आप बना सकते हैं आपका ड्रीम होम अ रियलिटी with, again, it's Dream Home Mortgage. Babita Kapoor, तो पता है आपको कि कौन सा गाना सुनेंगे आप, the iconic Babita Kapoor song. आप यहां आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए.

0: पर बना।
1: मगर क्यों?
0: आजादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाबा
1: सुनो तो, सुनो तो।

0: बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: बबीता कपूर बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस रह चुकी हैं और आज तैमूर और जहांगीर की नानी हैं। और तैमूर एंड अजय अली खान जो कि हैं करीना और सैफ अली के बहुत ही प्यारे प्यारे प्यारे दो बॉयज, बहुत ही अपने चार्म के साथ और मीडिया प्रेजेंस की वजह से इसी छोटी उम्र में स्पॉटलाइट में आ गए हैं। और अब दोनों अपने लेजेंडरी शर्मिला टैगोर और कपूर पटौदी लेगेसी का हिस्सा हैं। एंड व्हेन दे कम टुगेदर एंड टेक पिक्चर्स और शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, तो सभी फैंस बहुत ही खुश हो जाते हैं।
2: 104.9 FM Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
1: नानी बबीता कपूर और दादी शर्मिला टैगोर और मामी हैं करीना कपूर। Talking about grandmas on this side of Music Mantra today, all the way until 10 a.m. Are there any other grandmas in Bollywood you want to talk about or hear about? Let me know. 972-235-5555.

0: तो शर्मिला टैगोर और बबीता कपूर नानी और यानी कि दादी और नानी, तो ऐसे ही कुछ और दादी और नानी शामिल हैं आज के इस कार्यक्रम में. एनी ग्रैंड मॉम्स कैन यू थिंक ऑफ, लेट मी नो एट 9722355555. एंड दिस नेक्स्ट सेगमेंट एक्चुअली आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद नीतू सिंह एज दी दादी. अगर मैं कहूँ नीतू सिंह दादी है तो उनकी ग्रैंड बेबी का नाम क्या है बताएंगे मुझे आप 9722355555 पे. इफ़ यू हैव एनी आइडियाज, सजेशन, रिकमेंडेशन अबाउट हु शुड बी इंक्लूडेड ऑन टुडे शो, लेट मी नो 9722355555.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: लैपटॉप, चार्जर, कॉफी, फोन, उफ, ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता.
3: एग्जैक्टली. और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग.
2: ओ गॉड, पहले आउटफिट, फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है.
3: आहा, आई कीप दैट पाथ सिंपल.
2: कैसे?
3: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे.
2: ओ, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी.
3: या कैरेट लेन काइंड.
4: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product, now open in Frisco.
5: Whether it's a private housewarming, a family wedding reception, or a large convention, Bawarchi Biryani caters everything from live dosas and freshly grilled appetizers to chat stations and more. Bawarchi Biryani knows exactly how to make your event the talk of the town. Make your event memorable. Visit BawarchiCaters.com or call 496-995-9443.
6: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. माई फैमिली होम लोन .com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट माई फैमिली होम लोन .com और कॉल 4697343338. 4697343338. माई फैमिली होम लोन .com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
7: सब कुछ साफ रख सकते हो,
8: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
9: क्योंकि ये कौन बोला?
8: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
10: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 9728772500.
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
14: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
15: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
14: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
16: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग. और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
17: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है. हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस.
16: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं.
17: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
16: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू. उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है.
17: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे.
16: एग्जैक्टली. अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर.
17: नंबर बोल जल्दी.
16: कॉल जेम्स एट 3218887345 और विजिट connectingamericafinancials.com.
18: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश.
7: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಡ್ಯಾಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಇಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಇಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ 9th May ಅಂಡ್ 10th May. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ, ಫ್ರಿಸ್ಕೋ, ಡ್ಯಾಲಸ್. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8 PM. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
18: ಅಭಿ ಬಜಾಯೇಗಾ ನಾ ಬಿಡು.
19: ಪುನ್ ಬೋಲೆ ದೋ ಫುಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಧಮಾಕಾ ಫನಿಷ್.

0: मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज हम ऑन म्यूजिक मंत्र, जिसमें मैं हूँ आपके संग संगीता. बिग थैंक यू टू ईच ऑफ यू फॉर ट्यूनिंग इन दिस मॉर्निंग. आई गॉट अ फ्यू कॉल्स. जब मैंने पूछा सवाल कि जब मैं कहती हूँ नीतू कपूर तो आप कहेंगे उनकी ग्रैंड डॉटर का नाम, फिर एक बार बताइए. चलिए, इफ यू हैवंट कॉल्ड मी येट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग टू यू एट 972-235-5555. नीतू सिंह की ग्रैंड चाइल्ड का नाम क्या है? We'll come back and talk about it.
1: I'm sorry.

Such a lovely song featuring Neetu Singh / Neetu Kapoor. फिर एक बार नीतू कपूर के grandchildren का नाम पूछ रही हूँ, but mainly I'm looking for the name of her granddaughter from Alia Bhatt and Ranbir Kapoor. So, Neetu Singh यानी कि नीतू कपूर है दादी और नानी का नाम है सोनी राजान. वो वाली grandchild का नाम पूछ रही हूँ मैं आपसे. बताएंगे मुझे 9722355555 पे. पर मैं अभी ये बताना चाहूंगी कि नानी और दादी जो हैं यानी कि सोनी राजान और नीतू कपूर, they share a warm and respectful relationship and इनके लिए जरूरी था द स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली टाइज आफ्टर आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर गॉट मैरिड. इनका जो बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रांग है एंड इट रिफ्लेक्ट्स लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ म्यूचुअल एडमिरेशन एंड द कमिंग टुगेदर ऑफ द टू आइकॉनिक बॉलीवुड फैमिलीज. सोनू राजदान जो जानी जाती हैं फॉर काम एंड थॉटफुल पर्सनैलिटी, हमेशा बातें करती हैं कपूर फैमिली के लिए के बारे में विद लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड द लव दैट द डॉटर गेट्स फ्रॉम हर इन-लॉज. एंड नीतू सिंह ऑन द अदर हैंड हैज वार्मली वेलकम्ड आलिया भट्ट इनटू द फैमिली. और जब साथ में ये मिलते हैं और साथ में जब तस्वीरें लेते हैं, बॉय डू दे गेट वायरल ऑन सोशल मीडिया और व्हाट. फिर एक बार पूछ रही हूँ आपसे, नीतू कपूर जो हैं वो दादी हैं टू हू, मतलब इनकी जो पोती है ग्रैंड डॉटर फ्रॉम आलिया भट्ट एंड रणबीर, व्हाट इज हर नेम, लेट मी नो. अनदर ब्यूटीफुल आइकॉनिक ट्रैक फॉर आलिया भट्ट.

0: वैसे जिंदगी है हंसी और हम सब उम्मीद कर रही हूँ कि कहते हैं लव यू जिंदगी, पर कभी अगर कभी जो अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए और आप अपने आप को पाएं इन्वॉल्व्ड इन अ कार और अ ट्रक एक्सीडेंट और मे बी इन अ स्लिप और फॉल इंसिडेंट, नाम याद रखिएगा अटर्नी उमर ख्वाजा का। ये आएंगे आपके लिए, आपका केस फाइट करेंगे, आपकी मदद करेंगे टू गेट अ कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व। और याद रखिए ये भी कि ऐसे जब होते हैं इंसिडेंट्स तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी आपको काफ़ी आई गेस इंटरेक्शन करना पड़ता है और डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल। सो रिमेंबर अगेन द नेम अटर्नी उमर ख्वाजा, बिकॉज यू विल नीड एन अटर्नी दैट विल मेक श्योर यू आर कॉम्पेंसेटेड। In addition, I want to tell you that when you are connected with the attorney Umar Khwaja, you don't have to pay until you win. For all that and more, and for a consultation for free, call them at 469-300-5046. For more information, in another way, is to visit attorneyomar.com.
1: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
0: That was a beautiful song जो कि फिल्माया गया था आलिया भट्ट पर, और आलिया भट्ट की बात करते हैं तो वो हैं बहू of नीतू सिंह, और हम बातें कर रहे हैं दादी और नानियों की। Well, नीतू कपूर is a daddy to आलिया भट्ट's daughter, और ये बताना चाहूंगी without further ado कि उस छोटी सी प्यारी सी गुड़िया का नाम है राहा कपूर। और जो मैं पहले कह रही थी कि सोनी राजदान और नीतू कपूर दे शेयर अ वेरी रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप, वेल वांट टू ऐड टू दैट दैट राहा कपूर के आने से ऑफकोर्स दे बोथ बिकेम ग्रैंड मदर्स, एक नानी एक दादी, और दोनों ही फैमिलीज दोनों ही परिवार अब साथ दिखाई देते हैं, साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडेज मनाते हैं और पारिवारिक ओकेजन्स के लिए साथ साथ आते हैं, और क्लोज निट और बहुत ही बढ़िया कमाडरी और डायनामिक दिखाते हैं। इट्स रियली ब्यूटिफुल टू सी सोनी राजदान एंड नीतू सिंह और नीतू कपूर रिप्रेजेंट अ मॉडर्न बॉलीवुड फैमिली बॉन्ड where friendship, warmth and family values come together. Definitely want to also add ki Neetu Kapoor nani bhi hain, and Neetu Kapoor ki bittiya jo hain unka naam hai Ridhima Kapoor Sani, and she's a jewelry designer and an entrepreneur, aur unki ek bittiya hai unka naam hai Ridhima, the granddaughter's name is Samara Sani. So Neetu Kapoor nani bhi hain, dadi bhi hain, but definitely, you know, with Bollywood as the thread that keeps them together, I definitely wanted to bring to you the Soni Razdan and Neetu Kapoor ke relationship ki dynamic ki kuch baatein. Here's another very emotional song. It's called Dilbaro. Enjoy it. सोनी राजदान की बात करते हुए

Soni Razan and Neetu Kapoor represent a modern Bollywood family bond where friendship, warmth and family values beautifully come together. Well, from there, taking you to another wonderful Nani. Or inka naam kya hai, aap mujhe batayenge 972-235-5555 pe. Umeed kar rahi hoon ki aaj ka ye segment aap pasand kar rahe hain. Le aayi hoon aapke liye Mother's Day ke naate kuch logon ke baare mein baat kar rahe hain. Wo na hi sirf moms hain, par grandmoms hain. Nani aur dadi, unko yaad kar rahe hain hum. Enjoy bhi kar rahe hain ye geet. तो चलिए बताएं इस नानी का नाम 972-235-5555 पे. एक्चुअली यू नो व्हाट, हियर आई विल मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग. इनकी बिटिया का नाम बताएंगे आप मुझे 972-235-5555 पे.

सही पहचाना आप सभी ने और कहा कि भैया सिर्फ बिटिया का नाम क्यों, दोनों का नाम बताते हैं. वेल दैट इज डिंपल कपाड़िया और उनकी बिटिया का नाम है ट्विंकल खन्ना. तो डिंपल कपाड़िया अपनी प्राइवेट नेचर और बहुत ही डीप अफेक्शन के लिए जानी जाती हैं. वो और वो फैमिली मैटर्स को ज़्यादातर मीडिया स्पॉटलाइट से दूर ही रखती हैं और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ उनका बॉन्ड काफ़ी वार्म और क्लोज है. और ये बहुत ध्यान रखती हैं अपनी फैमिली का. फैमिली यानी कि ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार और उनके बच्चों का और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं 24-year-old आरव कुमार एंड 14-year-old नितारा. एंड इनके साथ बहुत ही इनका एक क्लोज खास रिश्ता है. शी कीप्स देम रियली वेल गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड.

0: And taking this minute to tell you about Osho Universal Retreat that is happening this May 14th through 17th, where you will step into a three-day immersive journey to release stress, clear emotional blocks, and reconnect with yourself. And for that, register at oshouniversal.org.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes, and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: You turned down that job to become a diving instructor?
4: Yeah, I thought Ma would say no.
3: And?
4: She said, build your life the way you dream it.
5: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 2809 Preston Road, suite number 1200 Frisco. Tanishq, a Tata product, raised you to become. Conditions apply.
6: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
7: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
8: इमिग्रेशन पेपर वर्क से परेशान? अब टेंशन छोड़िए। easypetition.com के साथ USCIS पेटिशन फाइल करना हुआ इजी। आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं पेटिशंस लाइक F1 या B1 चेंज ऑफ स्टेटस, F1 OPT, H4 विद EAD, I-485 और I-485J, N400 नेचुरलाइजेशन और 200 से भी ज्यादा पेटिशन टाइप्स और प्राइसिंग सिर्फ $30. तो आज ही जाइए easypetition.com पर, easypetition.com.
9: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डायलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
14: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
15: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.
0: Hey, एंड वेलकम बैक टू म्यूजिक मंत्र दोस्तों, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आज हम बातें कर रहे हैं मदर्स डे के हासिल से और बातें कर रहे हैं कुछ ग्रैंड मदर्स के बारे में। इन बॉलीवुड नानी या दादी हो, बातें करेंगे ऑल द वे टिल 10 AM। वेल, दिस इज एक्चुअली द फाइनल सेगमेंट फॉर दिस मॉर्निंग्स म्यूजिक मंत्र, जिसमें रही हूं मैं आपके संग संगीता। और ये वाला सेगमेंट आई वुड लाइक टू ओपन अप with your chance to get a giveaway. और ये giveaway की जानिब से आ रहा है एक hamper filled with essential groceries from Desi Mandi located in Louisville. और Louisville जाइए, Desi Mandi जाइए और देखिए इनके पास freshest groceries भी हैं, साथ साथ हैं कुछ घर की कुछ सामग्री जो you need it in the kitchen, you need some housewares, some herbal stuff and also some things such as a carom board and things that evoke nostalgia, and you enjoy it shopping it at a Desi grocery store. So that name to remember is Desi Mandi. Phir ek bar bataungi aapko that they are located in Louisville, Texas. So for your chance to win a grocery basket from Desi Mandi, aapko ye batana hai mujhe. अगर दादी माँ, आई एम सॉरी एक्चुअली नानी माँ, नानी है तनुजा और बिटिया है काजोल, टेल मी द नेम्स ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन फॉर तनुजा एट 972-235-5555। तनुजा के ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम यानी कि काजोल के बच्चों के नाम बताइएगा मुझे, एंड आई पुट योर नेम इन अ ड्रॉइंग टू विन फॉर योर चांस टू विन अ ग्रोसरी बास्केट फ्रॉम देसी मंडी।

First of all, और आपको ये बताना चाहूंगी उनके दोनों के नाम, the name of the two kids of Kajol and Ajay Devgan, or the kids or grandkids rather of Tanuja are Naisa and Yug Devgan. And Naisa is, I want to say, 23 years old, and she is kind of, people are contemplating whether she is going to get into Bollywood or not. Well, ऐसा लग रहा है कि फिलहाल इस वक्त कह सकते हैं शी इज प्रॉब्ली नॉट इंटरेस्टेड इन एंटरिंग बॉलीवुड. एंड युग, वेल, ही इज यंग स्टिल एंड ही स्टिल स्टडिंग इन स्कूल, सो ही हैज सम मोर टाइम बिफोर वी गेट देयर एंड ट्राई टू सी इफ ही कैन बी इन द पब्लिक आई और नॉट. तनुजा के बारे में बताऊं तो ये है कि तनुजा की जो वार्म और एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी है, वो सेम एनर्जी वो अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स में भी लेकर आती हैं. और आप देखेंगे उनके अपने उनकी बेटी के साथ इनका बहुत ही करीबी और बहुत ही प्यार वाला बॉन्ड है. और भले वो मीडिया से थोड़ी प्राइवेट रहती हैं, पर फैमिली सेलिब्रेशंस में डेफिनेटली नज़र आती हैं.

What a beautiful track that was from the film Jewel Thief. And आपसे से किया सवाल मैंने कि तनुजा की जो बिट्टियां हैं काजोल और उनके दो बच्चे हैं उनके नाम बताइए मुझे. तो I got the answer. दो बच्चे हैं काजोल और अजय देवगन के और तनुजा के ग्रैंड किड्स हुए वो. एंड द विनर इज अचल. अचल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग दैट हैम्पर फिल्ड विद एसेंशियल ग्रोसरीज फ्रॉम देसी मंडी इन लो

0: काजोल, अजय देवगन, उनके दो बच्चे और नानी का नाम तनुजा और एक दादी का नाम है अब मेरे पास, जिनके बारे में बातें करेंगे हम इन अ मिनट। आई वांट टू फर्स्ट टेल यू भाई, मदर्स डे है, आप ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं कोई अच्छा तोहफा हो, कुछ बहुत ही खास हो, कुछ यादगार हो, तो कहना चाहूँगी नाम मलबार हो, तो शाइन ब्राइट फ्रेंड्स विथ डायमंड्स फ्रॉम मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, इनका बड़ा शोरूम है, फ्रिस्को में है, एंड वेरी स्पेसिफिकली वांट टू टेल यू दे लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। अब ये जगह आप जाएंगे और फिर आप इसे बनाएंगे योर गो टू डेस्टिनेशन फॉर व्हाट, वेल ऑफकोर्स अमेजिंग ज्वेलरी, स्टनिंग डायमंड रिंग्स हैं इनके पास, इयररिंग्स हैं, बहुत ही खूबसूरत नेकलेसेस हैं, बहुत ही ऐसी चीजें हैं, प्यारी प्यारी चीजें, दैट विल एड स्पार्कल फॉर एवरी स्पेशल मोमेंट, जैसे कि क्लासिक सॉलिटेयर्स हैं इनके पास, और अगर आप ट्रेडिशनल पीसेस को नहीं इतना पसंद करते हैं, बताना चाहूंगी कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स भी हैं इनके पास, एंड फ्रेंड्स द डायमंड कलेक्शन ब्लेंड सुपीरियर क्वालिटी विथ टाइमलेस डिजाइन, इट डजेंट गेट बेटर देन दिस, एंड यू वॉन्ट दीज पीसेज सो दैट इट बिकम परफेक्ट for engagements, for any occasion is what I'd say, but with Mother's Day and some anniversaries that you're celebrating, you definitely want to go there, you want to check out Malabar. For now, you could download the mobile app and get all the details.
1: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
0: तो जैसा मैं कह रही थी कि दादी माँ के बारे में बात करेंगे, तो वो नाम है जया बच्चन का। नाम लेते ही आप या आपको पता है दैट इंडियन सिनेमा की सबसे रिस्पेक्टेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। इनकी फिल्में आई थी अभिमान, गुड्डी, शोले, दीज वर क्लासिक फिल्म्स, और इन्हीं से इन्होंने अपनी पहचान बहुत ही स्ट्रांग बनाई, और आज वो अपनी परिवार की लेगेसी का इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, और अमिताभ बच्चन के साथ एक पावरफुल पब्लिक लाइफ शेयर करते हुए अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन को हाउएवर बहुत ही प्रोटेक्टेड और गार्डेड रखती हैं। वैसे ही बताऊंगी कि उनके बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय के जरिए शी हैज अ ग्रैंड डॉटर जिनका नाम आप बताएंगे मुझे 9722355555 पे, और फिर मैं आकर बताऊंगी कि इनका रिलेशनशिप कैसा है। राइट, सो हियर इज अ सॉन्ग विद अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन एंड मेनी मोर इन हियर दो। टेल मी द नेम ऑफ जया बच्चन ग्रैंड चाइल्ड, मतलब दादी किसकी है ये बताएंगे मुझे।
2: Yeah! This one's for you, Rahul.
3: Thanks, man.
2: And for you, my lovely.
3: One, two, one, two, three, four.

सवाल था जया बच्चन की ग्रैंड डॉटर का नाम क्या है. वेल, जया बच्चन एक्चुअली हैज थ्री ग्रैंड चिल्ड्रन. टू ऑफ देम आर विथ हर डॉटर, यानी कि श्वेता बच्चन के बच्चे हैं. उनके नाम है अगस्त्य नंदा और नाव्य नवेली नंदा. एंड ऑफकोर्स वी वर टॉकिंग अबाउट देयर सन अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्य राय'स डॉटर. उसका नाम है आराध्या बच्चन. Who is, well, I can't believe it, she is over 14 years old now. And Jaya Bachchan definitely is very guarded. She keeps her family very guarded. And she is a deeply family-oriented matriarch. Aur bahut hi, sambhal ke rakhti hain apni family ko. Aur apni high-profile public life se balance karti hain अपनी फैमिली को. बट दिखाई देती हैं जरूर व्हेन द फैमिली गोज आउट फॉर पब्लिक फंक्शंस. तो आराध्या और आई गेस अभिषेक एंड ऐश्वर्य राय और अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई देती हैं जया बच्चन. एंड आई लुक एट द क्लॉक, इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू लीव द स्टूडियो. आई वॉन्ट टू लीव यू विद द विशेज ऑफ द वेरी बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू. Moms, grandmoms, stepmoms, great-grandmoms, maasi, maa ki tarah moms, and chachis and more. Wishing you all a day filled with lots of love, happiness, and hope it is surrounded by all your loved ones. With that said, le aungi phir ek baar ek anokhi prasuti agle Saturday, theek 8 baje. Tab tak ke liye mujhe, yani ki Sangeeta Bachchani ko dijiye ijazat. Signing off from the studio of Fun Asia Radio, bringing the community together.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
6: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
5: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
6: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
4: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
7: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
8: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
7: कैसे?
8: पेज 3 ईटरी?
7: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
8: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
7: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
9: पेज 3 ईटरी. ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
10: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal, call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897. और विजिट astrologerishwar.com.
4: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर. एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर.
11: द फ्लेवर लाउंज, वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस.
4: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर.
11: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को, एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स, फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल.
12: Planning to buy a perfect home or make a smart investment in India? Now it's easier than ever. Gruh Pravesh, India Property Expo in Frisco. Meet top developers from Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR all under one roof. Explore 200 plus projects and find the right property that fits your plans. 9th and 10th of May, Hyatt Regency Frisco, Dallas, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry and free parking. Biggest India Property Expo by My Square Feet.
13: Yeah! Abhi baja aayega na bhido.
14: Apun bole to full Bollywood dhamaka. Fun Asia pe.
15: Dallas ki dhadkan 104.9 FM. Fun Asia Radio. Fun.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम पर. मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत. वेल, जस्ट चिल में हम करेंगे एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल, आज दूंगी आपका साथ एक घंटे और, यानी कि इंस्टेड ऑफ 10 से 12 मैं दूंगी आपका साथ सुबह 10 से लेके दोपहर के 1 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555. एंड यस, अ बिग शाउट आउट टू संगीता फॉर अ वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 AM. एंड कमिंग बैक टू जस्ट चिल, एवरी सैटरडे होता है हमारा ट्रैवल सेगमेंट, जहां ले चलती हूं आपको दुनिया की एक ऐसी खूबसूरत डेस्टिनेशन पर जहां या तो आप जा चुके हैं या जाने का मन रखते हैं, या मेरी कोशिश होती है कि वो जगह आपकी बकेट लिस्ट में आ जाए. सो वेल, क्योंकि ये मदर्स डे वीकेंड है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपको वो जगह घुमाऊं, रादर वो प्रदेश घुमाऊं, वो स्टेट घुमाऊं जहां से मेरी माँ है. सो मेरी माँ इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो आज हम बातें करेंगे उत्तर प्रदेश की. तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या कुछ मज़ेदार बातें हैं जो जानते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर कॉल करिएगा. द नंबर इज़ 972-235-5555.

Well, that was taken from Ishqiya. That was a मस्त गाना नहीं. दरअसल मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की. तो मैं बताऊँ आपको कि उत्तर प्रदेश में अगर आप लखनऊ ले लें तो यहाँ पे लोग बड़ी तहजीब से बात करते हैं. मतलब जब लड़ाई भी करते हैं ना तो आप करके बात करते हैं. सो दैट्स समथिंग वेरी कूल. एंड सच में जब आप दो लखनवी लोगों को आपस में बात करते देखेंगे ना, तो मन होता है कि उनसे कहें कि यार आप बोलते ही रहें. बड़े ही अदब से बातचीत होती है उनकी.

0: वेल दैट वॉज अ टेकन फ्रॉम द मूवी मासूम. एंड बिल्कुल उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो इट इज़ फेमस फॉर इट्स नवाबी अंदाज, यू नो, स्पेशली लखनऊ, जहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी बिल्कुल दे साउंड पोलाइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये कोई नहीं कहेगा कह रहे हो तुम गलत कह रहे हो, ना, कहेंगे जनाब शायद आपको थोड़ी गलत फहमी हुई है. या फिर वो फेमस फ्रेज पहले आप, पहले आप, वेल दैट बिकेम आइकॉनिक फ्रॉम लखनऊ तहजीब. यू नो, एक फनी एनेक्डोट भी है कि काफ़ी मशहूर थी ये बात कि दो नवाबों ने ट्रेन मिस कर दी इसी बात पर, बिकॉज दे बोथ केप्ट सेइंग पहले आप. सो वेल वी डू हैव अ लिसनर हु इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश. हाई, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हेलो,
0: हाउ आर यू?
1: मेरा नाम, आई एम डूइंग गुड. मेरा नाम सूर्या सौरभ है.
0: ऑलराइट सूर्या, तो आप उत्तर प्रदेश से हैं, राइट?
1: जी, मैं गोरखपुर में पला बढ़ा हूँ.
0: अरे वाह, सो कुछ मजेदार बात बताएं वहां की.
1: हाँ, तो गोरखपुर में कुछ लोग जानते होंगे कि बहुत फेमस गोरक्षनाथ मंदिर है.
0: हाँ,
1: बहुत ही लोग आते हैं वहाँ. मकर संक्रांति इज वेरी पॉपुलर देयर. नेपाल से भी लोग आते हैं.
0: अच्छा,
1: तो बोलते हैं कि योग की शुरुआत नाथ संप्रदाय ने की थी, जिसके पहले गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ.
0: अच्छा,
1: जिन्होंने डायरेक्टली ये सुना था जब शिव जी पार्वती जी को ज्ञान दे रहे थे, तो मत्स्येंद्र नाथ ने इसको सुना था.
0: अच्छा,
1: योग को कोडिफाई पतंजलि ने किया, लेकिन को ह्यूमैनिटी में लाने का काम मत्स्येंद्र नाथ, जो नाथ संप्रदाय है, जिनके जिनके शिष्य गोरक्षनाथ से, उन्होंने किया.
0: अरे वाह.
1: और एक और मजेदार बात यह है कि गोरक्षनाथ, एक और स्टोरी यह है कि महाभारत के समय जब युधिष्ठिर राज सूर्य यज्ञ कर रहे थे, तो पूरे पूरे किंगडम से जो बड़े संत महात्मा थे उनको न्योता दिया गया आने के लिए. तो गोरक्षनाथ को बुलाने के लिए भीम को भेजा गया.
0: अच्छा,
1: जब भीम पहुंचे तो उस समय गोरक्षनाथ जी समाधि में थे, तो उनको बोला गया कि आप थोड़ा रेस्ट करिए.
0: हाँ.
1: जब वो उठेंगे समाधि से तो आपको मिलाया जाएगा.
0: हाँ.
1: तो बोलते हैं कि भीम वहाँ पे एक जगह पे लेट गए.
0: हाँ.
1: और उनके वेट से वहाँ पे जमीन में जमीन धंस गई, वहां से पानी निकल आया. तो गोरक्षनाथ में एक तालाब है.
0: अच्छा.
1: वो मंदिर के अंदर.
0: हाँ.
1: बोलते हैं कि वही वो तालाब है जो भीम जी जहाँ लेटे थे, और उसके बगल में एक लेटी हुई भीम की 10 फुट की मूर्ति है.
0: दिस इज सो इंटरेस्टिंग. ओके, ये मुझे नहीं पता था. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, तो क्या उसको भीम तालाब कहा जाता है या क्या?
1: भीम तालाब तो नहीं कहते, लेकिन भीम जी की मूर्ति है बगल में.
0: अच्छा.
1: तो आई हैव नेवर सीन किसी भी पांडव की मूर्ति किसी मंदिर में. बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग.
0: तो सूर्या, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस एनेक्डोट विद अस, बिकॉज दिस क्लियरली आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ. सो थैंक यू सो मच. इज देयर अ सॉन्ग दैट आई कैन प्ले फॉर यू?
1: यस, यू हैव ऑलरेडी क्यूड अप थैके पान बनारस. तो एक और सॉन्ग जो आप प्ले कर सकती हैं, वो मेरे रूट्स बिहार में है एंड आई बीन लिविंग इन गोरखपुर. सो जो शूल का गाना है, दिल वालों का दिल का करार लूट ले यूपी बिहार लूट ले.
0: अच्छा ठीक है, तो अभी पहले तो मैं भाई पान पर बनारस वाला प्ले करूंगी, लेकिन फॉर श्योर आई विल प्ले द सॉन्ग दैट यू हैव रिक्वेस्टेड वेरी सून.
1: एंड एक और, अगर आप 30 सेकेंड्स, तो ये गाना शिल्पा शेट्टी पे है, राइट? एंड शी इज फ्रॉम कर्नाटका.
0: जी,
1: एंड माई वाइफ इज फ्रॉम कर्नाटका एज वेल. तो हम मजाक करते हैं कि वो भी यूपी बिहार पूरा लूट के ले गए.
0: अच्छा, सही है. ओके, दैट्स सो कूल. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन, एंड आई एम गोना प्ले बोथ द सॉन्ग्स, खई के पान बनारस वाला एंड द यूपी को लूट के ले जाने वाला गाना आल्सो फॉर यू. थैंक यू सो मच सूर्या फॉर ट्यूनिंग इन एंड फॉर शेयरिंग योर इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स विद अस. हैव अ वंडरफुल वीकेंड. टेक केयर, बाय बाय. So yes, the next song that I'm going to play is Khai Ke Paan Banaras Wala, purana wala, apne Amitabh Bachchan wala. Ji haan, kyunki agar hum UP ki baat kar hi rahe na, to jo ye paan culture hai, especially Uttar Pradesh mein, is legendary, especially Banarsi paan, because kehte hain ki it's not just some food item, but it's an emotion, you know, aapko khana padega, tab baat samajh mein aayegi.
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा. आहा, अरे

कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखे

0: मोर सुबाला खुल जाए बंद अकल का ताला।
1: ओ मेम साहब हमरा संग नाचा

0: You turned down that job to become a diving instructor.
1: Yeah, I thought Ma would say no.
0: And?
1: She said, build your life the way you dream it.
2: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 2809 Preston Road, suite number 1200 Frisco. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
3: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
4: Are you soon? Ye एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Chicken banana.
11: चिकन बनाना
12: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट.
13: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
14: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.scodialcpa.com.
15: घर की याद नहीं आई तुझे? जब से
16: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
17: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
16: सच में बिल्कुल घर जैसा.
17: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर. लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट. चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम.
18: भाई, ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता.
19: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स.
18: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
19: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट.
17: May 14th to May 17th, अ 3-day इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रिकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स. रजिस्टर नाउ एट oshouniversal.org. पॉज द नॉइज, मीट yourself.
20: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM.
21: Thank you for tuning in to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ करते हैं हम, as the name suggest, Just Chill. Well, मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के एक बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555. अच्छा दोस्तों, whether you're looking for your first home, ड्रीम इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर प्लानिंग, देन टूडेज कॉन्वर्सेशन कैन रियली हेल्प यू. जी हाँ, लेट्स वेलकम मिस्टर श्रीनिवास वर्मा, हु जॉइंस टू शेयर एक्साइटिंग डिटेल्स अबाउट द अपकमिंग प्रॉपर्टी एक्सपो. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर? यू लाइव ऑन एयर.
22: गुड, थैंक यू. गुड मॉर्निंग एवरीबडी.
21: ऑसम. सो वी वुड लव टू नो मोर अबाउट, व्हाट इज दिस गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो ऑल अबाउट?
22: Gruha Pravesh India Property Expo is all about bringing developers directly from India and exhibiting the properties for the people living in Dallas. Today and tomorrow we have this expo. It has already started, and we are getting people from various parts of places in Dallas. And we have builders coming all the way from Hyderabad, Bangalore, Chennai, Mumbai, Pune. You name the city, we have the builders coming all the way. Big brands like Godrej, Prestige Brigade, Purvankara, Aparna, My Home, Tridasa, all of them are here.
21: Okay.
22: It's a great opportunity and platform where everybody can meet under one roof. That is the idea of Gruha Pravesh.
21: Right. So, Mr. Verma, that's my next question, that, you know, who all should be coming and visiting this expo? Like, why should someone come and visit this expo?
22: Yeah, anybody who is looking for a property or who wants to understand the real Indian real estate, they can visit. Need not be immediate purchase, but they want to learn what is happening. Normally, if somebody is going back to India, if they have to visit one property, it will take full day, one project. We have 200 plus projects which are being displayed here, and all the builders are directly visiting this place. So it's a great opportunity for the people who are living here to come and see, understand about Indian real estate, about plots, villas, apartments, commercial spaces, farmlands, anything you name it, we have under one roof.
21: That's wonderful. So can you share with our listeners the timing and the place, like where exactly do they have to come?
22: It is happening in Hyatt Regency, Frisco, between 10 a.m. to 8 p.m., between today and tomorrow. It's a free entry and free parking event.
21: Awesome. So, well, thank

अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर बात जब कर ही रहे हैं तो आपको बताऊं दैट यू नो उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। अगर उत्तर प्रदेश एक कंट्री होता ना तो शायद दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज में से टॉप लिस्ट में तो पक्का आ जाता है ना। ये मज़े की बात। वेल, ऐसे ही कुछ और अगर आपको इंटरेस्टिंग बातें पता हैं, शेयर करना चाहें तो ज़रूर कॉल करिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश। बहुत से शहर हैं एंड यू नो इट कुड बी एनी थिंग एंड यू नो इट कुड बी अबाउट एनी सिटी इन उत्तर प्रदेश। सो यस, द नंबर टू द स्टूडियो वंस अगेन इज 972-235-5555। दिस इज मधुलिका ब्रिंगिंग यू जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल।

Well, that was taken from बरेली की बर्फी. अच्छा, ग्रोसरी करने का मन कई बार होता है, नहीं होता है. अगर ग्रोसरी करते करते साथ ही साथ कुछ खाने पीने को भी मिल जाए तो बात ही क्या है. नहीं तो आपको मैं बताऊं देसी मंडी के बारे में. जी हाँ, देसी मंडी आपके लिए, के लिए नहीं, देसी मंडी आपके लिए बहुत से अमेजिंग ऑफर्स रखती है. एंड साथ ही साथ, अगर आप मंडे या वेंसडे को जाएंगे तो यू कैन गेट बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस. ट्यूसडे एंड थर्सडे आप ले सकते हैं बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसाज एंड चाट्स. बेसिकली एवरी वीक डेज 5 PM to 9 PM अगर आप जाएंगे तो आप अपनी ग्रोसरी तो कर ही लेंगे, साथ ही साथ कुछ यमी यमी खा भी लेंगे. वेल दो नो मिक्स एंड मैच इज पॉसिबल, सो टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई. बेसिकली मोर फ्लेवर मोर सेविंग्स ऑल वीक लॉन्ग एट देसी मंडी लोकेटेड इन लुइसविल टेक्सास. तो ये भूलिएगा नहीं.

वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी दबंग. अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, राइट? तो आपको बताऊं कि कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का ही प्रोडक्शन है. जी हाँ, कथक कम्स फ्रॉम द वर्ड कथा. कथा बेसिकली मीनिंग स्टोरी. सो ओरिजिनली कथक डांसर्स वर स्टोरी टेलर्स हु नरेटेड टेल्स थ्रू एक्सप्रेशंस एंड मूवमेंट्स. कहा जाता है कि कथक ओरिजिनेटेड मेनली इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली लिंक्ड स्ट्रांगली विद उत्तर प्रदेश, यू नो, एंड द रॉयल कोर्ट्स ऑफ लखनऊ. और ये जो लखनऊ घराना ऑफ कथक जो है इज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर ग्रेसफुल एक्सप्रेशंस, एलिगेंस एंड इमोशनल स्टोरी टेलिंग.

Well, that was taken from Umrao Jaan. Ji haan, main hoon Madhulika, lekar aayi hoon Just Chill, jahan karte hain hum, as the name suggests, Just Chill. Well, aaj hum baat kar rahe hain Uttar Pradesh ki, to kuch fun facts kar rahi hoon aapke saath share. To Uttar Pradesh se hi aata hai ye famous petha. Petha jo hai is from Agra and was reportedly, you know, created for workers who were building the Taj Mahal because it kept them energetic during the heat. सच बात है कि मुझे याद है दादी मेरी कहती थी जब गर्मी में हम स्कूल से लौट के आते थे दोपहर में तो वो पेठा एकदम फ्रिज में ठंडा ठंडा तैयार रखती थी एंड शी वुड से कि अब आ गए हो हाथ मुंह धो और पेठा खा लो. अच्छा मेरा पर्सनल फेवरेट है वो अंगूरी पेठा जो चाशनी में एकदम डूबा हुआ होता है. मतलब सोच के ही मज़ा आ रहा है. सो यस, ये भी उत्तर प्रदेश का ही है एंड दैट्स पेठा. सो अगर आपको पेठा आपने नहीं खाया है तो यू हैव डेफिनेटली मिस्ड समथिंग. Definitely enjoy this pita from Agra.

0: जानकारी के अनुसार दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा डिंपल दीक्षित उर्फी ने बगैर परमिशन आगरा फोर्ट में एक रॉक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसके कारण बहुत सारी भीड़ उमड़ आई है और SPCT आगरा ने उन्हें यहाँ से निकालने का आदेश जारी किया है।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ओनली वन नेम पॉप्स अप, एजी फिनटैक्स। दिस टैक्स सीजन फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग, फाइल स्मार्ट, फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस एंड एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स। साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना, दैट्स आवर कमिटमेंट। तो इस बार डिले क्यों, कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com। ग्रंथी टैक्स प्रोस पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स। प्लान टुडे, प्रॉफिट टुमारो।
4: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8682-346-4611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
5: Astrology readings for guidance only and results may vary.
6: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
7: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
6: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
8: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
10: अपनी roots भी और Texas का swag भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. Royal Sona Masuri Rice हो, नानक पनीर हो या Parle Ji Biscuits, वही देसी taste जो दिल को घर जैसा feel दे. और साथ ही HEB के exclusive Texan favorites जो सिर्फ यही मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
11: प्लानिंग टू बाय अ परफेक्ट होम और मेक अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? नाउ इट्स इजीियर देन एवर. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो इन फ्रिस्को. मीट टॉप डेवलपर्स फ्रॉम हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई and Delhi NCR all under one roof. Explore 200 plus projects and find the right property that fits your plans. 9th and 10th of May, Hyatt Regency Frisco, Dallas, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry and free parking. Biggest India Property Expo by My Square Feet.
12: Abhi baja hai na bhido.
13: Apun bole to full Bollywood dhamaka Fun Asia pe.
14: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.
15: Don't touch that dial. Keep listening.

वेल आपको याद है ना कि आप सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं हूं मधुलिका, लेकर आई हूं जस्ट चिल, जहां कर रहे हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। वेल मैं दूंगी आपका साथ आज दोपहर 12 नहीं बल्कि 1 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555। और यस, आज हम बातें कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ मज़ेदार बातें हैं जो जानते हैं, ज़रूर करें शेयर। द नंबर वंस अगेन इज 9722355555। अच्छा, ये मदर्स डे वीकेंड है, राइट? कल ही मदर्स डे है। सो वेल, दिस मदर्स डे सेलिब्रेट द वुमेन हु इज़ प्योर गोल्ड। एंड हाउ अबाउट विजिटिंग तनिष्क एंड इन्जॉइंग अप टू 20% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस। है ना मज़े की बात? साथ ही साथ गेट 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ एनी ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट, बिकॉज फॉर मॉम ओनली समथिंग टाइमलेस विल डू। नहीं, सो तनिष्क ज्वेलर्स ज़रूर जाएं। दे आर नाउ सेलिब्रेटिंग मदर्स डे विद ऑफर्स मेड फॉर यू फॉर योर मोस्ट प्रेशियस बॉन्ड। सो डेफिनेटली विजिट तनिष्क। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट गोइंग टुवर्ड्स डेडिकेटिंग टुवर्ड्स माय मॉम। आई डू होप यू ऑल विल एंजॉय दिस टू।

0: Well, that was taken from our Rajkumar, Saadi Ke Falsa, Match Kiya Re. Well, aaj hum baat kar rahe hain Uttar Pradesh ki. Aur maine kaha hai ki agar aap Uttar Pradesh se hain, kuch mazedar baatein hain jo jante hain aur karna chahein share, ya apni kuch memories hain jo dobara se taza karna chahein, to hum hain na. 972-235-5555 is the number to the studio. We do have a listener on air with us. Hi, you're live on air.
1: Hi.
0: How are you?
1: I'm good. How are you?
0: I'm doing great. What's your name?
1: Neha.
0: All right, Neha. So, aap Uttar Pradesh se hain?
1: हाँ जी, मतलब मैं उत्तर प्रदेश से नहीं हूँ, मैं हूँ तो मध्य प्रदेश से.
0: अच्छा.
1: लेकिन मेरा ननिहाल उत्तर प्रदेश का था.
0: इंटरेस्टिंग. तो मेरा भी ननिहाल, मेरा मायका सब उत्तर प्रदेश है. ससुराल वैसे तो उत्तर प्रदेश का ही है, लेकिन अब मध्य प्रदेश हो गया है. सो मतलब हम दोनों उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से रिलेटेड.
1: मेरा भी ससुराल मध्य प्रदेश है.
0: अच्छा.
1: बॉर्न एंड ब्रॉटअप मध्य प्रदेश है, बट ननिहाल उत्तर प्रदेश है. तो मेरी तो बहुत सारी जो स्वीट मेमोरीज होती है ना, वो उत्तर प्रदेश की है. तो नानी का घर इज ऑलवेज स्पेशल, राइट?
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो बताइए कुछ ननिहाल की बातें.
1: तो हमारे एक्चुअली मेरी नानी का घर जो है वो आगरा में है. तो आगरा में भी आगरा फोर्ट एक स्टेशन है, तो उसके पास में था.
0: अच्छा.
1: हाँ जी.
0: अच्छा.
1: तो उसके पास में था, तो वहाँ पर है ना, तो हम लोग नाना जी के घर जब भी जाते थे, डेढ़ दो महीने तीन महीने तब, उस टाइम पे हम दो तीन महीने पूरी छुट्टियों के लिए वहीं पे रहते थे. पूरी. हाँ. तो सुबह सुबह नाना जी हमको है ना आगरा फोर्ट ले जाते थे. बहुत वॉकिंग डिस्टेंस था हमारे घर से आगरा फोर्ट, नानी के घर. तो आगरा फोर्ट ले जाते थे और हम लोग वहाँ पर
0: कचौड़ी जलेबी खाते थे.
1: हाँ,
0: कचौड़ी जलेबी खाई वहाँ पे जाके.
1: हाँ हाँ, कचौड़ी जलेबी बेड़ई और
0: दशहरी आम,
1: दशहरी आम, सुराई का पानी, सुराई में पानी.
0: बस मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, पेट में हाथी चूहे सब कूद रहे हैं. एंड वहाँ की जो पेठे हैं वो पंछी पेठा, एंड उसमें भी अंगूरी पेठा, तो मुझे बहुत पसंद था.
1: एग्जैक्टली. पेठा का एक मतलब, हाँ, वहाँ पर पेठा की फैक्ट्री हमारे नानी के घर के बिल्कुल पास है. फैक्ट्री क्या, वो छोटे से घर में ही वो लोग मतलब बनाते थे. तो आई नो द प्रोसेस वो कैसे बनाते हैं.
0: तो प्रोसेस देखी थी उसके बाद खाते.
1: नहीं नहीं, उसकी प्रोसेस ऐसी होती है कि आप खा नहीं सकते लोगे. तो बंटी एंड बबली दोनों,
0: क्या बात है,
1: अभिषेक बच्चन एंड रानी मुखर्जी दोनों मेरे फेवरेट है. और उसकी भी एक स्टोरी आपको बताती हूँ. मैं जब ये दोनों ना न्यू जॉइन मतलब बॉलीवुड में आए थे, तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोनों फेवरेट थे, बट मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत चिढ़ाते थे. बोलते थे एक तो फटा बांस है, उसकी आवाज थोड़ी वैसी है ना रानी मुखर्जी की, तो एक तो फटा बांस है और और एक एक बोलते थे वो तो पता नहीं कुछ भी लगता है, हमको तो नहीं अच्छा. तो मेरे फ्रेंड्स सब चढ़ा. हाँ, तो सब मुझे इतना चाहते हैं. मुझे दोनों इतने फेवरेट है मेरे आज भी.
0: दे आर फैंटास्टिक एक्टर्स एंड आई लव देम बोथ. दैट्स सो ट्रू.
1: एंड दे प्रूव देम सो.
0: Okay, so I'm going to play Banti or Bubbly ka ek gana aapke liye. Thank you so much, Neha, for sharing your fun and lovely memories of Agra. Thank you for tuning in.
1: You made me do that. I really appreciate it. Thank you so much. I mean, main abhi Agra hi pahunch gayi thi thought se to pura.
0: अच्छा, पता है मैं भी, मेरे कजिन्स बहुत सारे, एक्चुअली मेरे कजिन चाचा लोग सब आगरा में रहते थे. तो उनके जब बच्चों की शादियां होती थी, तो हम ऑलमोस्ट हर साल आगरा जाते थे. एंड कभी गर्मियों में शादी होती थी, कभी ठंड में शादी होती थी. सो यस, आई नो कि वहाँ की वो बेढ़ई, कचौड़ी, जलेबी, पेठा, नेम इट, एंड दाल मोट. ओहो, वो कैसे भूल सकते हैं दाल मोट, राइट? सो
1: मैं मेरे हस्बैंड को लेके गई लास्ट ईयर. मैन आई विजिटेड इंडिया, तो मैंने कहा आप कहीं नहीं चलो, बट वहाँ पर एक मंदिर भी बहुत फेमस है, बहुत पास में हमारे नाना के घर के.
0: अच्छा.
1: मनकामेश्वर मंदिर.
0: हाँ, हाँ, वो भी बहुत की वहाँ सारी आपकी अच्छा पूरी होती है.
1: राइट राइट, बहुत अच्छा मंदिर है. मतलब मेरी बहुत ज्यादा मेमोरीज है आगरा की.
0: wow,
1: तो आई कैन नेवर फॉरगेट.
0: आई नो, आई नो. थैंक यू फॉर कॉलिंग इन. टेक केयर,
1: टेकिंग मी देयर.
0: थैंक यू, हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड.
1: यू टू. थैंक यू.

0: Well, that was taken from the movie Bunty और Bubbly. That's right. आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की. तो अगर हैं आपके पास कुछ सुनहरी यादें, कुछ मज़ेदार बातें जो करना चाहें शेयर, देन द नंबर टू द स्टूडियो इज़ 972-235-5555. एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाय,
0: हाउ आर यू?
1: आई एम गुड.
0: ग्रेट. व्हाट्स योर नेम?
1: माय नेम इज सिद्धार्थ.
0: ऑलराइट सिद्धार्थ.
1: जी, मैं इलाहाबाद से हूँ. uh-huh. प्रयागराज जिसको बोलते हैं अभी.
0: जी. मेरी मम्मी और... जो है शी वाज बोर्न इन इलाहाबाद, तो मैं इलाहाबाद से अच्छी तरह वाकिफ हूँ.
1: वाह.
0: यस.
1: हाँ, मैं भी बोर्न एंड ब्रॉट अप वहीं का हूँ.
0: ओह वाओ, ओके.
1: और आपने कानपुर की बात की थी कि वो इट्स
0: मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट.
1: इलाहाबाद को बहुत कम लोग जानते हैं, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, बट It's known as Oxford of the East.
0: That is so true. Yes, Allahabad University बहुत ही मानी हुई university है.
1: जी, और एक interesting बात बताऊंगा आपको. So Allahabad में चार school हैं ICSE board के, जिसमें two only boys हैं और two only girls हैं.
0: Oh wow.
1: और एक जो school है उसका नाम है boys high school. It was established in 1861.
0: Wow.
1: और boys high school की खास बात ये कि अमिताभ बच्चन वहाँ से पढ़े हुए हैं class 5 तक.
0: क्या
1: उसके बाद वो शेरवुड गए थे.
0: अच्छा अच्छा, okay.
1: जी, और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा आपको कि अमिताभ बच्चन जी के जो पेरेंट्स थे,
0: जी,
1: उनकी कोर्ट मैरिज हुई थी. और कोर्ट मैरिज वो मेरे नाना जी ने कराई थी.
0: अरे वाह. तो पंडित जी आपके नाना जी थे हैं?
1: नहीं, वो लॉयर
0: थे. आई नो, जस्ट जोकिंग. या ओके, तो मतलब शादी कराई तो पंडित जी हुए ना.
1: एग्जैक्टली. अगर मैं कभी उनसे मिला तो मैं उनको एक बात बताऊंगा कि भाई आप मेरे स्कूल में पढ़े थे और मेरे नाना जी ने आपकी शादी कराई थी आपके पेरेंट्स की.
0: राइट. ऑसम सिद्धार्थ. सो इज देयर अ सॉन्ग दैट आई कैन प्ले फॉर यू?
1: Yeah, if you can play Dil Ko Tumse Pyar Hua from Rehna Hai Tere Dil.
0: Kya baat hai. Well, sure, I will play that song for you. Thank you so much for sharing these fun and interesting anecdotes about Uttar Pradesh.
1: Thank you. For pleasure is all mine. Thank you.
0: Bye-bye.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com। देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
2: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day, flavor play.
9: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
10: हसीना जुल्फों वाले जाने जहां।
11: जुल्फें सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस। मेंशन फनएशिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस। Call Amreen at 214-909-6601.
9: Or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
11: Amreen Salon, style that moves with you.
12: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
13: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: Well, सुन रहे हैं आप 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. This is Madhulika. लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, Just Chill. Well, आज के हमारे travel segment में हम बातें कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की. तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ मज़ेदार यादें हैं, बातें हैं जो करना चाहें शेयर, इन द स्टूडियो नंबर इज 972-235-5555. मैं दूंगी आपका साथ आज दोपहर एक बजे तक. सो वी डू हैव अ लिस्नर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Hello.
0: How are you?
2: What's the matter?

0: listener on air with us. Hi, you're live on air.
1: Hello.
0: How are you?
1: I'm good. How are you?
0: I'm doing great, sir. So what's your name?
1: Name is Ashok Pandey. And actually, I'm telling my name first time in Fun Asia. Most of the time, I'm talking to Navneeta ji.
0: Achha.
1: And I always think pehle wala bol raha hu.
0: Achha. Okay, so Ashok ji, are you from Uttar Pradesh?
1: Ji.
0: So, kahan se hai aap?
1: So, Uttar Pradesh mein, I don't know, maybe you heard about Raebareli.
0: Absolutely,
1: know,
0: of course.
1: राइट सो मेरी कुछ यादें वहीं से हैं बचपन से जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सुनाई हैं.
0: जी जी बताइए.
1: तो वहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर है जिसका नाम है चंद्रिका देवी जी का मंदिर.
0: अच्छा.
1: सो इट्स लाइक हमारे सारे यू नो मुंडन छेदन सब वहीं से होते थे.
0: अच्छा. हाँ, वैसे भी कहते हैं कि मुंडन जो है मुंडन करने के दौरान देवी के मंदिर में अगर हो तो इट्स रियली ऑस्पिशियस.
1: राइट. सो वहाँ से जो बहुत अच्छी याद है या बहुत अच्छी मेमोरीज हैं अभी भी, वहाँ पे एक राजा जी रहते थे. उनका नाम राजा राव रामबख्श सिंह.
0: अच्छा.
1: एंड ही वाज अ फेमस फ्रीडम फाइटर. हालांकि आई मीन आई नेवर रीड हिम अबाउट बुक्स. जो भी है वो मैंने अपने मतलब मम्मी या ग्रैंड पेरेंट्स उन्हीं से स्टोरीज सुनी है.
0: अच्छा.
1: उनके उनका जो राजमहल था वहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले यूपी गवर्नमेंट वाज सर्चिंग फॉर ट्रेजर. राइट. सो उन्होंने बहुत बड़ा वो किया था लेकिन कुछ मिला नहीं. लेकिन हमने जो स्टोरी सुनी थी कि वहाँ पे बहुत सारा खजाना है एंड यू नो रात में अगर जाओ तो आप आवाजें सुनाई देती हैं कि कैसे.
0: अच्छा.
1: यू नो उस महल के अंदर एक कुआं. राइट. कुआं है जहाँ पे ये सब खजाना जाता रहता है.
0: अरे बाप रे.
1: यू नो बाई बाइट्स. तो मुझे तो लग रहा है एक भूल भुलैया वहाँ पे भी बन सकती है. अगर
0: लोग गिरते थे क्या कुएं से खजाना निकालते हुए बाल्टी भर भर के?
1: नहीं, हमने क्या सुना था कि अगर किसी ने ट्राई किया तो वो पागल हो जाता था. राइट. तो वो एक फेमस वो नहीं है कि अगर इतना सारा सोना किसी को मिल गया तो अपने आप पागल हो जाएगा.
0: ये बात सही है.
1: तो हमने कभी ट्राई नहीं किया.
0: अच्छा.
1: लेकिन हाँ.
0: So thank you Ashok for sharing this interesting anecdote with us and thank you so much for tuning in.
1: और एक और चीज है जो हमने सुनी है कि चंकी पांडे भी हमारे गांव के पास से थे. बट आई नेवर रीड इट ऑन विकिपीडिया और एनीवेयर.
0: अच्छा.
1: लेकिन हमने ये सुना था कि यहाँ से एक लड़का भाग के गया और वो हीरो बन गया.
0: अच्छा. दिस इज इंटरेस्टिंग. तो कभी चंकी पांडे से मिले तो आप कहें कि भाई हम आपके पड़ोसी शहर से ही हैं.
1: तो वैसे तो हम भी पांडे हैं लेकिन वो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है.
0: अच्छा.
1: अगर हम कभी मिले तो जरूर
0: कहिएगा.
1: और आप इफ यू कैन प्ले अ सॉन्ग फॉर आई मीन नाउ आई हैव दैट सॉन्ग लाइक झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं.
0: हाँ. अच्छा ठीक है. तो आई विल प्ले दैट सॉन्ग इन सम टाइम फॉर श्योर. ओके.
1: Sure,
0: all right,
1: okay.
0: Thank you so much for tuning in. Thank you.

0: Well, that was Chuti Khai Thi Kasam, taken from Stree 2. Achha, Fun Pizza Kitchen ki taraf se ek giveaway aa gaya hai. Giveaway jo hai, bada hi asaan sa question hai. Aap ready rahiyega. Aapko milega $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. Fun Pizza Kitchen aap jayenge because yahan aapko agar kuch cheesy khana hai with a desi twist, then bilkul mil jayega. So whether you like it bold or beautifully balanced, there's a slice waiting for you at Fun Pizza Kitchen. क्योंकि आप पिज़्ज़ा में अपने हिसाब से उसको देसी ट्विस्ट दे सकते हैं. सो फॉर मोर डिटेल्स विजिट funpizzakitchen.com. एंड अब आता है मेरा सवाल. आपको मुझे बताना है कि यूपी के कौन से शहर की साड़ियाँ मशहूर हैं. एंड इस क्विज के दो पार्ट्स हैं. तो पहले तो बताना है कि यूपी के किस शहर की साड़ी जो है बहुत मशहूर है. साथ ही साथ मुझे बताना है कि कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म, विच क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज वेरी फेमस. वाओ, एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑलरेडी विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाय, हाउ आर यू? सो आई
0: वांटेड टू
1: टॉक. गुड, गुड, हाउ आर यू?
0: आई एम डूइंग ग्रेट. व्हाट्स योर नेम?
1: माय नेम इज पारुल.
0: ऑलराइट पारुल, तो बताइए कि कौन सा वो शहर है जहाँ की साड़ी बहुत मशहूर है एंड कौन सा वो क्लासिकल डांस फॉर्म है जो यूपी का कनेक्शन माना जाता है.
1: तो साड़ी के लिए आई थिंक बनारस इज द सिटी जहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस है.
0: सही, या
1: और डांस फॉर्म इज कथक.
0: ऑसम, ऑसम, वेरी गुड, वेरी वेल प्लेड पारुल. क्या आप उत्तर प्रदेश से हैं?
1: मैं उत्तर प्रदेश से नहीं हूँ, बट मेरा कनेक्शन यूपी से और स्पेसिफिकली बनारस से है.
0: अरे वाह.
1: क्योंकि मैं 3 साल वहाँ पढ़ने गई थी.
0: ओ वाओ.
1: और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी.
0: एंड एज अ स्टूडेंट आई फील जहाँ आप रहते हैं ना, वो जगह आप अच्छे से छान लेते हैं. नहीं,
1: बिल्कुल. और वो बिल्कुल पहली बार घर से दूर रहने वाला एक्सपीरियंस
0: था. राइट, राइट, राइट.
1: प्लस वो यूनिवर्सिटी, दैट्स क्लासिक इन इटसेल्फ.
0: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. एंड जो खाने पीने के मजे हैं वो तो अलग ही हैं.
1: बिल्कुल. वहाँ का खाना, वहाँ की स्पेशलिटी, वहाँ के घाट, वहाँ के मंदिर, द फेमस विश्वनाथ.
0: आई रिमेम्बर, हाँ हाँ, विश्वनाथ, राइट. एंड देन खाने पीने, मतलब मैं तो वापस खाने पीने पे ही आ रही हूँ कि वो जो चाट मिलती है ना, वो दोनों में, आहा हा हा, क्या बात है. वो गरम गरम टिक्की जो बना के,
1: चाट.
0: आपके वो जो 3-4 सालों का जो स्टे था, उसमें सबसे फेवरेट फूड आपका क्या था? लाइक गो टू फूड की यार ये खाने का मन कर रहा है.
1: गो टू फूड, एक वहाँ की ना बहुत स्पेशल मिठाई होती है. एक तो वो, और एक हमारे कैंपस के पास में ना मलाई वाली लस्सी मिलती
0: है. हाय हाय हाय, मतलब बस ये लंच टाइम हो रहा है, आप बस मुझे भूख लगाए हैं. सो अच्छा, ये मिठाई, कमिंग बैक टू मिठाई, कौन सी मिठाई थी ये?
1: उसको लौंग लता बोलते थे.
0: अच्छा,
1: काइंड ऑफ बहुत यूनिक वही की थी वो मिठाई. मैंने उसके बाद दिल्ली, मैं तो दिल्ली से हूँ, मैंने पूरी दिल्ली में ढूंढी, वो नहीं मिलती है मिठाई.
0: लौंग होती थी
1: उसमें ना, लाइक फ्राइड डो को फ्राई करके और उसमें लौंग से उसको बंद करके.
0: अच्छा.
1: फिर उसको चाशनी में डुबो के.
0: सो नॉट वो जो एक बालूशाही होती है, वो नहीं,
1: नहीं उसी, उसकी तरह थी, बट इट वाज
0: चंद्रकला. चंद्रकला, इज इट चंद्रकला? नहीं,
1: नहीं.
0: बट चलिए, अब हम भी बनारस जाएंगे तो हम ये वाली मिठाई जरूर खाएंगे, लौंग लता. वाह वाह, क्या बात है. सो पारुल, ऑसम. Is there a song that I can play for you? Because you have played so well, you have talked about Uttar Pradesh, aur ab main aapko iske alawa kya de sakte ho? So I can play a song for you. So tell me, which song you want to listen to?
1: So Banaras se related ek song hai, Tu Banja Gali Banaras ki. Can you play that?
0: For sure, for sure. Thank you so much, Parul. I'll take you off air and take some details. While I'm going to play this Shaadi Mein Zaroor Aana Ka, Tu Banja Gali Banaras ki, all right?
1: Awesome, thank you.
0: All right, hold on.

0: Well, that was taken from the movie Meri Shaadi Mein Zaroor Aana, right? And that was a request from Parul. We do have a listener on air with us. Hi, you're live on air.
1: Hi, this is Anshul.
0: Hey, Anshul, how are you?
1: I'm very good, and thanks for making such a nice Saturday morning for us.
0: Thank you so much. You made my day. So, aap Uttar Pradesh se hain ya kuch mazedar baatein hain jo karna chahenge share?
1: मैं राजस्थान से हूँ बट आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम यूपी.
0: ओके ओके.
1: तो आपने पूछा था वो साड़ी का, तो साड़ी तो इट्स ऑब्वियस बनारसी साड़ी.
0: एब्सोल्युटली यस.
1: पर जो डांस है ना वो माय वाइफ एंड माय डॉटर बोथ आर क्लासिकल डांस एंथुसियास्ट. तो कथक इज ट्रेडिशनली द मोर फेमस सॉन्ग और द डांस फॉर्म.
0: यस.
1: बट लेटली अभी जब से वो पंचायत का थर्ड सीजन आया है तब से वो जो राजा जी वाला गाना है ना इलेक्शन के बाद जो डांस किया है, दैट हैज बिकम द मोस्ट फेमस डांस फॉर्म.
0: एब्सोल्युटली ऑसम अंशुल. सो यू नो व्हाट, आई एम गोना प्ले दैट हिंद का सितारा फ्रॉम पंचायत सीजन 3 एंड दैट वाज सो फन. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन.
1: थैंक यू.
0: थैंक यू.
2: कहाँ गुंडे चल रहा है
3: अभी? गुंडे चालू कहाँ किए हैं?
2: तोड़ो तोड़ो.

वेल, अगर दो दिलों को मिलना ही है और चुपके चुपके मिलना है या ब्रेकिंग न्यूज बना के मिलना है, देन यू नीड टू गेट गो टू पेज 3 ईटरी. जी हाँ, जहाँ पर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर. चाहे हो कबाब या चाट या कोई फ्यूजन बाइट, यू नो, या फ्रैंकी खाना है या कुछ देसी खाना है, साथ ही साथ मॉकटेल्स भी हैं वहाँ. वाइब्रेंट वाइब्स फॉर ब्रंच, लंच और डिनर, मतलब कुछ भी खाना है, किसी भी टाइम जाना है, देन आपको याद रखना है पेज 3 ईटरी. यू नो, यू कैन विजिट page3eatery.com फॉर फर्दर डिटेल्स.

That was taken from the movie Badri Ki Dulhania. Hi, this is Madhulika. Sun rahe aap 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. Main lekar aayi hoon Just Chill, jahan karte hain hum, as the name suggests, Just Chill. The Saturday hota hai hamara travel segment, aur aaj main le chali hoon aapko Uttar Pradesh. So, agar Uttar Pradesh ki ek aur mazedar baat bataun, तो यू नो DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काउबेल बड़ी फेमस हुई थी एंड काउबेल सुनते ही हमें स्विट्जरलैंड याद आता है. लेकिन अगला फन फैक्ट सुनेंगे आप तो आपको अगली बार से उत्तर प्रदेश याद आएगा, जालेसर याद आएगा. ये एटा डिस्ट्रिक्ट में है जालेसर और इज़ नोन फॉर मेकिंग दीज काउबेल्स. बेसिकली एटा उत्तर प्रदेश जो है इज़ नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल हैंड क्राफ्टेड काउबेल्स ऑफन कॉल्ड घंटीज विच आर मेड विदाउट मॉडर्न मशीन्स इन मैनी वर्कशॉप्स. मज़े की बात यह है दैट दीज बेल्स आर नॉट जस्ट फॉर काउज या कैटल. बहुत से लोग दे यूज देम नाउ फॉर होम डेकोर, कैफेज, गार्डन्स एंड इवन म्यूजिक सेटअप्स बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल रस्टिक साउंड. ये जो साउंड है ऑफ एवरी बेल इज स्लाइटली डिफरेंट. यू नो स्किल्ड आर्टिजन्स होते हैं, दे केयरफुली शेप एंड ट्यून देम बाय हैंड टू क्रिएट यूनिक टोन्स. मजे की बात ये है दैट इन विलेजेस पीपल कुड ऑफन आइडेंटिफाई हुज कैटल वाज दिस यू नो जस्ट बाय रिकॉग्नाइजिंग द साउंड ऑफ द बेल. अच्छा ये भी है कि पहले ज़माने में पहले ये माना जाता था दैट यू नो बेल्स वर कंसिडर्ड सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन रूरल इंडिया बिकॉज ओनिंग कैटल मेंट वेल्थ एंड स्टेबिलिटी. सो द रिदमिक साउंड ऑफ काउबेल्स इन विलेजेस वाज वंस लाइक अ नेचुरल बैकग्राउंड साउंड ट्रैक ऑफ रूरल लाइफ. एंड येस याद रखिएगा अगली बार स्विट्जरलैंड नहीं, आपको जालेसर या एटा डिस्ट्रिक्ट का ये जो जालेसर है वो याद आना चाहिए व्हेन यू सी अ काउबेल.

ऑलराइट, जस्ट चिल में हम करते हैं आपके साथ कुछ मज़ेदार फन और इंटरेस्टिंग बातें शेयर। तो जैसे आज हम उत्तर प्रदेश के ऊपर शो कर रहे हैं, तो आपको बताऊं एक माइथोलॉजिकल फन फैक्ट। यू नो, कृष्ण भगवान जो हैं, ही ब्रॉट द डिवाइन पारिजात ट्री फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से अर्थ पर लेकर आए थे वो अपनी वाइफ सत्यभामा के लिए। एक और मज़े की बात ये है दैट ये जो फेमस पारिजात ट्री है इज़ बिलीव टू एग्जिस्ट इन बाराबंकी नियर अ प्लेस कॉल्ड किंटूर विलेज। ये भी माना जाता है दैट ये जो पेड़ है ये आसानी से इट कैन नॉट बी प्लांटेड नॉर्मली एंड हैज़ हेवनली ऑरिजिन्स कनेक्टेड डायरेक्टली टू कृष्ण भगवान। एक और बात ये भी है कि ये जो पारिजात ट्री है ना, इट ब्लूम्स एट नाइट एंड जो फूल होते हैं दे फॉल टू द ग्राउंड बाय मॉर्निंग। इसीलिए कुछ लोग इसको द ट्री ऑफ सोरो या नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन भी कहते हैं। माइथोलॉजी की अगर बात करें तो उसके हिसाब से सत्यभामा जो हैं, शी वांटेड द हेवनली ट्री फॉर हरसेल्फ, लेकिन कृष्ण जी बीइंग कृष्ण जी क्लेवरली प्लांटेड इट इन सच अ वे कि जब वो फूल खिलते थे तो दे वुड फॉल इनटू रुक्मिणीज कोर्टयार्ड टू। सो आज भी, इवन टुडे, मेनी डिवोटीज विजिट दिस पारिजात ट्री साइट इन उत्तर प्रदेश बिलीविंग दैट इट हैज़ डिवाइन स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। थी ना ये मज़ेदार और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी एक बात रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। सो वैसे ही कुछ और फन फैक्ट्स के लिए डू कीप ट्यूनिंग इन टू जस्ट चिल एवरी सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग 10 AM टू नून होता है मेरा और आपका साथ।

Taken from the movie Lagan, that was Radha Kaise Na Jale. भाई जलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्यों जलो किसी से भी. एंड कई बार होता है कि कुछ लोग अपना जो पोर्टफोलियो है अच्छे से मैनेज कर लेते हैं अपने आप ही, कुछ लोग भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते. तो अगर आपको कुछ फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए, देन माई टाइम इक्विटी लेड बाई CPA सुधीर पाए ऑफर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. यू नो रियल इस्टेट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी मैनेज करते हैं. सो यू कैन विजिट mytimeequity.com और यू कैन कॉल देम. द नंबर इज 4697021272.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, but sometimes even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
4: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर। एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर।
6: द फ्लेवर लाउंज, वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस।
2: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर।
6: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल।
7: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
8: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
9: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
8: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
9: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
10: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
11: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
10: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
12: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, FunAsia Radio.
13: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun

Well, that was the title track, Omkara. You're listening to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. This is Madhulika. Lekar aayi hoon just till dungi aapka saath dopahar ke 1 baje tak, covering in for Neelam till 1 p.m. Studio ka number 972-235-5555. As aagaya hai aapke liye ek giveaway from Fun Pizza Kitchen. So whether ab lunch time to ho hi gaya hai, if you are craving something cheesy with a desi twist, then you need to head to Fun Pizza Kitchen where flavor meets fire. Aapko jo bhi usme twist dalna hai pizza mein, wo aap kar sakte hain, because whether you like it bold or beautifully balanced, there's a slice waiting for you at Fun Pizza Kitchen. For more details, visit funpizzakitchen.com. Aur ab aata hai aapke liye sawal, kyunki aaj hum just chill mein Uttar Pradesh ki baat kar rahe hain. तो इस सवाल के दो पार्ट्स हैं, यानी कि दोनों क्वेश्चंस पहले ध्यान से सुन लें. आपको मुझे बताना है उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, एंड साथ ही साथ ये तो पता है कि ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, आपको मुझे ये बताना है कि ताजमहल के पास कौन सा रिवर है, विच रिवर इज क्लोज टू ताजमहल. तो इन दोनों क्वेश्चंस का दीजिए जवाब और यू कैन विन $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज़्ज़ा किचन. एंड यस, उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ तो आज पहले तो बताऊँ कि मैंने उत्तर प्रदेश क्यों चुना. क्योंकि ये मदर्स डे वीकेंड है और मेरा मायका जो है, आई वुड कंसिडर, वैसे तो मैं दिल्ली की हूँ लेकिन मेरे मॉम एंड डैड दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, राइट. डैड वॉज फ्रॉम इटावा, मॉम इज़ फ्रॉम अलाहाबाद एंड फिरोज़ाबाद, राइट. सो फिरोज़ाबाद की अगर बात करें तो वहाँ की जो ग्लास का काम बहुत फेमस है, तो ऑफकोर्स ग्लासेस, वाजेस, ये सब तो बहुत अच्छे मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ की चूड़ियाँ बहुत मशहूर हैं. द बैंगल्स, ओ माई गॉड, वो जो कलरफुल बैंगल्स, उसमें यू नो वो क्या कहते हैं, नख लगे रहते हैं एंड वो एकदम चमकती चमकती तरह तरह की रंग बिरंगी चूड़ियाँ जो हैं, दे आर वेरी फेमस फ्रॉम फिरोज़ाबाद. मुझे याद है कि किसी की भी घर में शादी होती थी तो चूड़ियाँ जो थी वो हमेशा फिरोज़ाबाद से ही आती थी.

0: वेल, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी चांदनी. मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ हैं. जी हाँ, चूड़ियाँ फिरोजाबाद की बहुत मशहूर हैं. और आज हम बात उत्तर प्रदेश की ही कर रहे हैं. फन पिज़्ज़ा किचन का ये गिव अवे क्वेश्चन था कि आपको मुझे कॉल करके यूपी की कैपिटल बतानी है और साथ ही साथ बताना है कि ताजमहल के पास जो एक रिवर बहता है या बहती है, एक्चुअली नदी तो बहती है, राइट, तो वो कौन सी है. सो वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Hey, hi, this is Juhi.
0: हे जूही, हाउ आर यू.
1: I'm good. How are you?
0: आई एम डूइंग ग्रेट. तो बताइए कौन से, ये जो मैंने दो सवाल पूछे थे इनके जवाब क्या है.
1: हाँ, तो कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश है आपका लखनऊ.
0: बिल्कुल सही,
1: लखनऊ इज फेमस फॉर इट्स सिटी ऑफ नवाब एंड इट्स फेमस फॉर इट्स फूड, लाइक नवाबी
0: एब्सोल्युटली.
1: फूड. एंड ये आगरा, लाइक आगरा इज सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर यमुना.
0: ऑसम जूही, क्या बात है. बिल्कुल दोनों जवाब जो आपने दिए हैं बिल्कुल सही दिए हैं. सो फन पिज़्ज़ा किचन का ये गिव अवे विच इज़ अ $10 गिफ्ट कार्ड होता है आपका. अब आप मुझे बताएं,
1: थैंक
0: आप
1: यू
0: क्या
1: सो
0: उत्तर प्रदेश से हैं.
1: मच. नहीं, मैं नेबर स्टेट से हूँ, झारखंड से हूँ मैं.
0: क्या बात है. अच्छा, तो कभी गए हैं उत्तर प्रदेश.
1: हाँ, बहुत बार, लाइक
0: तो
1: हाँ,
0: कुछ यादें शेयर करें
1: अलाहाबाद.
0: ना.
1: एक्चुअली मतलब मैं अलाहाबाद गई थी मेरे SSB इंटरव्यू के लिए, अलाहाबाद
0: अच्छा
1: में. हाँ, तो ये CDS क्लियर
0: हाँ
1: करके
0: हाँ
1: SSB होता है,
0: अच्छा
1: तो उसके लिए मैं गई थी वहाँ पे. इलाहाबाद कैंट में हुआ था मेरा वो
0: तो वहाँ
1: इंटरव्यू.
0: चाट
1: और
0: पकोड़े
1: मेरे,
0: खाए कि नहीं.
1: हाँ, वहाँ था. फिर बनारस में वी ऑल नो इट्स फेमस फॉर आवर बाबा विश्वनाथ.
0: हाँ,
1: सो हाँ, तो वहाँ पे भी गई हुई हूँ. फिर
0: बनारसी पान
1: कानपुर
0: खाया.
1: से, हाँ, मतलब वो फूड का तो आप बात ही नहीं कीजिए,
0: राइट राइट
1: मतलब.
0: ओके.
1: हाँ, और फिर कानपुर से मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो
0: अच्छा,
1: कानपुर वो वाला
0: कानपुर का
1: एरिया,
0: आपको पता है ना,
1: इटावा.
0: कॉटन बहुत मशहूर है. और आपने इटावा का नाम
1: हाँ,
0: लिया
1: और
0: कि माय
1: लेदर
0: डैड
1: पे.
0: इज फ्रॉम
1: हाँ,
0: इटावा.
1: या आई हर्ड यू ओवर द
0: या
1: रेडियो.
0: राइट,
1: हाँ, तो वो हर जगह का लहजा आपका चेंज हो
0: अलग
1: जाता
0: होता
1: है,
0: है.
1: लाइक.
0: यस
1: हाँ,
0: यस
1: जैसे अलाहाबाद इज वेरी लाइक, ये आपका पूर्वांचल एरिया इज वेरी सिमिलर टू बिहार झारखंड फूड
0: राइट.
1: कल्चर वगैरह.
0: या
1: फिर हाँ, इटावा का अलग ऐसे आपके बात करने का तरीका है.
0: तरीका अलग
1: फिर
0: होता है.
1: आगरा से भी फ्रेंड्स हैं हमारे यहाँ पे
0: जी जी
1: काफी.
0: जी सो
1: हाँ,
0: ऑसम ऑसम जूही. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, फॉर पार्टिसिपेटिंग. आपने जीत लिया फन पिज़्ज़ा किचन का ये गिव अवे. इज देयर अ सॉन्ग दैट आई कैन प्ले फॉर यू.
1: कैन यू प्ले मी द सॉन्ग ऑफ ब्रदर, माई ब्रदर की दुल्हन? ढोल
0: अच्छा,
1: नहीं सुना तो
0: यूपी
1: किया
0: आए
1: क्या?
0: और ढोल नहीं सुना तो क्या सुना, राइट.
1: हाँ,
0: ठीक है, तो वो है मधुबाला सॉन्ग. सो आई एम गोइंग टू प्ले दैट नेक्स्ट. थैंक यू सो मच वंस अगेन. आई विल टेक यू ऑफ एयर एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू.
1: ओके, श्योर,
0: ऑल
1: थैंक
0: राइट,
1: यू.
0: होल्ड ऑन.

All right, well, that was taken from मेरे ब्रदर की दुल्हन. एंड यस, आज हम बातें कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की. वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर. कैन यू हियर मी? वेल, लुक्स लाइक द कॉल ड्रॉप्ड आउट. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. सो यस, द नेक्स्ट सॉन्ग, वेल, घाघरा हैज बीन रिक्वेस्टेड. ऑफ कोर्स, आगरा की बात जो है इस घाघरे में, राइट? आई मीन, ये जो मूवी है, ये जवानी है दीवानी, माधुरी दीक्षित, रणबीर कपूर का गाना. एंड यस, इट्स टॉकिंग अबाउट आगरा.

अच्छा चलिए, उत्तर प्रदेश की अब बात कर ही रहे हैं तो ये तो मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का हर शहर जो है अपनी एक अलग पर्सनालिटी लेकर आता है, राइट? अयोध्या की बात करें तो भाई, वेयर माइथोलॉजी फील्स अलाइव, यू नो, हर गली में डिवोशन और हिस्ट्री की कहानी है। इटावा में आप लायन सफारी कर सकते हैं, यू नो, एंड अलीगढ़ जाएँ तो वहाँ के ताले बड़े मशहूर हैं। मेरठ जाएं तो यू नो, क्रिकेट के बैट से लेकर हिस्ट्री तक मेरठ का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड ऑफ कोर्स नोएडा इज़ आल्सो इन उत्तर प्रदेश, तो यूपी का मॉडर्न टेक सुपरस्टार माना जाता है। बात करें अगर प्रयागराज की, जहाँ तीन रिवर्स का संगम है, यू नो, स्पिरिचुअलिटी का मेगा कनेक्शन प्रयागराज। कानपुर की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि लेदर और कॉटन फैक्ट्री बहुत ही मशहूर है, लेदर इन कानपुर, कॉटन कानपुर का। या बात करें वृंदावन की तो यू नो, वृंदावन में भक्ति भी म्यूजिकल लगती है, या हर गली में राधे राधे आपको सुनाई देता है। मथुरा की बात करें तो ऑफ कोर्स कृष्ण जन्मभूमि है यहाँ। आगरा की बात करें तो यू नो, लव का जो एक सिंबल है आगरा, ताजमहल, यू नो, ताजमहल की जो सिटी है, यहाँ हर टूरिस्ट एक फोटोग्राफर बन जाता है। एंड और क्या बताऊँ आपको मैं, लखनऊ की अगर बात करें तो यू नो, यहाँ कबाब भी फेमस हैं और इनकी बातें भी, चाहे लखनऊ में यू नो, लोग लड़ते भी हों तो बिल्कुल तहजीब के साथ लड़ते हैं। पहले आप वाला जो कल्चर है उसका असली हेडक्वार्टर तो लखनऊ ही है। सो यस, एंड बट हाँ, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस, वन ऑफ द फेमस सिटीज़ डेफिनेटली इज़ आगरा।

ले आई हूँ आपके लिए फिर एक बार म्यूजिक मंत्र दोस्तों, जिसमें मैं हूँ आपके संग संगीता, आप और आपका और मेरा साथ रहेगा दोपहर के 3 बजे तक, और हमेशा की तरह हमारे साथ रहेंगे मीठे तराने और खूबसूरत संगीत. वेल आई गॉट दिस कपल ऑफ आवर्स दिस आफ्टरनून टू बी विथ यू, सोचा कि ले आएंगे आपके लिए फिर एक बार कुछ और एक अनोखी प्रस्तुति में गाने और बातें करेंगे कुछ डायरेक्शन और डेस्टिनेशन के बारे में. डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, तो चलिए आप मुझे बताएं कि डायरेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं. 9722355555 इज अ नंबर टू द स्टूडियो.

बहुत ही प्यारा गाना था वो, और आप समझ ही गए होंगे कि आज का ये कार्यक्रम किस पर आधारित है. वेल, आई हैव सम सॉन्ग्स बिल्ट अराउंड डायरेक्शन, प्लेस, डिस्टेंस, प्रेजेंस, प्रॉक्सिमिटी एंड सम दैट आंसर द क्वेश्चन वेयर. तो वेयर यानी कि कहाँ, तो इन पर आधारित गाने हैं. कुछ रोमांटिक, कुछ मस्ती वाले, कुछ फिलोसफिकल, फैंटास्टिक सॉन्ग्स. तो मैंने आपको पूछा था, आपसे पूछा था कि डायरेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं. तो सही जवाब मिले हैं मुझे, उसके लिए शुक्रिया. कहते हैं दिशा या मार्गदर्शन. एंड इफ लाइटली यूज एंड द वर्ड्स ओर एंड तरफ कुड ऑल्सो बी यूज टू डिनोट डायरेक्शन. Well, some of these are romantic songs and direct proximity and direct locations are also included in these songs. Koi gaane aapke zehen mein aa rahe hain that answer the question where, to batayega and I'll try really hard to bring it to you. Number to the studio is 972-235-5555. Sitting in for Neelam for these 2 hours, lekar aayi hoon for these 2 hours apna show called Music Mantra. जिसमें हूँ आपके संग संगीता.

इधर भी तुम उधर भी तुम, रातों में तुम रास्तों में तुम, मंजिलों में तुम, शायद इसी का नाम मोहब्बत है।

0: आपके सुहाने सफर का साथी फन एशिया रेडियो।
1: Taking this minute to talk to you about My Time Equity. Friends, My Time Equity, led by CPA Sudhir Pai, they offer portfolio management, real estate and alternative investments. So if you need guidance on any of these issues or any financial guidance, you are going to contact CPA Sudhir Pai by visiting mytimeequity.com or simply by calling them at 469-702-1272. And now I have a question for you. We're talking about directions. Can you call me and let me know what are the cardinal directions? What are they called? Give us a call at 972-235-5555. Sun rahe aap music mantra, jisme main hoon aapke sang Sangeeta. Aapko mera saath rahega 3 baje tak. Sitting in for Neelam today, and she'll be back next week. Talking about directions and destinations, and answering the question where, all the way till 3.
2: You turned down that job to become a diving instructor?
3: Yeah, I thought Ma would say no.
2: And?
3: She said, build your life the way you dream it.
4: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 2809 Preston Road, suite number 1200 Frisco. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
5: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hai.
6: Abhi sun, ye एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान सादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान सादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
10: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mix veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutter. Rich, bold, no compromises.
11: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
12: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
13: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
14: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqah and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.
1: And a warm welcome back to Music Mantra 206. I am your host, Sangeeta. ले आई हूँ आज की प्रस्तुति में कुछ गाने जो कि बातें करते हैं डायरेक्शन की, डिस्टेंस की, एंड दी सॉन्ग्स दैट आंसर द क्वेश्चन वेयर. विद दैट सेड, आई एम आस्किंग यू टू लेट मी नो इफ यू नो द नेम्स ऑफ द कार्डिनल डायरेक्शंस एट 972-235-5555. लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू ऑल द वे अंटिल 3 PM. Offering invitation to destinations. Destinations, proximity, place, and direction. That is the theme this afternoon.

कभी कभी डायरेक्शन बढ़िया होती है, कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, और कभी उन डायरेक्शन में कुछ गलती हो गई एंड अनफॉर्चुनेटली यू सी योर सेल्फ और यू नो समवन हु इज़ इन्वॉल्व्ड इन अ कार और अ ट्रक एक्सीडेंट और मे बी इट्स सिंपली अ स्लिप और फॉल इंसिडेंट, वेल आपको ज़रूरत है एक अटर्नी की. नाम देते हैं आपको, उनका नाम है अटर्नी उमर ख्वाजा. इन्हें कॉल कीजिएगा, दे विल बी एबल टू हेल्प यू. And they will be able to help you with fighting your case and getting you the compensation that you deserve. Inka number hai 469-300-5046. Ab insurance company ke saath bhi agar koi masla ho gaya, bahut hi stress hota hai in situations mein, aur aapko chahiye wo attorney ka saath. I want to tell you that attorney Omar Khwaja will make sure you are compensated. Aur जब आप इनके साथ होते हैं तो यू वॉन्ट टू ऑल्सो टेल यू दैट यू डोंट हैव टू पे अंटिल यू विन. फॉर ऑल दिस एंड मोर फॉर अ फ्री कंसल्टेशन डेफिनेटली कॉल देम एट 469-300-5046 और विजिट attorneyomar.com. डायरेक्शन टू डेस्टिनेशन.

कौन सी दिशा में जाएं हम जब हर रास्ता तुम्हारी ओर मुड़ता है। ब्यूटिफुल पोइम्स अलोंग द वे एंड दिस ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू। ब्रेकिंग न्यूज नाउ ऑन पेज 3। Well, Dallas has got a new flavor at Hub 121, and that is page 383. Page 3 Eatery, where bold Indian street food meets modern flair. Kebabs, ho ya chaat, ya ho fusion bites, ya mocktails. Vibrant vibes for brunch, lunch or dinner. This is a place that is perfect for foodies, for dates and flavor chasers. Visit page3eatery.com for further information.

कभी हम किसी की तरफ बढ़ते हैं, कभी कोई हमारी ओर आता है और कभी ज़िंदगी हमें उन मंजिलों तक ले जाती है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है. समटाइम्स इट्स लाइक दैट, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल हैव अ डायरेक्शन बट डेस्टिनेशन इज नॉट ऑलवेज व्हाट यू प्लान फॉर. ब्यूटिफुल सॉन्ग हियर, फिल्म का नाम जब हैरी मेट सेजल. कोई गाने सुनना चाह रहे हैं आप, खास तौर पर आज के इस थीम को मद्देनजर रखते हुए? थीम है फ्रॉम डायरेक्शन टू डेस्टिनेशन, ए स्पेसिफिक प्लेस और जस्ट वन दैट यू कैन थिंक ऑफ. एनी ऑफ दोज सॉन्ग्स कैन बी इंक्लूडेड इन द शो टुडे. गिव मी अ कॉल इन द स्टूडियो एट 972-235-5555.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG FinTax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG FinTax's advisory services.
3: Oh, haseena zulfon wale jaane jahan.
4: सिर्फ हवा में नहीं स्टाइल में भी उड़नी चाहिए बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस मेंशन फन एशिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस कॉल अमरीन एट 214-909-6601
5: और विजिट देयर इंस्टाग्राम अमरीन सैलून लोकेटेड एट एलन एंड फ्रिस्को
4: Green Salon. Style that moves with you.
6: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस
7: बिल्कुल लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं
6: सच में एक्सपेंसेस से इनकम कैसे
7: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है
6: वाह मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे
7: एग्जैक्टली अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर
6: नंबर बोल जल्दी
7: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com
8: कनेक्टिंग अमेरिका जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश
9: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids' wear.
10: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
9: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
12: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
13: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
14: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

एंड वेलकम बैक टू म्यूजिक मंत्र दोस्तों, जिसमें मैं हूं आपकी संग संगीता आपका और मेरा साथ रहेगा दोपहर के 3 बजे तक, सिटिंग इन फॉर नीलम दिस आफ्टरनून. वैसे मैं ले आती हूं हर सैटरडे सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक शो कॉल म्यूजिक मंत्र, जिसमें ले आती हूं आपके लिए हर बार एक अनोखी प्रस्तुति. आज भी ले आई थी सुबह को मैं वो कार्यक्रम, फिर एक बार आ गई हूँ दिस आफ्टरनून ऑल द वे टिल 3. और इस समय ले आई हूँ एक कार्यक्रम जिसमें हम बातें कर रहे हैं अबाउट डायरेक्शन, यानी कि दिशा और तरफ, ऐसे वाले गीत. कोई खास तौर पे सुनना चाह रहे हैं तो बताइएगा ज़रूर एट 972-235-5555. तो हम बातें कर रहे थे अबाउट डायरेक्शन. तो देर आर सम सॉन्ग्स दैट डायरेक्टली टॉक अबाउट द लोकेशन. तो वो गाने आगे बढ़कर हैं इस सेगमेंट में. पहले ये कह रही हैं, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो. फिल्म का नाम याद है आपको? चलिए बताएं मुझे 972-235-5555 पे. लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू फॉर यू नो सम सिंपल क्वेश्चंस के जवाब के लिए, आपके लिए, आपके कॉल्स का इंतजार करते हुए. हियर इज वन. उम्मीद कर रही हूँ कि आप ये कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं आज.

0: you.
1: Great track. तो कहते हैं कि when you are headed over to some place, remember that the direction is more important than speed. So focus on moving in the right direction rather than how fast you are moving. And intentions are great, but the daily actions you take are the things that steer your course. We'll talk a little bit more about this after this song, जो कि फिल्माया गया है पिरामिड्स के ऊपर, पिरामिड्स के पास. बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है ये नज़ारा. गाने के बोल तेरी ओर, फिल्म का नाम सिंग इज किंग. अक्षय कुमार अगेन, पिछला गाना था फिल्म तशन का और अब ये वाला है फ्रॉम सिंग इज किंग. आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स बाय अक्षय कुमार व्हेन ही फर्स्ट स्टार्टेड हिज करियर. लेट मी नो इफ यू थिंक डिफरेंटली. फॉर एनी request based on this theme, you can give us a call in the studio. Studio number is 972-235-5555.

0: कुछ और गाने हैं जो ताल्लुक रखते हैं डायरेक्शन से, प्रॉक्सिमिटी से एंड डेस्टिनेशन से. विल ब्रिंग इट इन अ फन मोड आफ्टर द ब्रेक.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
2: Arre yaar, डालस में पंजाब.
5: बिल्कुल, चंडीगढ़ वाले, जहाँ बटर चिकन भी असली और नान भी तंदूर से गर्मा गर्म.
6: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
3: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
3: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
7: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
8: माई टाइम इक्वेरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में. मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली NCR, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से, सब एक ही छत के नीचे. 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए. आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक. एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री. माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो.
12: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
0: And welcome back to the final segment of this afternoon's Music Mantra, jahan rahi hoon main aapke sang Sangeeta, sitting in for Neelam today. And ले आती हूँ वैसे मैं अपना शो हर सैटरडे सुबह 8 से लेकर 10 बजे के दरमियान, और हर बार ले आती हूँ एक अनोखी प्रस्तुति. वेल, अभी भी लाई हूँ एक अनोखी प्रस्तुति, और इस प्रस्तुति में ले आई हूँ कॉन्सेप्ट वेयर द म्यूजिक इज अराउंड डायरेक्शन, प्लेस, डिस्टेंस, प्रॉक्सिमिटी एंड वेयर. वेयर यानी कि WHERE, यानी कि कहाँ. तो सवाल अगर हो कहां, तो जवाब में है ये गाने. एंड सम फन ट्रैक्स ऑन दिस फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस आफ्टरनून्स म्यूजिक मंत्रा. पहचानिए इस गाने को और मुझे बताएं कि गाना किस फिल्म से है, ठीक है? 972-235-5555 पे करती हूँ इंतजार आपकी टेलीफोन कॉल्स का.

सभी जानते हैं ये गाना लिया है फिल्म कालिया से, अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म ऑफ द 80s. एंड टॉकिंग अबाउट ब्लॉकबस्टर, वेल एक्साइटिंग स्टफ कमिंग अप फ्रॉम रवि इंपोर्ट्स. वांट टू टेल यू दिस इज फॉर स्टोर ओनर, सो इफ यू आर अ स्टोर ओनर यू वांट टू डेफिनेटली लिसन अप एंड हियर दिस वन आउट. रवि इंपोर्ट्स के

ये बहुत ही गाना सफल हुआ, बहुत ही लोगों ने बहुत पसंद किया इस गीत को। इसमें दिखाई दिए थे ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा फॉर द फिल्म कोई मिल गया, बहुत ही क्यूट गाना था। वहां से एक और चुलबुले गाने की ओर ले चलती हूँ, फिल्म का नाम यस बॉस।

मैं बताती हूँ कहाँ जाएंगे आप मई के 14 से लेकर 17 तक. वेल यू आर गोइंग टू गो एंड स्टेप इनटू ए 3-डे इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रिकनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ. एंड ऑल दिस थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस्ड फैसिलिटेटर्स. And where will this be? Well, this will be at the Osho Universal Retreat. You're going to be there because sometimes the best things you can do for yourself is to slow down. So go ahead and register now at oshouniversal.org. With that, I do have some more time, I guess. Probably get two songs in here. Fun ones.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: लैपटॉप चार्जर कॉफी फोन उफ ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता
3: एग्जैक्टली और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग
2: ओ गॉड पहले आउटफिट फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है
3: आहा आई कीप दैट पाथ सिंपल
2: कैसे
3: ज्वेलरीज जो ऑफिस डिनर वीकेंड हर दिन हर ओकेजन को सूट करे
2: ओ दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी
3: या कैरेट लेन काइंड
0: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product, now open in Frisco.
4: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up. AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So, is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
5: Sab kuch saaf rakh sakte ho.
6: Par mujh pe kisi ki nazar nahi jaati. कोई नहीं सोचता मेरे बारे में
7: क्योंकि ये कौन बोला
6: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट जिसमें है डस्ट पोलन एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है मेरा तो साफ ही होगा तो आप सही नहीं सोच रहे हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें मुझे भी साफ करना होता है मेरा काम था बताना अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा आपको क्या चाहिए
3: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है कॉल जीतू पटेल 972-877-2500
8: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री हॉरोस्कोप रीडिंग वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं प्रेम धन आरोग्य कोर्ट के मामले और बुरी नजर हर समस्या का समाधान यहां मिलता है साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshiram.com अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई
9: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
0: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Chicken banana.
15: चिकन बनाना
16: ब्रो बनाना नहीं बनाना मतलब मेक द चिकन राइट
17: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
18: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai. Transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI powered प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज हजारों फैमिलीज का भरोसा विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 469-734-3338 469-734-3338 myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री NMLS 2025289 लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल इक्वल हाउसिंग लेंडर
19: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
20: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
5: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया। सुन रहे हैं आप इस गाने का रीमिक्स वर्जन। हेलो हेलो हेलो हेलो डैलस, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात। सोच रहे होंगे आप कि अगर इतनी ही गहरी, इतनी ही पक्की दोस्त थी तो हमें छोड़कर गई क्यों थी। वेल, छोड़कर नहीं गई थी, आप यूँ समझ लें कि थोड़ी सी ब्रेक ले रही थी, और ब्रेक के बाद तो वापस आना होता है कि नहीं। एंड ऑफ कोर्स नाउ दैट आई एम बैक, आई विल बी ऑन ए न्यू स्केड्यूल। दैट्स राइट, एवरी सैटरडे बिटवीन 3:30 and 6 PM, और फिर संडे को होगी फिर मुलाकात बिटवीन 3 and 6 PM. Thank you so much for tuning into Dil Se on 104.9 FM. Fun Asia Radio, bringing the community together. It is 36 minutes past 3 on this very sunny and gorgeous Saturday afternoon, the 9th of May 2026. Umeed karti hoon ki jahan bhi aap hain, khairiyat se hain.

प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, मोड़ का तो पता नहीं, पर चैनल है 104.9 FM. दिस पार्ट ऑफ विल से ब्रॉट टू यू बाय लॉ ऑफिसेज ऑफ उमर ख्वाजा. नाउ हम ऐसा चाहते तो नहीं, बट गॉड फॉरबिड इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन ए कार एक्सीडेंट और अ स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट, अटर्नी उमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कंपनसेशन दैट यू डिजर्व. एंड आई हैव हैड पर्सनल एक्सपीरियंस with them, so I know they do a great job of dealing with insurance companies, because bahut stress ho jata hai, seriously. If you've experienced it, you know what I'm talking about. So if you don't want the stress, then you need to get in touch with attorney Umar Khwaja. Get the compensation you deserve, and most importantly, you don't have to pay anything until you win the case. Aap unhe call kar sakte hain 469-300-5046, or you can visit attorneyomar.com.

49 minutes past 3 lage raho munna bhai film se liya gaya ye gana shreya ghoshal ki awaaz mein sun rahe the aap ek baar phir tamam sunne walon ka swagat karti hu aur specially unka jo mera swagat kar rahe hain 104.9 fm ki airwaves par it is 50 minutes past 389 degrees fahrenheit is the current temperature so nice and warm but we're used to that aren't we इस वक्त कुछ मिले जुले गीत प्ले कर रही हूँ कोई ख़ास फरमाइश है अगर आपके पास तो आपको नंबर तो याद ही होगा 972-235-5555 जी हाँ यू आर लिसनिंग टू द वीकेंड एडिशन ऑफ दिल से जिसमें दिल से लेकर आती हूँ मैं ये प्रोग्राम और होपफुली आप भी दिल से ही सुन रहे हैं

नैना दा क्या कसूर? मेरे ख्याल में तो सारा कसूर ही नैना का होता है, क्योंकि नैना ठग लेते हैं। सुना है आपने वो गाना, राइट? आई थिंक राहत फतेह अली खान साहब ने गाया है। वेल, आयुष्मान खुराना पर पिक्चराइज किया गया ये गाना, फिल्म अंधाधुन से लिया गया था। वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंटेलिजेंट फिल्म, आई मस्ट से। इफ यू हैवन सीन इट, इट्स अ मस्ट वॉच। 3:53, एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों की मशकूर हूँ जो आपने ट्यून इन किया 104.9 FM का पर, एंड यू आर लिसनिंग टू दिल से। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात।

अच्छे मीठे और सुरीले गीत सुन रहे हैं आप इस वक्त 104.9 FM की फ्रीक्वेंसी पर. 56 मिनट्स पास्ट 3 ओशो यूनिवर्सल इज ब्रिंगिंग अ ग्रेट रिट्रीट फॉर एवरीवन मई 14th और मई 17th को. स्टेप इनटू अ 3-डे इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स and reconnect with your inner self. Aur ye kisko nahi chahiye, hum sabhi ko chahiye. And you'll be able to do this through powerful meditation techniques guided by experienced facilitators. Because sometimes the best thing you can do for yourself is slow down. So aap bhi dheere chaliye. Visit oshouniversal.org.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Aaja meri gaadi mein baith ja.
8: Baith jaun? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
9: Wo thoda overheating tha.
8: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो.
10: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
12: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
13: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
14: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
15: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
14: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
15: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
16: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर. एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर.
17: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस.
16: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर.
17: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल.
18: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
19: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
1: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
4: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
2: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
4: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
10: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता.
9: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स.
10: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
9: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट.
17: मे 14th टू मे 17th, अ 3-day इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स. रजिस्टर नाउ एट oshouniversal.org. पॉज द नॉइज, मीट योरसेल्फ.
11: एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, एंड यू आर गोना बी एबल टू ट्यून इन एवरी सैटरडे बिटवीन 3:30 एंड 6 PM, और संडे को हमारी आपकी मुलाकात होगी 3 से 6 बजे के दरमियान. जी हाँ, कल मदर्स डे है जो हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे ऑन फनेशा रेडियो. एंड आई डू हैव अ गिव अवे दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. इट्स फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन, लेकिन वो इस गाने के बाद, क्योंकि सुहेल और मरियम ने कॉल करके स्पेशली इस गाने की फरमाइश की थी, और फरमाइश पूरी करना हमारा फर्ज बनता है कि नहीं, एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं. और वो तमाम लोग जिन्होंने कॉल इन करके मुझे वेलकम किया, आई डू अप्रिशिएट इट. थैंक यू सो मच. आई एम सो ग्लैड टू बी बैक ऑन फनेशा रेडियो. जैसे कि मैंने बताया, वोंट बी देयर ड्यूरिंग द वीक, लेकिन वीकेंड पर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी बिटवीन 3 and 6 PM. तो आइए अब सुहेल और मरियम की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं सलमान खान की आवाज़ में ये गाना. इट सीम्स लाइक दे आर बिग सलमान खान फैंस, विच रिमाइंड्स मी ऑफ माई बेस्टी शिल्पा हु ऑल्सो लव्स सलमान खान.

सुहेल और मरियम की फरमाइश पर सुन रहे थे आप सलमान खान की आवाज में ये गाना. होप यू गाइस एंजॉयड इट. 9 मिनट्स पास्ट 4, यू आर लिसनिंग टू दिल से.

गहरा हुआ धुरंधर फिल्म से लिया गया ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे थे आप. इट इज 12 minutes past 4 एंड आई हैव अ गिव अवे फॉर यू. या तो कढ़ाई पनीर एंजॉय कीजिए या कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. वैसे दे ऑल्सो हैव अ स्पेशल थाली मंडे थ्रू फ्राइडे और रोजाना लंच पर दे हैव अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट डिशेज दैट यू कैन try out because they are on rotation. They are located right off McDermott Drive in Allen aur details aapko chandigarhbites.com par mil jayengi. Ab I mentioned ki main ek giveaway karne wali hu, right? So giveaway hai ye ki aapne mere sawal ka jawab dena hai. If you can tell me ki main कितने अरसे बाद वापस एयरवेव्स पर लौटी हूँ, देन यू गेट टू विन. सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर ए यू नो अ सर्टन नंबर कॉलर के कॉलर नंबर 3 कॉलर नंबर 4 ऐसा कुछ नहीं है. बस आपने सही जवाब देना है और बताना है कि मैं कितने अरसे बाद, अब वो कितने दिन हैं, कितने साल हैं, कितने हफ्ते महीने, एज लॉन्ग एज यू गिव मी द करेक्ट आंसर यू कैन विन. हाँ, एक रिस्ट्रिक्शन और है कि अगर आपने पिछले एक माह में विन किया है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल टू विन दिस. बट इफ यू हैवन वॉन दिस बिफोर देन डू कॉल 972-235-5555. अगेन दैट इज 972-235-5555 और आपका जवाब एक्यूरेट होना चाहिए. 972-235-5555. Meanwhile, आइए सुनते हैं ये अगला गाना. Enjoy.

0: That's right.
1: All right, हर तरह के जवाब मिले मुझे मेरे सवाल के, मेरे सवालों का जवाब दो दो ना, that was my question. Question was कि मैं कितने अरसे बाद वापस आई हूँ 104.9 FM की फ्रीक्वेंसी पर. And I want to mention that I got answers everything from 1.5 month to 1 to 2 years. So, हर किसी ने अपना अलग अलग जवाब दिया, but I did get 2 callers who were most accurate. अब उनमें से जो पहले कॉल बैक करेगा उसी को मिलेगा चंडीगढ़ बाइट से मजेदार इनाम. जी हाँ, डिलिशियस कढ़ाई पनीर और कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. सो आई एम गोना गो हेड एंड शेयर इट. सो आई वाज एक्चुअली गॉन फॉर 10 months. दैट्स राइट. और मैं शहर छोड़कर नहीं गई थी, स्टेट छोड़कर नहीं गई थी. आई वॉज राइट हियर. इनफैक्ट आई एम जस्ट इन अ डिफरेंट प्रोफेशन नाउ. जैसे कि आप जानते हैं, पहले आई वर्क एज अ डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन फॉर फाइनेंशियल रेडियो एंड आई ऑल्सो होस्टेड शोज. लेकिन फिर मैं चली गई, 10 महीने के बाद लौट कर आई हूँ. एंड यू बी एबल टू ट्यून इन एवरी सैटरडे एंड संडे. सैटरडे को 3:30 बजे से लेकर 6 बजे तक, or Sunday ko from 3 to 6 p.m. So I hope that you're as happy and excited about me coming back as I am. And I do want to give a quick and a big shout out to Vaishali Thakkar and Mr. Farhad Varia for making this transition so seamless for me and welcoming me back with open arms at 104.9 FM. Thank you, everyone.

अगर प्रोग्राम का नाम है दिल से तो फिर दिल दिया गल्ला ही होंगी, है कि नहीं? थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से ऑन 104.9 FM. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन असनाद. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर विनर्स जिन्होंने आज चंडीगढ़ बाइट्स एलन से विन किए मजेदार डिलिशियस प्राइज. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू कॉल इट. एंड जी हाँ, आई हैव रिटर्न्ड आफ्टर 10 months of I guess taking a hiatus, right? पर वापस आ गए, right? और वो क्या कहते हैं, सुबह का भूला जगह शाम को घर आ जाए तो उसे क्या नहीं कहते, भूला नहीं कहते, उसे अमरीन कहते हैं.

शान की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना जो फिल्म फना से लिया गया था, आमिर खान और काजोल पर पिक्चराइज किया गया था। आई होप कि आज मेरे गानों का सिलेक्शन आपको पसंद आ रहा है। आई एम प्लेइंग सम ऑफ योर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स।

सुखविंदर सिंह की आवाज में सुन रहे थे आप हौले हौले हो जाएगा प्यार। रब ने बना दी जोड़ी, आई थिंक हमारी जोड़ी भी रब ने ही बनाई है। दैट इज वाई आवाज का जो ये रिश्ता आपसे बना है, मैंने कोशिश की थी तोड़ने की लेकिन टूट ही नहीं पाया।

फिल्म सांवरिया से लिया गया ये गाना शान की आवाज में सुन रहे थे आप, और इसे एक पिक्चराइज किया गया था रणबीर कपूर पर। 44 मिनट्स पास्ट 4, यू आर लिसनिंग टू द वीकेंड एडिशन ऑफ दिल से। और वीकेंड एडिशन क्या, अब आप सिर्फ हमें वीकेंड पर ही सुनेंगे, एज इन मुझे आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। जी हाँ, आपसे मुलाकात हुआ करेगी हर सैटरडे को 3:30 से 6 बजे के दरमियान, और संडे को 3 से 6 बजे तक। सो सुनना ना भूलिएगा, राइट हियर ऑन 104.9 FM।

चाशनी, इश्के दी चाशनी, और ये चाशनी अच्छी होती है, पता है क्यों? उसे वजन नहीं बढ़ता। टेकन फ्रॉम द फिल्म भारत, सुन रहे थे आप इश्के दी चाशनी, जो कि सलमान खान और कटरीना कैफ पर पिक्चराइज किया गया था। दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय देसी मंडी, व्हिच हैपेंस टू बी द बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन टाउन। देसी मंडी हैज सम अमेजिंग ऑफर, एंड इफ यू आर क्रेविंग मोर फॉर लेस, वेल दिस वीक दे हैव गॉट यू कवर्ड। मंडे एंड वेडनेसडे दे हैव बाय वन get one free biryani, noodles and fried rice. Oh, I can live with that. Tuesday or Thursday ko buy one get one free on dosas and chaats. And during the week 5 to 9 p.m. This is available, of course, and there's no mix and match, and terms and conditions apply. To yaad rakhiyega, more flavor, more savings all week long. Desi Mandi, which is located in Louisville. 48 minutes past 4. It is nice outside right now. Let's see. Kya hai mausam? 88 degrees Fahrenheit in McKinney. Today's low was 68 and the high is 88, which is right now. Yani ki isse zyada garmi nahi hogi. Agar aap bahar nikalne ke bare mein soch rahe hain, abhi bhi ja sakte hain ya thodi der intezar kar le. Shayad mausam aur thanda ho jaye.

सुन रहे थे आप सैयारा फिल्म का टाइटल ट्रैक. व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग. इट इज 52 मिनट्स पास्ट 4 एंड यू आर लिसनिंग टू दिल से ऑन 104.9 FM. अगर हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ दिल की बात कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं 9722355555. दिस पार्ट ऑफ आवर शो ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलर्स. दिस मदर्स डे सेलिब्रेट द वुमन हु इज pure gold. Visit Tanishq and enjoy up to 20% off on diamond value and gold jewelry making charges. Plus, you get 0% deduction on exchange of old gold above 18 carats. Because for mom, only something timeless will do. Tanishq now celebrating Mother's Day with offers made for your most precious bonds. Certain terms and conditions apply.

इस गाने को सुन के मुझे ख्याल आया कि कितने दिन हो गए मैंने जलेबी नहीं खाई. यू नो दिस इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी टू गेट सम नाइस स्वीट सिरपी जलेबी. और आप लोगों के लिए क्या है, आप हमारी शीरे में डूबी आवाज सुन लीजिए, आपके लिए जलेबी वाली फीलिंग आ जाएगी और वजन भी नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं. 8 minutes past 5. वेलकम बैक टू 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together and also bringing me back on the airwaves of 104.9 FM. Ji haan, main hoon aapki host, aapki dost Amreen Hasnat, and I do want to thank each and every one of you for your calls and the warm welcome. Aapke pyar ka behad shukriya, aur ye aapka pyar hi hai jo hame kheech kar wapas le aaya hai. इससे पहले कि हम अगले गाने की तरफ बढ़ें, एंड आई थॉट यू नो वी हर्ड अ लॉट ऑफ रोमांटिक मेलोडियस सॉन्ग्स अर्लियर इन द आफ्टरनून, अब कुछ लेट्स पंप इट अप अ लिटिल बिट. एंड आई डू वांट टू रिमाइंड यू गाइस अबाउट ग्रह प्रवेश. जी हाँ, द इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आज भी है और कल भी है, एंड इट्स हैपनिंग एट द हायत रीजेंसी इन फ्रिस्को डैलस. एट दिस इवेंट यू विल गेट टू मीट top builders from cities like Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Chennai, Pune and Delhi NCR. They'll be showcasing over 200 premium projects. Apartments bhi hain, villas bhi hain and plots as well as farmlands. But you're going to have to be there to check it all out. So whether you are looking for something like a ready to move home ya phir koi you know naya launch dekhna chahte hain, they have exclusive information and offers for you at this expo. Bahut achhi deals hain jo aap dekhenge to aap khud hi samajh jayenge. So don't just dream it, own it, but you will need to register on grahapravesh.com, and that is your first step towards your dream home in India. All right, it's 10 minutes past 5. We're going to keep it upbeat. We're going to keep it fun. And we're going to keep it right here on 104.9 FM.

तुम्हारी सुलु से लिया गया ये गाना सुन रहे थे आप गुरु रंधावा की आवाज में। पिक्चराइज किया गया था ये विद्या बालन पर।

हमें तो लूट लिया इश्क वालों ने, दीपिका पादुकोण शाहरुख खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म पठान से लिया गया है. एंड आर यू गोना बी शॉक्ड इफ आई टेल यू आई हैव नॉट सीन दिस मूवी, बट देन नीदर हैव आई हैव नॉट सीन मोहब्बतें ईदर. I haven't watched Titanic. You know, you would think some of these movies, some of these big name movies, sabhi ne dekhi hai, but maine nahi dekhi. Khair, koi baat nahi. I don't think I've lost anything, have I? Matlab, mera waqt bach gaya, I feel nahi. 25 minutes past 5, you're listening to Dil Se on 104.9 FM. 10 mahine ke baad laut kar aayi hoon aur aaj hai mera ye pehla show. I hope you guys are doing well. I missed you and hence I am back. Hope this weekend is going well for you. Tomorrow is Mother's Day. अगर अभी तक आपने अपनी मॉम के लिए कोई तोहफा नहीं खरीदा तो जल्दी से ले लीजिए. And let me tell you one thing. You know, if you give her something that's thoughtful and creative, that's going to mean the world to her. It's not about the value of the gift. क्योंकि जो आपकी मॉम है, आपकी अम्मी है, आपकी माँ है, वो आपसे प्यार करती हैं और आपके प्यार के एहसास को अप्रिशिएट करेंगी एंड नॉट द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट. सो गिव हर व्हाटएवर यू कैन. टेक द टाइम आउट टू टेल हर हाउ मच शी मीन्स टू यू. टेल हर हाउ मच यू लव हर एंड मेक श्योर दैट यू मेक दिस मदर्स डे एक्स्ट्रा स्पेशल.

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: You turned down that job to become a diving instructor?
3: Yeah, I thought Ma would say no.
2: And?
3: She said, build your life the way you dream it.
4: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 2809 Preston Road, suite number 1200 Frisco. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
5: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
6: Main expert lifeline use karna chahunga.
5: Computer ji, SBA loan experts se connect kiya jaye.
7: SBA loan experts ne business loan process bahut hi aasan bana diya hai. No tax returns needed to apply aur credit par hard check bhi nahi. Results sirf 10 minute mein.
8: Business loan options ko clarity se samajhne ke liye call kare 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA loan experts. Faisla clarity ke saath.
9: Sab kuch saaf rakh sakte ho
10: par mujh pe kisi ki nazar nahi jaati. Koi nahi sochta mere bare mein.
11: Kyunki ye kaun bola?
10: Ye hum bol rahe hain aapke ghar ka duct. जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
7: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 972-877-2500। तुमने फिर कार्ड यूज किया?
12: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
7: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
12: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
8: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
17: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता।
18: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स।
17: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
18: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट।
7: May 14th to May 17th, अ 3-day इमर्सिव जर्नी to release stress, clear emotional blocks and reconnect with your inner self through powerful meditation techniques guided by experienced facilitators. Register now at oshouniversal.org. Pause the noise. Meet yourself.
19: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.
20: Welcome back to 104.9 FM Funisha Radio, bringing the community together. Main hu aapki host, aapki dost Amreen Hasnat. And yes, it's my first day back after a 10-month break. And I'd like to thank Vaishali Tucker and Mr. Farhad Varia for making this happen. Aur ab jab laut kar aayi hu, to not on weekdays, but you can tune in every Saturday between 3:30 and 6 p.m. or Sundays ko between 3 and 6 p.m. और आपसे होंगी बातचीत, गपशप, अच्छे अच्छे गाने, and of course always there will be giveaway. So I hope you will join me on the weekends. I know weekday में वैसे भी सब busy रहते हैं, कहाँ टाइम मिलता है बैठकर रेडियो प्रोग्राम सुनने का, लेकिन नाउ यू विल डू दैट. आई विल बी स्प्लिटिंग माय शो इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स ताकि आप मजा ले सके उन्हीं सेगमेंट्स का जो हम पहले मंडे थ्रू फ्राइडे किया करते थे. टुडे इज द 9th मई 2026. इट्स ए स्पेशल सैटरडे इवनिंग. स्पेशल इसलिए कि आप हैं, मैं हूँ और दिल से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है. और बहुत दिल से मलिक साहब ने इस अगले गाने की फरमाइश की है. उन्होंने कहा कि हम आपका स्वागत करना चाहते हैं और वो भी स्वैग से.
9: Listen close what I gotta say, 'cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go. Yeah.

Zikia Re. This is a song taken from the film Dhoom 2. Suniti Chauhan ki awaaz mein sun rahe the aap. Aur ye Aishwarya Rai par picturize kiya gaya tha. Acha, aapko ek interesting baat batati hoon Dhoom 2 ke baare mein. Ek nahi, balki 3-4 baatein batati hoon. You know, is film mein ek scene tha jisme Abhishek Bachchan Hrithik Roshan ko kehta hai ki jab bhi mere father ne kuch decide karna hota tha, wo hamesha ek coin flip karte the. And do you know who he was talking about? Well, he's talking about Amitabh Bachchan, jo ke Shole film mein aisa hi karte the. Ek aur interesting baat, jo is film ka title song tha, Dhoom Machale ka. Did you know ke uske background mein jo kafi bada group hota hai dancers ka, un dancers mein ek dancer Sushant Singh Rajput bhi the. Hai na interesting baat? और हाँ, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय का जो एक किसिंग सीन था ना इस मूवी में, वेल दैट कॉज्ड अ लॉट ऑफ रकस. नॉट जस्ट दैट, लेकिन एक कोर्ट केस भी हुआ था ऑब्सिनिटी को लेकर. और इस फिल्म में सारे ही बहुत फिट दिखाई देते हैं. इनफैक्ट द इंटायर लीड कास्ट हैड टू गो थ्रू vigorous training. आई मीन, दे रियली हैड टू वर्क हार्ड टू लूज वेट. वेल, at least Aishwarya did and so did Bipasha Basu. Lekin Hrithik Roshan actually had to gain weight because as per the producer director ki wo bahut skinny the. So unhe kuch kha pi ke jaan banani pade. Alright, khane peene se yaad aaya, there's a great restaurant in Frisco and that is Flavor Lounge. I'm sure aapne naam suna hai Flavor Lounge ka. उनकी तरफ से है आपके लिए एक इनाम, दाल मखनी या ढाबा स्टाइल चिकन करी. और ये इनाम उनको मिलेगा जो मेरे सवाल का देंगे जवाब. मेरा सवाल ये है, जो अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ वो एक फोक सॉन्ग है, बहुत सारे लोगों ने गाया है. जो वर्जन मैं प्ले कर रही हूँ वो दो सिंगर्स ने गाया है. आप उन दो सिंगर्स का नाम मुझे बताइए और जीतिए फ्लेवर लाउंज की तरफ से दाल मखनी या अगर आप नॉन वेज खाते हैं देन ढाबा स्टाइल चिकन करी. अच्छा, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप पहले ये विन कर चुके हैं यू विल नॉट क्वालिफाई. इवन अगर, मतलब मुझे तो पता नहीं होगा, लेकिन जब आपका नाम हम वहाँ रेस्टोरेंट भेजेंगे, अगर आप पहले वहाँ जा चुके हैं दे विल ऑटोमेटिकली disqualify you. So, मैं पहले से ही बता रही हूँ कि आप सोच लीजिए, अगर आपने पिछले एक माह में विन किया है या कभी भी विन किया है और आप फ्लेवर लाउंज जा चुके हैं प्राइज के लिए, तो प्लीज अलाउ अदर पीपल टू ट्राई दिस आउट. सो वंस अगेन द क्वेश्चन इज कि जो अगला गाना मैं प्ले कर रही हूँ उसमें कौन से हैं दो सिंगर्स. 972-235-5555 है हमारे स्टूडियो का नंबर.

सवाल मेरा बहुत आसान था कि मस्त कलंदर का ये जो रेंडिशन है वो किसकी आवाज में है. एंड ऑफ कोर्स द फर्स्ट पर्सन टू गिव द करेक्ट आंसर बिकेम द विनर एंड दैट इज मीना. कांग्रेचुलेशंस नीना जी. आई होप यू एंजॉय द डिलिशियस फूड एट द फ्लेवर लाउंज.

प्यार होता होता होता कई बार है, फिल्म तू झूठी मैं मक्कार से लिया गया, ये गाना सुन रहे थे आप. एंड आई रिकॉल इंटरव्यूइंग रणबीर कपूर फॉर दिस मूवी. एंड यू नो आई यूज्ड टू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ हिम, लेकिन जब मैंने उनका इंटरव्यू किया, जिस तरह से, जिस अंदाज में उन्होंने मुझसे बात की, I was totally impressed and I appreciated his humility and his humble demeanor. Anyway, ladies and gentlemen, once again, thank you so much for tuning in to Dil Se. Bahut acha laga wapas aakar. And main yahi rahungi. Shart ye hai ki aap sunte rahe hamara ye program. Saturday ko between 3:30 and 6 PM aur Sunday ko aapke saath Mother's Day celebrate karungi between 3 and 6 PM. Aur is aakhri gaane ke saath, signing off, this is Amreen Hasnat.

हेलो एंड वेलकम दोस्तों. यार मैं हूँ पारो, नहीं आती हूँ इस वक्त. यस दैट इज करेक्ट. बट आज रहूंगी आप लोगों के साथ ऑन दिस ब्यूटिफुल सैटरडे आफ्टरनून इवनिंग. एक्चुअली फीलिंग आफ्टरनून की आ रही है. व्हेन आई वाज ड्राइविंग टू हियर आई वाज थिंकिंग कि ऐसा लग रहा है एक बहुत प्यारा प्यारा आफ्टरनून. इट्स ऑलमोस्ट लाइक धूप इतनी बढ़िया है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दिस इवनिंग. दिस इज ब्यूटिफुल वेदर टू बी आउटसाइड टू स्पेंड सम टाइम विद नेचर. तो यस दिस इवनिंग, बिल्कुल इवनिंग है वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए, फीलिंग के हिसाब से अभी तो दिन बहुत पड़ा है, लेकिन अगर देखा जाए तो 6 बज गए हैं, घड़ी में हो रहे हैं 6:06 और 9 बजे तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगी. एंड वी विल बी प्लेइंग ऑल द सॉन्ग्स दैट यू लव, व्हिच मींस यू हैव टू कॉल एंड टेल द सॉन्ग दैट यू वांट मी टू प्ले. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर.

लेट 90s में इस गाने ने बहुत लोगों को दीवाना किया था, क्योंकि श्वेता शेट्टी ने बहुत तूफान मचाया था इस गाने के साथ. शी इज इंडियन बॉर्न बट नाउ शी इज जर्मन, क्योंकि उन्होंने एक जर्मन से शादी करी एंड शी मूव टू जर्मनी. सो शी इज इंडियन बॉर्न जर्मन पॉप सिंगर. आप जानते हैं दैट शी इज द कजन ऑफ शिल्पा शेट्टी एंड शमिता शेट्टी. और 1998 जब ये जिस टाइम पर ये गाना आया था उस समय स्क्रीन अवार्ड्स पर जब स्क्रीन अवार्ड्स हुए थे 1998 के, तो शी वॉज अवार्डेड द बेस्ट फीमेल पॉप आर्टिस्ट एंड दिस वॉज फॉर दिस पर्टिकुलर एल्बम विच इज दीवाने. तो दीवाने हैं. अगले गाने जिसकी रिक्वेस्ट आई है, हसन साहब आपने एक रिक्वेस्ट करी और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी आपकी रिक्वेस्ट, बिकॉज आई टॉक्ड अबाउट राकेश बेदी साहब ऑन थर्सडे. जब थर्सडे मैं 7 to 9 शो कर रही थी तो मैं राकेश बेदी साहब की बात कर रही थी, क्योंकि धुरंधर में जो उनका रोल है जमील साहब का वो इतना ज्यादा फेमस हुआ है. एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट हिज जर्नी. और मैं जब भी उनकी जर्नी की बात सोचती हूँ तो एक सीरियल जो मेरे बड़ा क्लोज है वो है यस बॉस. यस, दैट वॉज सच अ वंडरफुल कॉमेडी, इतनी बढ़िया कॉमेडी. और मोहन श्रीवास्तव उनका नाम था और मतलब नाक में दम कर देते थे अपने बॉस का वो. और कौन थे उनके बॉस? उनके बॉस वही थे जिस गाने की आपने हसन साहब रिक्वेस्ट करी है ना, यारा दिलदारा फिल्म का है. यारा दिलदारा में वो हीरो थे. बहुत कम फिल्मों में हीरो आए हैं, हीरो वो नहीं चल पाए. ऑल्दो ही इज वेरी गुड लुकिंग बट ही बिकेम अ सेंसेशन इन यस बॉस फॉर श्योर एंड इन अ लॉट ऑफ अदर टीवी सीरीज. कौन है ये बताऊंगी थोड़ी देर में. पारो इन द हाउस.

Asif Sheikh Sahab, very talented and very good looking as well. In fact, काफी मोनिश बहल जैसे दिखते हैं. पहले तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि ये मोनिश बहल तो नहीं है नूतन के बेटे मोनिश बहल. एंड दे बोथ आर वेरी गुड लुकिंग. लेकिन मोनिश बहल तो फिर भी फिल्मों में काफी आए विलन बन के और अलग कैरेक्टर रोल्स करके. आसिफ शेख साहब का छोटा सा करियर रहा है फिल्मों का और नहीं चले एज अ लीड हीरो. लेकिन ये फिल्म और इसके गाने बहुत हिट हैं, यारा दिलदारा एंड दिस सॉन्ग. देखिए इतने सालों बाद भी इसकी रिक्वेस्ट आई है, विच टेल्स यू दैट इट इज सच अ फेमस सॉन्ग. लेकिन बहुत अदर दूसरी कामों के लिए, दूसरी जगहों की एक्टिंग के लिए, यानी कि टीवी सीरीज की एक्टिंग के लिए आसिफ शेख साहब को बहुत रिकॉग्निशन मिला है. सो फॉर इंस्टेंस उनका एक टीवी एक सिटकॉम होता था बाबा जी घर पर है, एंड इट वॉज अगेन वेरी फनी वन. मैंने उतना ज्यादा नहीं देखा है लेकिन इट इज ऑल्सो समथिंग फॉर विच हिज वर्क इज रिकॉग्नाइज्ड. और इतना ही नहीं, ही वॉज एक्चुअली एक्नॉलेज्ड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ records in 2001 in London for performing more than 300 different characters. Yes, उन्होंने 300 से भी ज्यादा different characters इस particular जो ये बहुत ही लंबा चला है बाबा जी घर पर है, हो सकता है बहुत सारे आप लोगों ने देखा हो. और इसमें उन्होंने बहुत सारे इतने characters किए थे और इतना उनको सराहा भी गया था और इन्होंने एक record बनाया था. So he was acknowledged in London in World Book of Records. लेकिन जिस वजह से मुझे ये बहुत याद आते हैं, and that is Yes Boss. और ये भी बहुत लंबा चला है. यस बॉस वॉज अ वेरी फनी कॉमेडी ऑफिस ड्रामा है. इट इज एन ऑफिस ड्रामा. तो एक ऑफिस में ये एमडी होते हैं, बॉस होते हैं उस ऑफिस के, और इनके अंडर काम करती हैं एक लेडी और उनके जो हस्बैंड होते हैं वो होते हैं राकेश बेदी साहब. और राकेश बेदी साहब जैसे कि उनका नेचर है बड़े मजेदार भी हैं और कॉमेडी इतनी अच्छी करते हैं. इसमें उनका नाम होता है मोहन श्रीवास्तव. और कविता कपूर जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने भी बहुत काम किया है. मीरा नाम होता है, वो राकेश की वाइफ होती हैं. और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. पूरा जो इसका एक प्रिमिस है वो ये है कि राकेश बेदी और कविता कपूर जो है उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया होता कि हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि अगर पता चल जाएगा तो शायद ऑफिस में उतना जो प्रोफेशनलिज्म है और वो सब है वो नहीं रहेगा, जो भी उनके रूल्स होते हैं ऑफिस के. तो आसिफ शेख साहब जो है उनको ये पता नहीं होता, और वो उनकी जो वाइफ होती है मीरा उसको तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मोहन जी को वो हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी तरह से निकाल दे कंपनी से, लेकिन मीरा हमेशा उनको नहीं निकालने देती हैं. और ये जो ट्राइंगल है, और इसमें एक और बहुत ही फनी कैरेक्टर है, अगर आप जानते हो दिलनाज ईरानी, शी इज ऑल्सो वेरी फेमस टीवी एक्ट्रेस, तो वो आसिफ शेख की वाइफ होती हैं इसमें, और एक बड़ी खिचड़ी सी पक जाती है. एंड आई वॉच्ड सो मेनी यस बॉस एपिसोड्स. और बहुत ही राकेश बेदी साहब जितना अच्छा काम करते हैं और इतने मजेदार लगते हैं इसमें, उसी तरह से आसिफ शेख साहब भी लगते हैं. सो आई वॉन्ट टू, मैंने क्यों ये सब बात बोली, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज दीज टीवी आर्टिस्ट हु वर्क सो हार्ड, क्योंकि टीवी में काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है एज अपोज टू मूवीज. मूवीज खत्म हो जाती है, एक से मूवी की शूटिंग खत्म हो जाती है तो एक्टर को आराम मिल जाता है, लेकिन टीवी सीरीज ये जो 10-10 साल तक चलते रहते हैं, ये जो कुछ तो एवरी डे आते हैं या एवरी वीक भी आते हैं, जितना भी मतलब बहुत ज्यादा आते हैं. सो दिस इज अ बिग बाइंडिंग एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड वर्क, एंड कूडोज टू ऑल अवर ग्रेट टीवी आर्टिस्ट.

A very happy Mother's Day. Kal hai Mother's Day, and I really hope that you have some special plans for mothers in your family. Chahe wo aapki apni mother ho, kisi aur ki mother ho, mother jo hoti hai wo to bahut special hoti hai. 100 saal se zyada lamba chalne wala ye tyohar hai. Ji haan, ye jo Mother's Day hai, ho sakta hai bahut sare log, especially hum log India mein, jab when we were growing up, we didn't celebrate it, aur pata bhi nahi tha hume zyada kuch. To ye Father's Day, Mother's Day, ye sab ab to khair internationally bahut thanks to internet, aur internet ke pehle bhi jab itna zyada ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो लोगों को पता चल गया है, एंड पता तो चलना ही चाहिए, मदर्स डे सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए. लेकिन दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1914. जी हाँ, 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तब ये मदर्स डे ऑफिशियली यूएस में एस्टैब्लिश किया गया था. लेकिन 1905 में एक आना जार्विस थी, उनकी मदर की जब डेथ हुई, 1905 की बात कर रही हूं मैं, एंड एट दैट टाइम शी स्टार्टेड दिस कैंपेन कि एक ऑफिशियल डे होना चाहिए टू ऑनर द sacrifices mothers make. और उन्होंने इस एक ऐसा दिन, उन्होंने कहा कि ऐसा दिन होना चाहिए जिसमें commercialization कुछ नहीं हो, and this is a day जिसमें आप अपनी family, अपनी mothers को एक personal letter लिखें. अभी देखिए, अब ये चीज़ तो रही नहीं है, लेटर्स तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हाथों से तो लिखना ही बंद कर दिया है. टाइप भी नहीं करते बहुत सारे लोग, मे बी टेक्स्ट कर देते हैं, वो भी आधा अधूरा. आई मीन पूरे वर्ड्स भी नहीं लिखते टेक्स्ट में, एज यू नो, बहुत सारे एब्रीविएटेड और पता नहीं क्या क्या वर्जन्स हो गए हैं जेंजी वाले. लेकिन इसका जो ओरिजिनल है वही इंटेंट था, जो उनके फाउंडर हैं, जो आना जार्विस जो फाउंडर थी, उनका यही इंटेंट था कि इसको कमर्शियल नहीं बनाया जाए. और मुझे लगता है कि कोशिश हमें करनी चाहिए. कमर्शियल तो हो गया है क्योंकि देखिए, हम कमर्शियल वर्ल्ड में रहते हैं, क्या क्या करें, हर चीज़ कमर्शियल हो ही जाती है और हर चीज को लोग कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं. दैट इज जस्ट लाइफ. बट आई थिंक हमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि माँ का जो प्यार है, माँ का जो सैक्रिफाइस है, माँ जो हमारे लिए करती है, उसमें कोई कमर्शियल नहीं है, उसमें कुछ फायदा नहीं है, उसमें कोई नफा नुकसान नहीं, फायदा सब कुछ नहीं देखा जाता, उसमें सिर्फ बे इंतहा प्यार होता है. तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए दैट वी अंडरस्टैंड दैट एंड वी अप्रिशिएट आवर मदर फॉर दैट. अब उन्हें हम फूल या बड़े बड़े गिफ्ट खरीद के दें, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्हें एहसास कराना चाहिए दैट शी इज वेरी स्पेशल एंड शी डिजर्व्स ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन. 9723555555 है स्टूडियो का नंबर, और मैं हूं पारो, इसलिए बता रही हूं क्योंकि इस वक्त यानी कि सैटरडे को मैं नहीं आती हूं. और आई मेट यू ऑल इसलिए बोलती हूं क्योंकि जब मैं रेडियो पर बात करती हूं आप लोगों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे मिल चुकी हूं, मिल रही हूं, दैट इज द फीलिंग आई गेट. तो आप लोगों से मुलाकात होती है रेडियो पर आवाज के थ्रू ही ऑन मंडे थ्रू थर्सडे 7 to 9. लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ 9 बजे तक रहूंगी. तो इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड, कॉल इन. एक छोटा सा गाना चलेगा, उसके बाद विल बी हेडिंग इट टू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. लौटेंगे यहीं पर ऑन 104.9 FM फनिशर रेडियो.

0: अरे सुनना, आज ऑफिस से आते हुए मैंने फ्रिस्को में एक नया स्टोर देखा।
1: कौन सा?
0: कैरेट लेन।
1: वेट, व्हाट? कैरेट लेन इंडिया वाला?
0: हाँ वही।
1: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली।
0: देखा, ढूंढ के दिया ना।
2: इंडियाज मोस्ट लव्ड एवरीडे ज्वेलरी ब्रांड नाउ इन फ्रिस्को, लाइट वेट रियल डायमंड्स मेड फॉर एवरीडे। कैरेट लेन, अ टाटा प्रोडक्ट।
3: घर की याद नहीं आई तुझे? जैसे
4: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
5: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
4: सच में? बिल्कुल घर जैसा।
5: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Did you know Bawarchi Biryani's is the number one Indian restaurant chain in USA? It's true. With over a decade of experience and 50 plus locations across the country, Bawarchi Biryani's makes the best Hyderabadi Dum Biryanis and Andhra Pulaos. They also serve the finest North and South Indian cuisine. So why dine anywhere else?
10: Visit one of their DFW locations, Plano, Frisco, Irving or Richardson.
11: Inefficient man.
12: Very complex.
13: But clumsy.
12: Are confusion hi confusion hai. Abhe!
14: Disjointed software को यूज करना इतना इजी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ, अपने बिजनेस के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेकर customer support, accounting, operations या HR. कामनिक सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
15: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डायलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
16: इट्स ट्रू, हम अपने सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर, पंडित ईश्वर जी, 9455270897, or visit astrologerishwar.com.
17: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

Welcome back. Welcome back. Today is May 9th, a very special day. Special day isliye kyunki kal hai Mother's Day. But ek aur wajah se aaj ka din celebrate kiya jata hai. And why is that? And that is specifically about May 9th. It is not tied anyway to Mother's Day. But I think in a way, it is tied to Mother's Day. It is tied to Mothers. Aur kya hai wo aaj ka din? Aur kyun main aisa keh rahi hoon? It is tied to Mothers. I'm going to talk about it in a little bit. But filhaal, aap logo ki pasand ke gaane chala rahi hoon 972-355-5555 par. कॉल कर सकते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, मदर को डेडिकेट करना चाहते हैं, आप एक मदर हैं तो खुद को डेडिकेट करना चाहते हैं, और अगर कोई ना मिले तो पारो को डेडिकेट कर दीजिए. मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मुझे डेडिकेट करते हैं. करते नहीं है ना ज्यादा.

0: This part of the show is brought to you by Dream Home Mortgage. Dream Home Mortgage has been helping families achieve home ownership since 1998. Licensed in all 50 states, their expert team delivers stress-free, tailored mortgage solutions. Make your dream home a reality with Dream Home Mortgage. Details ke liye aap call kar sakte hain. Unka number hai 972-245-5626 or visit dreamhomemortgage.com. थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी आज का दिन एक वैसे ही इवन इफ इट इज नॉट अराउंड द सेम वीकेंड एज मदर्स डे लेकिन जो 9th मई है वो कहीं ना कहीं माँ से और हम सब से ही जुड़ा हुआ है एंड दैट इज क्योंकि हम सब जुराब पहनते हैं मोजे पहनते हैं जुराब बोलिए मोजे बोलिए सॉक बोलिए और एंड लॉट ऑफ पीपल टू वर्क दे हैव टू वेयर इट. कई लोगों को ठंड लगती है तो सोते भी मोजे पहन के हैं जुराब पहन के. कई बार तो आप घर पे कई लोग दे आर ऑलवेज वेयरिंग सॉक्स एंड सर्दियों में तो बहुत कुछ लोग वुलन सॉक्स भी पहनते. कहने का मतलब है सॉक्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. लेकिन सॉक्स लोगों का भी एक टेंशन है. टेंशन क्या है ना कि ऐसा समझ लीजिए कि किसी ने आपको आपको दुनिया में बिल्कुल आपके जैसा एक और इंसान बनाया है. मतलब हर किसी का एक जुड़वा है एक ट्विन है. सो थिंक अबाउट इट हाउ लाइफ वुड बी कि आप अकेले नहीं हैं बिल्कुल आपके जैसा कोई है एंड इट्स ट्रू विद एवरीबॉडी. सोचो आप एक ऐसी दुनिया हो ऐसी सॉक्स की दुनिया है. सॉक्स की दुनिया में कोई भी सॉक अकेला नहीं है. हर सॉक का एक पेयर है एक ट्विन है तो कितनी अच्छी बात है. लेकिन इसकी ये जो अच्छी बात है इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि वो ट्विन है वो जो आपका ये समझ लीजिए बिल्कुल आपके जैसा है वो घूमता रहता है और एक बार घूम जाता है तो फिर मिलता नहीं है. ये है बड़े दुख की कहानी. ये है सिंगल जुराबों की कहानी. और ये सिंगल जुराबों की कहानी आई थिंक हम सबकी हम सब इससे गुजर चुके हैं. मेरे पास घर में पूरा का पूरा एक बोरा भर के बहुत सारे सॉक्स हैं. सॉक्स भी नहीं कहूंगी एक इंडिविजुअल सॉक्स सारे बिना जिनके जिनके पेयर जो है वो घूम गया है. कहाँ घूम गया है किसी को नहीं पता. एंड दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट. आई विल टेल यू इन अ लिटिल बिट. फनिशर रेडियो यू आर ऑन हियर.
1: हेलो हाउ आर यू फारू जी.
0: मैं अच्छी हूँ सफी जी. कैसे हैं आप.
1: हैप्पी मदर्स डे.
2: हैप्पी मदर्स डे.
0: हैप्पी मदर्स डे आपको भी सुरैया जी.
2: Yeah, he want to dedicate a song to you.
0: Oh, thank
2: pretty
0: you.
2: Woman.
0: Oh, please, thank you. Actually,
1: Saruji,
2: Pretty
0: woman. Oh, that's very sweet. Pretty woman. And actually, this song also goes to your mom. Aapki mummy ji ko bhi main dedicate karti hu Suraiya ji ko. Aapki mummy bhi bahut pretty hai.
2: Thank you.
0: A very beautiful person inside and out. Mother ऐसी ही होती हैं. ऊपर वाले ने बनाई हैं. So that you never feel alone. आपको कभी अकेला ना लगे.
2: Thank you so much.
0: Thank you. Okay. Sure. Bye, Safi. Bye. थैंक यू सो मच सफी. मुझे बहुत अच्छा लगा इतना प्यारा गाना. और ये गाना जैसे मैंने कहा मैं सुरैया जी को भी डेडिकेट करती हूँ. सफी की तरफ से मैं हम दोनों को डेडिकेट करती हूँ.

ओए चक दे फटे, ये जब भी मैं सुनती हूँ मुझे बड़ी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि हमारी दिल्ली का एक बहुत ही फेमस, ये कह सकते स्लैंग में ऐसे बोला जाता है, और एक हमारे मैथ्स के टीचर होते थे हाई स्कूल में जब मैं 11th और 12th पे थी, और वो जब भी कोई सही जवाब देता था या कोई मैथ्स का कोई टफ जो प्रॉब्लम है वो होता था, सिन कॉस इस तरह के जो बड़े हमारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूला होते थे, कोई भी अगर करेक्ट करता था तो वो बोलते थे ओए चक दे फटे। और दूसरा उनका एक बहुत फेमस स्टाइल था बल्ले बल्ले बोलने का, ओ बल्ले बल्ले। तो अभी भी कभी व्हेन आई हियर दीज वर्ड्स, कई हमारी मूवीज में बड़े होते हैं पंजाबी, ये इस तरह की बड़ी कॉमन है एंड हमारे ये पंजाबी स्लैंग्स, सो आई गो बैक टू माय हाई स्कूल टाइम। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहती हूँ सॉक डे की क्या बात है, सिंगल सॉक डे, लॉस्ट सॉक डे। जी हाँ, आज का दिन जो है दैट इज नेशनल लॉस्ट सॉक मेमोरियल डे। देखिए आप भूल गए होंगे, आपके अगर एक आध नहीं बहुत सारे सॉक्स के एक एक एक एक जो पेयर है वो बचा है, हर किसी के घर में ऐसे बहुत सारे लापता सॉक्स हैं, अंदर कहीं दफन हैं, गुम गए हैं और बेचारों को दुनिया भूल गई है, कहीं लॉन्ड्री में फंस गए हैं या कहीं लॉन्ड्री के पीछे जो बहुत इस तरह के कॉर्नर्स बन जाते हैं वहां कहीं बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो उन्हें ढूंढेगा, कभी पहचानेगा, कभी झाड़ पोंछ के पहनेगा। लेकिन ये मैं बताना चाहती हूँ कि इट इज एक्चुअली सेलिब्रेटेड, दिस इज अ डे, नेशनल लॉस्ट सॉक मेमोरियल डे विच इज ऑब्जर्व्ड एनुअली टूडे। और ये खाली सॉक डे नहीं है, ये लॉस्ट सॉक डे है, एंड दैट इज टू ऑनर, रिमेंबर एंड फाइनली से गुड बाय टू सिंगल सॉक्स दैट हैव लॉस्ट देयर पार्टनर्स इन द लॉन्ड्री। तो आपके घर में अगर ऐसा कोई बोरा है या ऐसा कोई बैग या पैकेज है जिसमें आपने जो सिंगल सॉक है उन्हें बचा के रखा है कि कभी तो इनका ट्विन जो है, इनका जोड़ीदार मिलेगा और इनकी जिंदगी फिर से कंप्लीट होगी,

0: आप उनको रहने दीजिए, आप उनको रीपर्पस कर दीजिए, टॉस कर दीजिए और उनको मतलब ज्यादा इंतजार मत करवाइए। ये इस दिन का पर्पस है। और मैंने इसलिए कहा था ये मदर्स डे, वैसे ऐसा नहीं मुझे कहना चाहिए क्योंकि मगर ये सच्ची बात है कि मदर्स हमारी बेचारी सॉक्स बिनती रहती हैं, ढूंढती रहती हैं, दैट हैपन्स वेरी ऑफन। लेकिन आई थिंक हम सब को करना चाहिए, इफ यू हैव अ फैमिली इन विच लाइक मदर इज द वन हु इज डूइंग सॉक लॉन्ड्री एंड ट्राइंग टू फाइंड पेयर्स एंड ऑल दैट, तो आई थिंक दिस इज अ रिमाइंडर फॉर यू क्योंकि नेशनल सॉक डे आज आ रहा है, आज है और कल है मदर्स डे, कि आप ऐसा ना करें और हर कोई अपने सॉक्स को अपने पेयर बनाए और अपने सॉक्स की लॉन्ड्री करे। कहने का मतलब है कि ज्यादा मम्मी जी से काम ना कराया करें। एंड विद दैट, एक मदर्स डे की बात हो रही है तो भाई हमारे वेद साहब, छोटे से प्यारे वेद साहब, ही इज ओनली 10 years old, ही हैज रिक्वेस्टेड अ सॉन्ग फॉर हिज मॉम और ये गाना उनकी मम्मी जी रेमा जी को बहुत पसंद है, जाने मन जाने मन। देखिए जाने मन जाने मन मैंने गाना तो आपसे नोट कर लिया, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि आपको 1970s का छोटी सी बात का गाना चाहिए या आपको बड़ी बात यानी कि कहो ना प्यार है वाला गाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक योर मॉम इज गोना रियली लाइक दिस जाने मन जाने मन, दैट इज फ्रॉम कहो ना प्यार है। कह दीजिए ना अपनी मम्मी जी को बिल्कुल प्यार है, कई बार हम बताते नहीं है मम्मी जी इसको कि हमें कितना प्यार है। फनीशा रेडियो यू आर ऑन ईयर।
1: हेलो।
0: हाँ जी फनीशा रेडियो यू आर ऑन ईयर।
1: ओके, आई वांट टू हैव अ सॉन्ग फॉर माय मॉम।
0: ओह दैट्स वेरी स्वीट, व्हाट सॉन्ग?
1: हैव यू एवर हर्ड अबाउट दैट, मेरी माँ,
0: मेरी
1: मेरी माँ,
0: यस
1: प्यारी माँ,
0: यस
1: होली माँ, दैट वन
0: Mama, right?
1: Exactly, yeah,
0: I absolutely love when he sings Mama. That's so endearing. आपका नाम सर?
1: थैंक यू।
0: अच्छा चलिए नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं, एनोनिमस करके कर देंगे।
1: मेरा नाम कुणाल है।
0: ओ कुणाल जी, अच्छा मुझे लगा आप एनोनिमस रखना चाहते, वो भी अलाउड है हमारे पास, कोई टेंशन नहीं।
1: We are going to the Anuv Jain concert today.
0: Okay.
1: And I was just hearing you and I was like, I need to make that call for sure.
0: Oh, thank you so much Kunal ji and I hope you enjoy your concert and I'm going to play this song right after this. Okay, sure, yeah. चलिए वेद साहब का गाना लगाती हूँ रेमा जी के लिए और उसके बाद कुणाल जी की मम्मी जी के लिए लगाएंगे।

A very happy Mother's Day to every one who is a mother or a mother to be and who is listening to us at this moment. To all our Funisha listeners, main to kahungi to all our lovely Dallas folks, kyunki har kisi ke jeevan mein mother ya mother jaisi figure hoti hai, whether you are a mother or not. And it is a very special day. Aur thodi der pehle main National Sock Single Sock Day ki baat kar rahi thi. Dekhiye, lost sock day hai ye. Yani ki agar aap kahin bahar drive kar rahe hain to jab ghar pahunche to jo ye bechare akele dukhi sock hain unko aap toss kar dein aur unko aaj ke din yaad kare yaad kare ki inka jo bhai hai wo kahin kho gaya hai. So this is just a day to remind us ki hamare paas aise bhi kuch hamare aas paas kuch aisi bhi vastuein hain, cheeze hain, insaan to nahi keh sakte चीजें हैं, but that we should remember sometime, जैसे कि गुम गए socks. And that is a day. Actually, it is a celebration. मैं नहीं कह रही हूँ, ये पारो नहीं कह रही है, ये actually में celebration है, ये national day है. किसी ने उनका ख्याल किया और ये दिन बनाया. फिलहाल कुणाल जी के लिए चलाती हूँ, कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, बड़ा enjoy करेंगे I'm sure आप, और हमें सुनते हुए जा रही है तो और भी ज्यादा enjoy करेंगे. और ये गाना आपकी मम्मी जी के लिए. By the way, I want to tell you this, कुणाल जी, this is a very favorite song of mine, probably the most favorite song when it comes to the songs for mother. बहुत प्यारा गाना है, दस विधानिया का.

0: मम्मा, ये गाना लिखा है और कंपोज किया है और गाया है तीनों कैलाश खेर साहब ने। इसकी चंद पंक्तियां जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो अभी आप सुन रहे थे, हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। What beautiful lines। और एक लाइन तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ। कितनी बार हम ये कहते हैं, राइट, कि दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, कहाँ है तू माँ। एंड विद दैट वी विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पारो के साथ सुन रहे हैं आप 104.9 FM।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
6: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
5: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
7: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
4: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
8: सब कुछ साफ रख सकते हो,
9: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
10: क्योंकि ये कौन बोला?
9: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कम्फर्ट छीन रही है। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?